सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुबह के 7 बजे हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1947 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक बार एक चिड़िया जंगल में अपने मीठे सुर में गाना गा रही थी, तभी उसके पास से किसान कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। चिड़िया ने उस किसान को रोका और पूछा, भाई तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम अभी कहाँ जा रहे हो? किसान ने चिड़िया से कहा, इस संदूक में कीड़े हैं और वे बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदेगा। इतना कहकर किसान बाजार की तरफ बढ़ने लगा। चिड़िया ने किसान का रास्ता रोकते हुए अनुरोध किया, पंख तो मेरे पास भी है, मुझे कीड़े तलाशने के लिए बहुत सफर करना पड़ता है, तुम मेरा एक पंख ले लो और बदले में मुझे दे दो कीड़े, इससे मुझे कीड़ों की तलाश के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसान ने चिड़िया को कीड़े दे दिए और बदले में उससे एक पंख ले लिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब चिड़िया के पास देने के लिए एक भी पंख नहीं बचा। वे उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई थी, वे भद्दी भी दिखने लगी। उसने अब गाना भी छोड़ दिया। भोजन की तलाश करते करते जल्दी वह मर गई। दोस्तों, यही बात हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। कई बार हम ऐसा रास्ता चुनते हैं जो हमें शुरुआती दौर में बहुत आसान लगता है, पर वही रास्ता हमें आगे चलकर मुश्किल में डाल देता है। चिड़िया को भोजन हासिल करने का तरीका बहुत आसान लगा, लेकिन आगे चलकर वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। जीवन में ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जो आपको तुरंत सफल बना दे। अच्छा हुआ कि आप लालच में ना फंसे और आसान रास्ता रूपी सबसे खतरनाक रास्ते में अपना कदम ना बढ़ाएं।
0: जीवन सौरभ।

आपसे ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल एक सूक्त 162। और अक्षय निधि के बाद सुनिए भक्ति संगीत। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। यूसुफ मेहर अली की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का वतन का राग। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। आमने सामने ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर बघेलखंड लोक गायकी पर चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे लोक गायक शशि कुमार पांडे से मनीषा चतुर्वेदी की खास बातचीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 9 बजे सुनिए हमारा कार्यक्रम वागर्थ। वर्तमान परिदृश्य और धर्मपाल डॉक्टर उर्मिला शिरीष पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने।

सुबह 9:30 पर सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर विशेषज्ञ निहारिका पंसोरिया से वार्ताकार रतनेश सोनी यानी मेरे साथ ये बातचीत आप सुनेंगे।

सुबह 10 बजे का समय होगा रेडियो रिपोर्ट और परिक्रमा का। हिंदुस्तान हमारा, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। कला कल्लोलिनी, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। अभी तनवीर पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा दानिश खान और स्वाति गिरी का। युग प्रवर्तक विवेकानंद, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर।

तो ये थी आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रतनीश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: मा त्वग्निर् ध्वनि युद्ध मदंधिर मोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जघ्रिहि इष्टम वीतमभिगूर्तम वशटकृतम तम देवासः प्रति गृभणन्त्यश्वम्। हे यज्ञ रूप अश्व, आपका निकलना, आंदोलित होना, पलटना, पीना, खाना आदि सारी क्रियाएं देवताओं में हों। यदश्वाय वास उपस्त्रणन्त्य धीवासम या हिरण्यान्यस्मै संदान मर्वन्तम् पड्बीषम प्रिया देवेश्वा यामयन्ति। यज्ञ को समर्पित पूजन योग्य अश्व को सजाने वाला ऊपर का वस्त्र, आभूषण, सिर तथा पैर बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हों। यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पार्ष्णया वा कषया वा तुतोद सृचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि। अति शीघ्रता में तुम्हें सताने वालों, निचले भाग को पीड़ित करने वालों द्वारा की गई सभी त्रुटियों को श्रुवा की आहुतियों से ठीक करते हैं। चतुस्री षद्वाजिनो देव बंधोर वंक्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत पुरुषपरून नुघुष्या विशस्त। हे ऋत्विजो, धारण करने की सामर्थ्य से युक्त गतिमान देवताओं के बंधु इस अश्व के 34 अंगों को अच्छी प्रकार प्राप्त करें। हर अंग को अपने प्रयासों द्वारा स्वस्थ बनाएं और उसकी कमियों को दूर करें। एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वायंतारा भवतस्थ ऋतुः याते गात्राणा मृतुथा कृणोमि ताता पिंडानां प्र जुहोम्यग्नौ। काल विभाजन के क्रम में त्वष्टा सूर्य रूपी अश्व का विभाजन संवत्सर करता है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन नाम से दो विभाग उसके नियंता होते हैं। यज्ञ में शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियां देते हैं। मा त्वा तपत प्रिय आत्मा पियंतम मा स्वधि तिस्तन्व आ तिष्ठिपत्ते मा ते गृध्नु रविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्य सिना मिथु कह। हे अश्व, राष्ट्र अथवा यज्ञ, आपका परम प्रिय आत्मतत्व अर्थात अपना गौरव कभी भी पीड़ादायक स्थिति में छोड़कर न जाएं। राष्ट्र का गौरव अक्षुण्य रहे। शस्त्र विखंडित करने वाली शक्तियां आपके अंग अवयवों पर अपना अधिकार न जमा सकें। राष्ट्र कभी खंडित न हो। अकुशल व्यक्ति आपके दोषों के अतिरिक्त किसी उपयोगी अंग पर असि का प्रयोग न करे। न वा उ एतन म्रियसे न ऋष्यसि देवाम इदेशी पृथिभिः सुगेभिः हरि ते युञ्जा पृशति अभूता मुपास्थाद्वाजी धुरि रासभस्य। हे अश्व, यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा न तो आपका नाश होता है और न आप किसी को नष्ट करते हैं, वरन आप सुगम सहज मार्ग से देवताओं तक पहुंचते हैं। शब्द करने वाले मंत्रों के आधार पर ऐश्वर्यवान और अंतरिक्षीय गतिशील प्रवाह उपस्थित होकर आपके साथ संयुक्त होकर पुष्ट होते हैं। सुगव्यम नो वाजी स्वश्वव्यम पुंसः पुत्राम उत विश्वापुषम रईम अनागास्त्वम नो अदितिः कृणोतु क्षत्रम नो अश्वो वनताम हविष्मान। देवत्व को प्राप्त करने वाला यह बलशाली यज्ञीय प्रयोग हमें पुत्र पौत्र धन धान्य तथा उत्तम अश्वों के रूप में अपार वैभव प्रदान करे। हम दीनता पाप कृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहें। अश्व के समान शक्तिशाली हमारे नागरिक पराक्रमी हो।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 162 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत में आनंद ले रहे हैं आज आप, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भजन का, राधा संग, कृष्ण जी की अनेक लीलाओं का।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

जब झूठ की ताकत सच के नामो निशा मिटाकर आत्मा पर घटा टोप की तरह छा जाए, जब शोषक सत्ता का आतंक जहर की तरह शिराओं में बहने लगे, जब जुबान फिजाओं में बहती दहशत से गूंगी हो जाए, तब प्रतिरोध अनिवार्य है। अनिवार्य है वो आग जिसे इनकार कहते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम ऐसे ही बड़े इनकार की अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। ये प्रतिरोध कभी सशस्त्र था तो कभी निःशस्त्र, लेकिन प्रतिरोध प्रबल था। हमारे स्वाधीनता इतिहास में प्रतिरोध की अविस्मरणीय कहानियां लिखने वाले अनगिनत महानायक हुए हैं। एक ऐसे ही प्रखर स्वाधीनता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभक्त थे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर सन 1903 को मुंबई के एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर उनके व्यापार को संभालें और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें, लेकिन यूसुफ मेहर अली जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, देश दुनिया और समाज के हालात को समझने लगे थे। स्वाधीनता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने अनेक बड़े नेताओं के भाषण सुने, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा और भारत की आजादी का सपना उनकी आंखों में पलने लगा। इस तरह उनकी जिंदगी ने एक नई राह पकड़ ली और आगे चलकर उन्होंने बॉम्बे यूथ लीग की स्थापना की। किसानों और श्रमिकों की दशा उन्हें विह्वल कर देती थी, इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। इन तमाम गतिविधियों के बीच उनकी पढ़ाई जारी रही। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युवाओं को एकजुट किया। उनके प्रयासों से शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए युवा प्रशिक्षित हुए और वो बढ़ चले अंधकार के एक युग को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ।

यूसुफ मेहर अली अपने छात्र जीवन से ही अन्याय और अत्याचार का विरोध करते रहे। कानून की पढ़ाई के दौरान ही जब कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई, तब उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। पुलिस की बर्बरता हो या मिल मजदूरों का शोषण, उन्होंने पूरी निडरता के साथ इन बातों का विरोध किया। अपने समय में छात्र आंदोलन को उन्होंने नई ऊर्जा और गति प्रदान की। यूसुफ मेहर अली ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक लेख भी लिखा था, जिसमें अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार पर तीखा हमला किया गया था। उनके कड़े शब्दों से अंग्रेज तिलमिला गए और अपनी नाराजगी भी प्रकट की। 1927 का साल था जब बेंगलोर में गांधी जी को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन का तार मिला, जिसमें गांधी जी को दिल्ली आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथों में एक पर्चा थमाया गया, जिस पर लिखा था कि भारत के वैधानिक सुधारों के प्रश्न पर रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके प्रधान सर जॉन साइमन होंगे। इस कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं रखा गया था, सारे अंग्रेज ही थे। भारतीय पहले भी अंग्रेजों के ऐसे कमीशन का परिणाम देख चुके थे। साइमन कमीशन की घोषणा से पूरे भारत में रोष और असंतोष व्याप्त हो गया। साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय हुआ और देश भर से युवा भी इसमें आगे आए। ऐसे समय में यूसुफ मेहर अली भला कैसे चुप बैठते। उनकी संस्था बॉम्बे यूथ लीग ने शहर भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचने वाला था। यूसुफ मेहर अली ने बंदरगाह में ही कमीशन के सदस्यों के समक्ष विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। इस योजना की जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को हो चुकी थी। बंदरगाह में पुलिस तैनात थी। यूसुफ मेहर अली ने अपने साथियों को तैयार किया। सभी ने कुली का वेश बनाया और बंदरगाह में घुस गए। यूसुफ मेहर अली ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए साइमन गो बैक का नारा गढ़ा। युवाओं का ये दल जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वहां पहुंचकर ये सभी साइमन कमीशन के सदस्यों को काले झंडे दिखाते हुए साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। सभी लहूलुहान हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूसुफ मेहर अली के साथ पुलिस ने बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। लेकिन यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया नारा पूरे भारत में गूंज उठा था। शहर भर में उनके संघर्ष के समर्थन में हड़तालें हुई। गांधी जी ने भी इस साहसिक विरोध प्रदर्शन की प्रशंसा की। ब्रिटिश सरकार ने यूसुफ मेहर अली की वकालत पर रोक लगा दी, लेकिन उनके हौसले अब और अधिक बुलंद थे। यूसुफ मेहर अली साइमन गो बैक के नारे के साथ ही पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनका संगठन तेजी से बढ़ता रहा और कई युवा स्वाधीनता संग्राम सेनानी उनसे जुड़ते चले गए।

यूसुफ मेहर अली गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। गांधी जी भी उनके युवा जोश और ऊर्जा की सराहना किया करते थे। दोनों के बीच एक ऐसा संबंध था जो उन्हें एक पिता और पुत्र, एक गुरु और शिष्य जैसे आत्मीय रिश्ते में बांधता था। यूसुफ मेहर अली ने सविनय अवज्ञा और दांडी सत्याग्रह आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सन 1930 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 4 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता जैसे राष्ट्र नायकों के साथ मिलकर कार्य किया। किसानों और श्रमिकों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सघन प्रयास किए। यूसुफ मेहर अली ने अपने लेखन के जरिए भी इस लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने लीडर ऑफ इंडिया नाम से एक किताब भी लिखी, साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की ताकि भारत की आजादी के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से अंग्रेज परेशान रहा करते थे। यूसुफ मेहर अली 8 बार जेल गए, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनका हौसला हमेशा बुलंद रहा। किसानों और श्रमिकों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी बहुत अधिक थी। 1942 में वो बॉम्बे के मेयर चुने गए। यही वो समय था जब ब्रिटिश राज के विरुद्ध अंतिम निर्णायक लड़ाई की भूमिका बन रही थी। बॉम्बे में गांधी जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। अंग्रेजों को चेतावनी देने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका भाव यही था कि अंग्रेज अपनी इच्छा से भारत का शासन भारतवासियों को सौंप कर चले जाएं, अन्यथा संपूर्ण राष्ट्र की उमड़ती हुई शक्ति का सामना करने को तैयार हो जाएं। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए नारे का सुझाव मांगा, अंग्रेजों पीछे हटो, वापस जाओ, गेट आउट। ऐसे कई नारों का सुझाव आया, लेकिन गांधी जी संतुष्ट नहीं थे। तभी यूसुफ मेहर अली ने गांधी जी को एक धनुष भेंट की, जिस पर लिखा हुआ था क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान कर दिया और ब्रिटिश राज अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से थर्रा उठा। यूसुफ मेहर अली ने केवल क्विट इंडिया नारा ही नहीं गढ़ा, बल्कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आंदोलन से पहले भारत छोड़ो नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसे हफ्ते भर के भीतर ही लोगों ने खरीद लिया। उन्होंने भारत छोड़ो के बैज भी मुद्रित किए ताकि जन जन इस आंदोलन के बारे में जाने और इससे जुड़े। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही आरंभ हुआ, तमाम शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे समय में यूसुफ मेहर अली ने राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के साथ भूमिगत होकर इस आंदोलन को हवा दी। हालांकि बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। उन्हें जेल में ही दिल का दौरा पड़ा। जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल ले जाने की बात की, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके 2 अन्य साथी भी पीड़ित हैं, उन्हें भी अस्पताल जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। जब जेल अधिकारियों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए अपने सहयोगियों के साथ जेल में ही रहने का फैसला किया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, लेकिन वो अपने इरादों पर अटल रहे जब तक कि उन्हें रिहा नहीं कर दिया गया। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई जारी रखी। 1946 में वो बॉम्बे विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनका हर पल देश और समाज को समर्पित रहा। वो उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी और भारत में आजादी का सवेरा भी देखा। 2 जुलाई सन 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: द्विधातु जाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। 17वीं शताब्दी के एक बंदरगाह पर खड़े होने की कल्पना कीजिए, जहां एक जहाज पर चमकदार सोने से भरे एक के बाद एक संदूक लादे जा रहे हैं। 1670 के दशक में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये केवल धन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक हताश कर देने वाला वित्तीय दाव था। लंदन में चांदी, जो वैश्विक व्यापार का मानक थी, खतरनाक रूप से दुर्लभ और महंगी होती जा रही थी। व्यापार को चालू रखने के लिए कंपनी ने सोने का रुख किया। शुरुआत में ये रणनीति शानदार लगी। भारत में चांदी की कीमत गिर रही थी, जिसका अर्थ था कि वहां सोने का व्यापार भारी प्रीमियम पर हो रहा था। लेकिन तभी बाई मेटालिक रिश्यो ट्रैप, यानी दो धातुओं के मूल्य का जाल, अचानक बंद हो गया। साल 1676 था और भारतीय बुलियन बाजार अचानक चरमरा कर गिर गया। बिना किसी चेतावनी के सोने की चांदी में आकी जाने वाली कीमत धराशायी हो गई। सोने के सिक्के, जो दशकों से 15 रुपए में बिकते थे, गिरकर केवल 11 या 12 रुपए पर आ गए। कंपनी की सूरत फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई, जिसने अपने सोने के शिपमेंट पर अत्यधिक भारी नुकसान की रिपोर्ट दी। इस अचानक गिरावट का कारण क्या था? बाजार की अफवाहों का दावा था कि तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने अफगानिस्तान और दक्कन में अपने भीषण युद्धों के वित्त पोषण के लिए अपने विशाल पैतृक सोने के भंडार को बाजार में उतार दिया था। अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए अर्थव्यवस्था में शाही सोने की बाढ़ लाकर सम्राट ने अनजाने में कंपनी के मुनाफे को पूरी तरह खत्म कर दिया। कंपनी ने लंदन में चांदी की कमी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत में सोने की अधिकता, यानी गोल्ड ग्लट, ने उन्हें कुचल दिया। 17वीं सदी की इस आपदा ने कंपनी को वापस चांदी की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। इसने साबित कर दिया कि वैश्विक मुद्रा के इस उच्च जोखिम वाले खेल में एक सम्राट की कलम का एक वार सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन को भी घुटनों पर ला सकता है।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने लोक गायक शशि कुमार पांडे जी। आप मूलतः बघेली लोकगीतों की सौंधी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार हैं। भारत सरकार के संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित बहुत से कार्यक्रमों में आपसे मंच शोभायमान हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: आज हमारे स्टूडियो का भी सौभाग्य है कि आज हमें बहुत सारे बघेलखंडी लोकगीत सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप लोकगीतों को, जैसे कि सभी कहते हैं कि वो अपने समय की सबसे पुरानी और सशक्त कविताएं हैं, आप लोकगीतों का वर्गीकरण कैसे करेंगे?
3: बिल्कुल सही बात है। संगीत की शुरुआत ही मेरे समझ से लोक से ही हुई है। उसको व्यवस्थित रूप तो बाद में दिया गया, जब स्वरों के विषय में लोगों ने सीखना शुरू किया तो फिर व्यवस्थित संगीत शुरू हुआ। बाकी यह प्रकृति से सीधे लोक में आया है। पानी के बहने की आवाज़, पत्तों के डोलने से उत्पन्न आवाज़, प्रकृति से जो ध्वनियाँ निकली वो संगीत के रूप में लोक में आई
1: जी,
3: और लोगों ने उनको गुनगुनाना शुरू किया और उन गुनगुनाने के साथ में उनको शब्दों के साथ मिलाने का प्रयास किया। तो पहले लोक संगीत था, इसके बाद लोक गीतों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा मेरा मानना है। लिखा भी कई जगह मैंने इसी तरह से लगभग पाया। अब जब लोक गीत आ गए तो विभिन्न अवसरों पर उनका उपयोग होने लगा
1: जी,
3: और जब विभिन्न अवसरों पर उपयोग होने लगा तो धीरे धीरे लगभग हर अवसर पर, हर अच्छे मौके पर इनका उपयोग शुरू हुआ, लोग गाने लगे और कालांतर में बहुत संख्या हो गई। और आते आते आते आते हमारी पीढ़ी तक ये लोक संगीत आया, जब तब तक इतना इसका क्षेत्र विस्तृत हो चुका था कि अब हमको समझने के लिए या आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि उसको व्यवस्थित रूप से हम समझ सकें और समझा भी सकें
1: जी।
3: तो फिर हम लोगों ने उसको तीन मुख्य भागों में उसको विभक्त किया। एक तो संस्कार गीत
1: जी,
3: हमारे यहाँ 16 संस्कार, बड़े महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं और लगभग हर संस्कार में लोक गीतों का गायन होता है
1: जी।
3: दूसरा एक पक्ष होता है ऋतुपरक गीत, लोक संगीत मतलब जो सामने दृश्य है हमारे, उससे संबंधित गीत जो हमारे अंदर से फूटे वही है लोक संगीत। विवाह का दृश्य हो या झूला पड़ा है झूला का दृश्य हो या कि एक शिशु पैदा हुआ है उस समय खुशी का गीत, मतलब जो दृश्य हमारे सामने है उसी से संबंधित गीत अगर हमारे मन से निकले वही है लोक गीत।
1: लोक का गीत।
3: इसी तरह से जो संस्कार गीत हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, ऋतुओं के आधार पर त्यौहार होते हैं, त्योहारों के गीत हैं। और तीसरा श्रमिक गीत कह सकते हैं, काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, खदानों में, सड़कों में, कहीं भी दिन भर पसीना बहाते हैं और शाम को जब आते हैं तो फिर मस्ती के साथ वो अपने गीतों को गाते हैं और सभी महिला पुरुष मिलकर के उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, तो वो हो गया श्रमिक गीत। तो तीन तरह से इसको विभक्त कर सकते हैं।
1: लोकगीतों में हमेशा से राम के जीवन को स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से उतरते देखा गया है। प्रभु श्री राम को बघेलखंड ने बहुत आत्मीयता से रिश्तों में बांधा है। और आप अगर आज के इस मुलाकात की, बातचीत की शुरुआत हम प्रभु श्री राम के सोहर से करें तो मुझे लगता है कि हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा।
3: बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपने बघेलखंड को इतना मान दिया, इसके लिए हम अभिभूत हैं और इस रेडियो के प्रति आभार भी ज्ञापित करते हैं। कितना मान लिया, और हमारी परंपराओं का, हमारे यहाँ प्रचलित जो लोकगीत हैं उनको आप जानना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो बघेलखंड है, बघेलखंड में भगवान राम व्याप्त हैं
1: जी,
3: लोकगीतों में तो व्याप्त हैं ही, लोगों की दिनचर्या में व्याप्त
1: हैं।
3: और हमारे यहाँ हर जन्म लेने वाला शिशु
1: जी
3: राम होता है, और हर जन्म लेने वाली कन्या माँ जानकी स्वरूपा होती है
1: जी।
3: इसीलिए जैसे ही खबर आती है कि बेटे का जन्म हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ की महिलाएं अनायास ही बोल पड़ती हैं। कोई भी महिला शुरू कर देगी

0: हर गीत में राम है, प्रायः जितने शोहर हैं हमारे यहाँ उनमें अधिकांश गीतों में राम ही है। और जन्म में ही नहीं, विवाह भी जब होता है तो उस समय का वर चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस हैसियत का हो, माली हालत उसकी क्या है ये मायने नहीं रखती है। यदि हमारे यहाँ महाराज साहब के किले में अगर शादी हो रही है तब भी वो वर राम होगा। बोलो हमारे यहाँ के लोक संगीत में भेदभाव नहीं है, वो सबको समान मानता है, चाहे राजा के घर का वर हो
1: जी
0: और चाहे सड़क के किनारे रह रहे एक मजदूर के बेटे का।
1: इतनी अच्छी बात है, समरसता का ये भाव आपको कितनी समृद्धता देता है, कितना मन में सौहार्द दिलाता है। लेकिन सोहर के बाद अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि एक अगर आप हमें विवाह गीत, द्वारचार गीत या बन्ना अगर कोई अच्छा सा हमें आज हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं।
0: हम सुनाते हैं, पर इसके क्रम में आपको बता दूं
1: जी,
0: थोड़ा सा मैं धृष्टता करना चाह रहा हूं कि विवाह के पहले हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और बघेलखंड में उसको बरुआ या व्रतबंध कहते हैं। तो उसमें भी भगवान राम की ही छवि देखते हैं हमारे यहाँ।
1: जी
0: हमारे यहाँ एक रस्म होती है व्रतबंध के बाद जो बटुक होता है वो काशी पढ़ने जाता है, लेकिन लोक में मान्यता ये है कि भांजा नाराज होके जा रहा है
1: जी,
0: वो रिसाता है, उसको रिस लगती है, गुस्सा लगती है किसी कारण से मामा के ऊपर, तो फिर मामा उसको मनाने जाता है।
1: जी जी जी
0: जब मामा मनाने जाता है तो मामा के साथ में मामी और जो गोतीने पड़ोसीने होती हैं और जो परिवार की महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी साथ में जाते हैं उस बटुक के।
1: हाँ।
0: तब वो रास्ते में गाते हैं, हमारे यहाँ एक गीत बड़ा महत्वपूर्ण होता है गैलहाई।
1: हाँ।
0: गैल माने रास्ता।
1: हाँ।
0: और गैलहाई माने रास्ता में गाया जाने वाला गीत। तो जब भी किसी रस्म को पूरा करने के लिए हमारे घर की महिलाएं जाएंगी
1: जी।
0: तो रास्ते में गीत निर्धारित है, वो गाएंगी ही। तो जैसे वो बटुक निकलता है घर से और मामा पीछे पीछे मनाने के लिए चलो, वो घर के बाहर का दृश्य होता है
1: जी।
0: तो मामा पीछे से मनाने चलेगा तो कोई न कोई महिला के मुख से अनायास ही ये गीत फूट पड़ेगा

0: ये गीत हमारे यहाँ होता है।
1: और राई नॉन भी उसारते हैं कई जगह।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: फिर वो मामा उसको
1: कि
0: मना करके
1: भांजी को
0: लेता है,
1: नजर ना
0: वो
1: लग जाए।
0: कुछ नेक देता है,
1: जी
0: टिक्का लगाते हैं,
1: हाँ
0: राई नॉन उतारते हैं,
1: हाँ
0: ये सारी चीज़ें होती हैं। मामी ये सब करती है और मामा उनको कुछ पैसे या कि अपनी हैसियत के अनुसार कुछ गहना, घड़ी, कुछ भी दे करके, और फिर भांजे को वापस, छोटे होने पर व्रतबंध होने की परंपरा रही है, तो फिर उसको गोदी में लेकर के
1: लेकर
0: वापस।
1: आते हैं। सर, मुझे यहाँ ये लगता है कि हम लोग कितने धन्य हैं
0: जी
1: कि हमारे यहाँ पल पल के लिए गीत
0: हाँ,
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हमको
0: बिल्कुल,
1: डीजे वाले बाबू से कहने की जरूरत नहीं
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: कि
0: कोई
1: कोई गाना
0: जरूरत,
1: बजा
0: कोई
1: दो।
0: जरूरत नहीं।
1: हमारे यहाँ तो हर पल पर एक गीत
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: आप
0: बिल्कुल।
1: देखिए, रूठने पे गीत है, मनाने पे गीत है, और सबसे बड़ी बात कि कोई रूठा राठी होती भी नहीं,
0: नहीं,
1: क्योंकि
0: कुछ
1: हमारे
0: नहीं
1: यहाँ तो
0: होता।
1: गारी भी गीत है।
0: अच्छा, कुछ भी होता है तो वो विनोद के लिए होता है,
1: हाँ
0: वो रूठना होता है तो विनोद के लिए, मनाना होता है तो भी विनोद के लिए। अगर कहीं सही सही हुआ है तो
1: हाँ
0: हमारे यहाँ के गीत इस तरह के हैं कि उसको विनोदपूर्ण बना देते हैं।
1: बिल्कुल। तो द्वारचार का कोई गीत आपको अगर याद आ रहा हो, राम बन्ना जब बनकर आते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बन्ना का भी गीत है जिसमें राम हैं, और जैसा मैंने बताया कि हर वर राम होता है और हर कन्या माँ जानकी स्वरूपा
1: जी
0: होती है, तो उस समय जब बन्ना गाया जाता है तो बन्ना में भी लोग गाते हैं कि अब ये देखिए, ये सारे गीत जो हैं हमारे यहाँ महिला स्वरों में गाए जाते हैं, पर सुनते सुनते मुझे कुछ मुखड़े और कुछ अंतरे याद हैं,
1: जी
0: तो पूरा पूरा गीत मैं नहीं सुना पा रहा हूँ आपको, पर वानगी बतौर हम आपको कुछ गीत
1: बिल्कुल।
0: बताए दे रहा हूँ। तो जैसे ही वर आएगा वैसे कोई न कोई महिला शुरू हो जाएगी।

वर को राम ही मानेंगे। यहाँ तक कि अन्य गीत तो जो होते हैं हमारे यहाँ एक विशेष गीत होता है गारी। तो गारी मजाक वाली जो गारी गाई जाती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एक स्वस्थ गारी गाई जाती है उसमें राम के किसी न किसी जीवन के प्रसंग का उल्लेख होता है। एक गारी गाई जाती है हमारे यहाँ, दो लाइन याद आ रही है मुझे,

0: इस तरह से गाड़ी की शुरुआत होती
1: क्या
0: है।
1: क्या बात है, मन चाहता है कि सुनते ही जाएं, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम, तो क्यों ना आपसे लगे हाथ हम ये भी जान लें कि बघेलखंड में कहते हैं कि राम कण कण में व्याप्त हैं, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, और जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। और रेडियो के लगभग हर श्रोता को ये मालूम होगा कि भगवान राम की तरुणाई के 11.5 वर्ष बघेलखंड में ही बीते हैं। वनवास का अधिकांश समय उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया, और चित्रकूट परिसर में ही हमारा बघेलखंड निवास करता है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोकगीतों में तो राम व्याप्त हैं ही, वहाँ के संस्कारों में राम हैं, और वहाँ की संस्कृति में राम हैं, और यहाँ तक कहें कि वहाँ की दिनचर्या में राम व्याप्त हैं, वहाँ के खेतों में, वहाँ के खलिहानों में, वहाँ के फसलों में, जहाँ भी आप देखें राम हैं, वहाँ व्याप्त हैं राम, जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों में राम है वहाँ निश्चित रूप से। इतना हमारे यहाँ के लोकगीतों में और अन्य प्रसंगों में जो राम हैं, इतना मैं समझता हूँ उसका मुख्य कारण यही है कि 11.5 वर्ष, और वो भगवान राम के 11.5 वर्ष जितना हम लोग पढ़ सके, सुन सके एक मानवीय दृष्टिकोण से, तो उनके जीवन के वो सर्वोत्कृष्ट 11.5 वर्ष थे। फिर उसके बाद से फिर उनके ऊपर विडंबनाएं आना शुरू होती हैं, तो फिर अंत तक वो धर्म संकट का ही जीवन जो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि अब उनके लिए क्या धर्म संकट, क्या खुशी, क्या गम, जो कुछ भी किया उन्होंने, या कि उनके चरित्र में से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ हमें दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए ही है, वो हमारे आदर्श हैं, तो उनके हर परिस्थिति में कुछ न कुछ हमारे लिए संदेश है। पर वो 11.5 वर्ष जो हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो उनके जीवन का मूल उद्देश्य था, ऋषियों का सानिध्य, चर्चा, और जो प्रकृति से तादाद में, ये सारी चीजें उन 11.5 वर्ष में उन्होंने बहुत कुछ दिया। इसलिए हमारा बघेलखंड पूरे भारतवर्ष से कहीं अधिक उनको याद करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं
1: जी।
0: अब इसको गारंटी के साथ या चैलेंज के साथ नहीं कहते, लेकिन हमारा मानना है तो मानने में किसका क्या वश है, वो तो माना जा सकता है
1: जी। इस देश का मुझे लगता है कि हर शख्स प्रभु श्री राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा
0: जी,
1: बनना चाहता है, उनके सत्कर्मों को देखकर आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित रूप से आपसे जो बात कर करके बीच में जो आपने लोकगीतों की छोटी छोटी सी फुलझड़ियां हमारे लिए उजास बिखेरी है, वो बहुत ही मज़ेदार रही हैं। एक गारी मुझे भी याद आती है, मेरी दादी कहती थी कि राम जब बिहाने गए तो वहाँ की महिलाएं चाहती नहीं थी कि ये वापस जाएं अपने ससुराल, तो कहती थी कि तुम्हारा भैया इतना करुआ है, उसे हम गोरा कर देंगे, यहीं रुक जाओ।
0: क्या
1: तो
0: बात,
1: मतलब आप देखिए कि लोकगीतों में कहीं ना कहीं साहस भी होता है। आप सोच सकते हैं कि भगवान से कोई ऐसा ऐसा निवेदन कर सकता है कि तुम्हारे भाई करुआ है, यहाँ रुक जा, लेकिन फिर भी लोक की यही खासियत है।
0: बिल्कुल,
1: और बड़ी मजेदार सी ये बातें होती हैं आपसे।
0: मैं ऐसा समझता हूँ कि राम इतने नजदीक हो गए हैं व्यक्ति के, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बहुत नजदीक हो जाता है तब औपचारिकताएं बहुत मायने नहीं रखती, औपचारिकताएं रह ही नहीं जाती, इतना अपनापन हो जाने के बाद। और राम से इतना नजदीक लोग अपने आप को मान लेते हैं बहुत जल्दी, उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कुछ कहना तो है नहीं, मुस्कुराना है उनको, भगवान राम को। तो ये आपकी दादी जी का जो प्रसंग है ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो लोग गाते थे उसमें?
1: वो यही कहती हैं कि वो निवेदन जो कर रही हैं वो इसी तरीके से कर रही हैं कि तुम्हारे भाई तो पल पल पे गुस्सा होते हैं, तो हम उनका गुस्सा ठंडा कर देंगे। उसके अर्थ आपको बता रही हूँ कि जो अंतरे में वो सुनाती थी, वो जैसे हम लोग कभी आपस में झगड़ते थे और ये कहते थे कि हमारे हिस्से का उसने खा लिया, तो हमेशा कहती थी राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। तो आप देखिए कि जीवन में ये कहावतें कितनी उतरी हुई हैं, मतलब आप अगर बुरा हो जाए तो भी प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छा हो तब तो प्रभु का है ही कृपा। तो ये लोग से ही ताकत मिलती है।
0: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ऐसे में कोई और गीत अगर आपको याद आ रहा हो हमारे श्रोताओं के लिए।
0: अब देखिए, गीत हमारे यहाँ के जैसे मैंने बताया कि लोक गीतों में जितने भी गीत हैं, हर गीत में भगवान राम है। ये तो अभी तक जो अपन चर्चा कर रहे थे ये संस्कार गीत थे। हमारे यहाँ के जो ऋतु परक गीत हैं
1: जी,
0: और जो श्रम गीत हैं उनमें भी राम है। जैसे ऋतु परक गीतों में अगर चलें तो चैती हमारे यहाँ गाते हैं। चैती वैसे सेमी क्लासिकल है, बनारस का चैती और हमारे पास ये मशहूर है, अवध में भी गाते हैं, चैती लगभग तमाम गाते हैं, तो वो सेमी क्लासिकल है। हमारे यहाँ का लोक गीत है चैती,

0: ये हमारे यहाँ गाते हैं,
1: हम्म,
0: ये तो हिंदी में है, लोक भाषा में भी, बघेली में भी, भगवान राम जैसे, और भी गीत इसके बाद चले अगर श्रम गीतों में, श्रम गीतों में भी राम है। हमारे यहाँ एक सुआ गीत गाते हैं लोग, सुआ गीत में एक प्रसंग आता है जब रावण सीता का हरण करता है,
1: जी,
0: तब गाते हैं, मस्ती के साथ उसमें डांस करते हैं।
1: हम्म,
0: अब उनके लिए राम का नाम महत्वपूर्ण है, राम का चरित्र महत्वपूर्ण है, उनको उसी में इंजॉय करना है, उसी में आनंद लेना है। अब वो प्रसंग खुशी का है कि गम का, इससे

0: बैठे। अब उसको ये गाने के उतना वो भाव में तल्लीन हो जाएंगे कि इस गाने की गति जो है वो बढ़ती जाएगी,
1: बढ़ती जाएगी।
0: और इतना बढ़ेगी कि सामान्य श्रोता अगर उनके बीच में है तो उसके पैर थिरके बिना नहीं रह जाएंगे। अगर थोड़ा भी संगीत उसके अंदर है तो फिर वो बड़े स्पीड में गाएंगे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे। इन्हीं राम के गीतों को गाते गाते वो शाम से सुबह कर देंगे बड़ी मस्ती, और सुबह फिर से वो इसी तरह से श्रमिक गीत। तो एक और मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे यहाँ का अब एक विलुप्त प्राय गीत रहा है, उसको मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बचपन में कभी सुना था,
1: जी।
0: दृश्य देखा था। एक गीत होता है मलेला, उसको हमारे यहाँ बघेलखंड में ही कुछ हिस्से में उसको टप्पा बोलते हैं। तो जब कभी डंफर नहीं हुआ करते थे, बाड़ी वाले ट्रक हुआ करते थे, तो खदानों में गिट्टी लेबरर लोड करते थे और वही जा करके फिर उसको दूसरी जगह अनलोड करते थे। तो जब ट्रक चलता था उसके गिट्टी के ऊपर वो बैठ जाते थे, और उसके ऊपर बैठे बैठे फिर रास्ते में वो मस्ती करते थे और गाते थे। तो उस समय वो मलेला गीत गाते थे, तो
1: जी
0: उसकी शुरुआत वो करते थे राम से।
1: हाँ
0: वैसे जो मलेला गीत है प्रायः देखने में आया है, श्रृंगार रस का गीत है, कभी संयोग श्रृंगार उसमें दिखता है, कभी वियोग श्रृंगार दिखता है, प्रायः दिखता उसमें श्रृंगार रस है।
1: श्रृंगार
0: लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो राम नाम से होती है। तो वो नायिका पूछती है

0: शुरुआत वहां से होगी।
1: क्या बात है, अभिवादन से लेकर संदेशा पहुंचाने तक हर बात में राम व्याप्त
0: राम व्याप्त है।
1: कितनी अद्भुत महिमा है। और आज की ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। एक और बात मुझे ऐसे में याद आ रही है, क्योंकि जब लोग की बातें छिड़ती हैं तो आपको भी अपनी पुरानी यादें आती हैं। हमारी दादी ये भी कहा करती थी कि सृजन से विसर्जन तक राम है।
0: हाँ बिल्कुल है।
1: आप देखिए कि किसी को कोई आपने जैसे बोला कि राम राम कहे हो,
0: हाँ,
1: बस ये है कि ब्रिज में वो शब्द अलग हो जाते हैं, तरीके अलग हो जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन सब वही व्याप्त है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। और लोकगीतों को जिस तरह से आपने समझाया है कि किस तरह से श्रृंगार गीत, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, ऋतु गीत, उपनयन संस्कार तक के गीतों पर बात हो गई, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप आए स्टूडियो।
0: मैं तो अभिभूत हूँ कि लोक गीतों को इतना मान दिया आपने। भगवान राम तो सर्वमान्य हैं
1: जी
0: और कुछ लोगों के मान देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी
0: उनकी प्रतिष्ठा में, लेकिन लोक गीतों को मान दिया है आपने, राम से जोड़ा उनको, तो हमारा पूरा बघेलखंड और बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो लोक जगत है,
1: जी
0: खासकर लोक गायन का जगत, उसकी तरफ से मैं आभार ज्ञापित कर रहा हूँ रेडियो का।
1: आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हम एक बार पुनः अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि लोकगीत हमारी विरासत है, हमारी मिट्टी है, और अपनी जड़ों से खुद को जोड़े रखना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ अनछुए गीत नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो उन्हें लिखिए और अपने अगली पीढ़ी में पहुँचाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें भारतीय ज्ञान परम्परा को बताती हैं, भारतीय मनीषियों को बताती हैं। तो इन्हें बचा कर रखिए। सर पुनः एक बार आपका बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे गीतों के साथ कहानी की तरह सारी बातें बताई, बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने में, बघेलखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक शशि कुमार पांडे जी के साथ ये खास बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी सुझाव है तो हम सहर्ष उसका स्वागत करते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हम आपको अपना ईमेल आईडी बता दें, radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।
2: आमने सामने।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: विलियम हॉकिंस, एक अंग्रेज जो बना मुगल खान। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला अंग्रेज भारतीय धरती पर एक उच्च पदस्थ मुगल ड्यूक और सम्राट का निजी ड्रिंकिंग पार्टनर बन गया था। साल 1608 में विलियम हॉकिंस नामक एक साहसी हेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर सूरत की बंदरगाह पर पहुंचा। वो अपने साथ राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर आया था जो सम्राट अकबर के लिए था, पर अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हॉकिंस के पास एक गुप्त हथियार था, वो ये कि वो तुर्की बोल सकता था। क्या आप जानते हैं कि ये विशिष्ट भाषा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? तुर्की भाषा पूरे इस्लामी जगत और मुगल अभिजात्य वर्ग के बीच संचार का एक उपयोगी माध्यम थी। इसकी मदद से हॉकिंस भ्रष्ट दुभाषियों को दरकिनार कर 1609 में आगरा के दरबार में सीधे बादशाह जहांगीर से बात करने में सफल रहा। जहांगीर इस इंग्लिश खान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे 3200 का सालाना वेतन और खान की उपाधि दी, जिसे हॉकिंस ने अपने मालिकों को फारसी ड्यूक के बराबर बताया था। क्या आप जानते हैं कि बादशाह जहांगीर के आंतरिक घेरे में जीवन कैसा था? हॉकिंस शाही दल का एक हिस्सा बन गया और उसने अपना अधिकांश समय सम्राट की संगति में कड़ी शराब पीने में बिताया। जहांगीर अपनी शराब नोशी के लिए जाना जाता था और हॉकिंस खुद को एक व्यापारी जहाज के ठंडे डेक से दूर ओरिएंटल वैभव की दुनिया में तैरता हुआ पाया। क्या आप जानते हैं कि बादशाह ने हॉकिंस के जहर दिए जाने के डर को कैसे दूर किया? ईर्ष्यालु मंत्रियों और शत्रुतापूर्ण पुर्तगाली एजेंटों से घिरे हॉकिंस को हमेशा अपनी जान का खतरा रहता था। जहांगीर ने जोर दिया कि वो महल की ही एक कन्या से विवाह कर ले जो उसके भोजन की निगरानी कर सके और उसकी चिंता दूर कर सके। हॉकिंस ने ये कहकर बचने की कोशिश की कि वो केवल एक ईसाई से शादी कर सकता है, लेकिन जहांगीर ने चतुराई से एक दिवंगत अर्मेनियाई ईसाई की बेटी को पेश किया जो पिछले शासक की पसंदीदा रही थी। हॉकिंस ने स्वीकार किया कि वो अपनी किस्मत का सामना नहीं कर सका और उसके अंग्रेजी नौकर ने दोनों की शादी करा दी। क्या आप जानते हैं कि इस अजीब कहानी का अंत कैसे हुआ? अपने उच्च पद और अपनी अर्मेनियाई दुल्हन के बावजूद अंततः पुर्तगालियों ने हॉकिंस को मात दे दी और जहांगीर का पक्ष अपनी ओर कर लिया। 1611 तक इंग्लिश खान जहांगीर की कृपा से वंचित हो गया और उसे अपनी पत्नी और उसके गहनों के साथ आगरा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति मुगल ड्यूक के रूप में रहा उसने अपना घर फिर कभी नहीं देखा? इंग्लैंड वापस जाते समय जहाज पर ही विलियम हॉकिंस की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी अर्मेनियाई दुल्हन इंग्लैंड की धरती पर कदम रखने से पहले ही विधवा हो गई। उसकी यात्रा इतिहास के सबसे अनोखे अध्यायों में से एक है, जो ये साबित करती है कि ऑनरेबल कंपनी की शुरुआत किसी साम्राज्य से नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो एक विदेशी दरबार में अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा था।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम वागर्थ का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कहानी पाठ, कविता पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ।

0: वर्तमान परिदृश्य और धर्मपाल, इस विषय पर वक्तव्य दे रही हैं डॉक्टर उर्मिला श्रीश।
1: एक चिंतक के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में, एक मनीषी के रूप में और एक रिसर्चर के रूप में उनका जो योगदान रहा है उसको जानकर चकित हो जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि किसी विषय के बारे में, अपने देश के बारे में या देश की जो व्यवस्था थी, शासन तंत्र था या हमारा जो भारतीय समाज था, उसके बारे में जब हम किसी विषय पर शोध करने के लिए जाते हैं तो शोध का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, कितनी गहराई के साथ हमें शोध करना चाहिए उस विषय के बारे में कि वो एक उल्लेखनीय दस्तावेज आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बन जाए। तो मैंने जो विषय अपना भारतीय परंपरा में समाज और राज व्यवस्था मैंने लिया, क्योंकि मैं भारतीय इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, हिंदी साहित्य तो रही हूँ, और दूसरा मेरा धर्म समाज अपना जो प्राचीन साहित्य है उसमें शुरू से बहुत ज़्यादा रुचि रही थी। तो मुझे लगा कि जब हम वर्तमान परिदृश्य की बात यदि हम करते हैं, वर्तमान की प्रगति के बारे में जानने के लिए हमें पीछे लौट के जाना चाहिए, क्योंकि अतीत से वर्तमान का जो तारतम्य होता है वो जुड़ा रहता और अतीत को छोड़कर हम वर्तमान के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं अपने विषय पर काम कर रही थी तो मुझे धर्मपाल जी की किताबें पढ़ने का ही, और उन किताबों को पढ़कर आप पूरे भारतीय समाज के बारे में जान सकते हैं। और जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, भारत की पहचान, आज हम विदेशों में जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी लगता है कि हम किस देश के हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी भारतीयता क्या है, हम क्या हैं, मतलब सबसे पहले हम अपनी पहचान से शुरुआत करते हैं। और अंग्रेजों से पहले का भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी किताब है, भारत का स्वधर्म। स्वधर्म क्या है, क्या होता है स्वधर्म, क्या अपने देश का, हर देश का अपना कोई स्वधर्म होता है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसकी बनाई हुई कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम कहें कि ये तो केवल भारत का स्वधर्म है, ब्रिटिश इंग्लैंड का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, रूस का नहीं है, केवल हमारे देश का ये स्वधर्म है। तो वो है क्या असल में, उसकी नींव क्या है, उसकी आधारशिला क्या है। और भारतीय चित्त मानव स्वकाल, इतनी सुंदर ये किताब है कि जब हम बात करते हैं कि किस चित्त से हम बात करें, हमारे चित्त में क्या है, हम कहते हैं ना हमारे मन में क्या है, हमारे मनस में क्या है, कौन सा काल है, कौन सा समय है, ये कौन सी अवधारणा है। तो जब इस किताब के को लेकर मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें थी आज के संदर्भ में, कि धर्मपाल जी की लेकर आना हमें बहुत ज़रूरी थी। और स्वदेशी और भारतीयता, तो स्वदेशी की बात कौन करता था, क्या आप जानते हैं स्वदेशी की सबसे ज़्यादा बात पर सबसे पहले किसने की थी, किसने, गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने की थी। लेकिन धर्मपाल जी भी गांधी जी को कोट करते हैं, उसकी परिभाषा में वो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों की जो आज बात चल रही है उसके बारे में धर्मपाल जी ने कि स्वदेशी होता क्या है असल में, और गांधी जी उसके बारे में क्या सोचते थे। तो ये औचित्य क्या है, मानस क्या है, काल क्या है, भारतीयता क्या है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम अपने भारत को जानने की कोशिश करते हैं, भारतीयता को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पीछे लौट कर उसकी तरफ जाना चाहिए। अब वर्तमान परिदृश्य क्या है हमारा, आज हम यदि हमसे पूछे कि भारत का वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो क्या काल है, क्या समय है परिदृश्य में, या हमारा जो भारत है, भारत भूमि है, या हमारा जो अध्यात्म है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी भारतीयता है, क्या ये सारी की सारी चीज़ें आज हमारे परिदृश्य में हैं, या हम जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, या जिस राष्ट्रीयता की बात हम करते हैं, या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो क्या ये वर्तमान परिदृश्य में ये तमाम तरह की चीज़ें आज आपको नज़र आ रही हैं। क्या हम अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, हमें अपनी परंपराओं के बारे में जानना चाहिए, हमें अपनी भारतीयता के बारे में जानना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद क्या होता है ये जानना चाहिए, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है क्या वो हमें जानना चाहिए, क्या इन सब के बिना हमारी कोई अपनी पहचान है? और आज हम अब दुनिया में यदि स्थानीय चीज़ों को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर जो आज प्रधानमंत्री जी नाम दे रहे हैं, ये स्थानीय चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना, स्वदेशी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देना, गांधी जी खादी की बात करते थे, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो धर्मपाल अपने साहित्य में, अपने व्याख्यानों में और अपने चिंतन था उनका उसमें वो किस तरह से लेकर आए हैं। तो मैं इसीलिए उनके उससे बहुत ज़्यादा कि भारत का स्वधर्म क्या है, परंपरा क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, ये तमाम तरह की चीज़ों पर वो बात करते हैं। यदि वो पंचायती राज पर 1961 में राजस्थान में जाकर वहाँ से रिसर्च शोध शुरू करते हैं, आज जिस पंचायती समाज के बारे में हम इतनी अच्छी बातें करते हैं, एक व्यवस्था देखते हैं, धर्मपाल जी 1961 में राजस्थान में जाकर वहाँ का पंचायती समाज क्या होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने समुदाय थे, कितने गांव थे, फिर वो तमिलनाडु साउथ में जाते, वहाँ बहुत बड़ा उन्होंने रिसर्च का काम किया। 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में क्या अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं थी, क्या नियम थे, एक एक संघ एक एक उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगी, उस पर जाएंगी धर्मपाल के साहित्य में तो उसको पाएंगी। मेरी आज सबसे ज़्यादा, चूँकि मैं लिखती हूँ, मेरी आस्था है कि मैं अपनी परंपराओं के बारे में बात करूं, मैं अपनी सभ्यता के बारे में बात करूं, मैं अपनी संस्कृति के बारे में बात करूं, मैं आज जो मानवीय मूल्य हैं उसके बारे में बात करूं, आज हमारे ग्रामीण समाज में जो परंपराएं हैं उनके बारे में बात करूं, तो मैं बार बार लौट के फिर अपने अतीत में जाती हूँ। अतीत में हमें एक ऐसा महापुरुष दिखाई देता है, एक ऐसा चिंतक दिखाई देता है जिसका नाम धर्मपाल है और जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो परंपरा और उनके बारे में यदि हम किसी के बारे में जानते तो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े उनके विचारों के बारे में हमें ज़रूर सुनना चाहिए। वो क्या है, मानव जाति की विविध सभ्यताएं रही हैं और हैं, इनके इतिहास और स्वरूप पर अनुसंधान का कार्य लगभग चलता रहता है। परंपराएँ आप जानते हैं क्या होते हैं, घर में आपने सुना होगा नहीं, कई बार आपकी माँ कहते हैं हमारे घर की ये परंपरा रही है, पहनावे में कहती होंगी, खान पान में कहती होंगी, विचारों में कहती होंगी, रीति रिवाज में कहती होंगी, लाइफ आपकी जो जीवन शैली है उसमें कहती होंगी, आप जो धर्म धार्मिक अनुष्ठान या कार्य करती हैं उसमें कहती होंगी, तो बताती होंगी ना कि हमारी संस्कृति ये है, हमारी परंपराएं ये है, तो जो शुरू से चली आ रही हैं कहीं कहीं जाके परिवर्तित हो जाती हैं, तो उनका कैसा क्या सभ्यताएँ, कितनी लंबी सभ्यता की जो परंपरा इतिहास रहा है, हजारों साल लग जाते हैं कोई सभ्यता बनने में। आपने सुना होगा मिस्र की संस्कृति या सभ्यता है ना, या दूसरे देशों की, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति क्यों बची हुई है, क्यों बची, उसकी जमीन क्या है, उसके आधार क्या है, उसके अपने मूल्य क्या रहे हैं, उसको मानने वाले लोग कैसे रहे हैं, उसकी जड़ क्या रही है, तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हमें आज जानना ज़रूरी है। और जब महात्मा गांधी की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं, धर्मपाल जैसे चिंतकों की बात करते हैं, तो हम उन तमाम चीज़ों को बहुत ही आसानी से बहुत सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुख्यतः तो हर समाज अपनी सभ्यता की स्वीकृति अपने ढंग से जीवंत रखता है। हमारे यहाँ क्या है, वैविध्य है संस्कृति में, कितनी तरह की विविधता है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं अनेकता में एकता, कितनी तरह के धर्म है हमारे यहाँ, कितनी तरह की संस्कृतियाँ हैं, कितनी तरह की परंपराएं हैं, कितनी तरह की, तमाम तरह की जो वैविध्य हमें भारत देश में दिखाई देता है वो दुनिया की किसी देश में दिखाई नहीं देता है। तो वो कह रहे हैं प्रेम और श्रेय के रूपों में आकांक्षा और सृजन के विविध पुरुषार्थों का आधार बनाती है। इस स्मृति का बना रहना किसी विचार और व्यवहार को अभिप्रमाणित करता है। स्मृति हित कथन या चिंतन अभिप्रामाण्य कथन का चिंतन हो जाता है। तो मात्र देश काल जो धर्मपाल जी कहना चाहते हैं कि जो स्मृतियां हैं है ना, और स्मृतियों में जो चीज़ें हैं फिर वो आगे चलते हैं कि यदि हम अपने अतीत को जानना चाहते हैं तो उसका साहित्य हमारे लिए कितना जरूरी है। आप भारतीय साहित्य पढ़ती हैं, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ती हैं, या दूसरे राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ती हैं, या हर्षवर्धन या करिश के बारे में पढ़ती हैं, तो क्या करती हैं? अपने प्राचीन भारतीय साहित्य को जानती है ना, उससे शुरुआत करती है ना कि प्राचीन भारतीय साहित्य में ये चीज़ें थी, ये राजा महाराजा थे, उनकी शासन व्यवस्था इस तरह की थी और किस तरह के उनके सुधार हुए। इसी तरह से जो साहित्य है हमारा, जिसमें ऋग्वेद है, जिसमें उपनिषद हैं, नाम सुने हैं अपने वेदों का, है ना, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, महाभारत है, गीता है, विष्णु गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारी गीताओं के नाम है ना, और यहाँ तक कि संस्कृत का जो साहित्य है, यदि उसको आप पढ़ेंगे तो आप जानने की कोशिश करेंगे उस भारतीय साहित्य से कि हमारा समाज कैसा था, हमारी शासन व्यवस्था कैसी थी, मानवीय मूल्य क्या थे, राजा का धर्म क्या होता था, उसका अपनी प्रजा के साथ कैसा संबंध रहता था, ये तमाम तरह की चीजें धर्मपाल का जो साहित्य है उसमें उन्होंने बताया, सारी की सारी चीजें। यदि आप अपने वेदों में जाएंगे, यदि आप अपने पुराने साहित्य में जाएंगे, तो तमाम तरह के जो मूल्य हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं, और खासकर धर्मपाल जी ने सभ्यता पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि यदि सभ्यता बनने में हजारों साल लग जाते, एक दिन में कोई सभ्यता नहीं बनती है, भारतीय सभ्यता को कितने साल हो गए, तो और काल क्या है, काल क्या है, मान लीजिए कि काल वो है जब बुद्ध मान लीजिए एक साधना कर रहे थे और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो काल जैसे वो ठहर गया, उस काल में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो उन तमाम चीजों को धर्मपाल अपने साहित्य में लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि यदि हम अपने आज और कल के किस तरह की चीज़ें थी, काल और सब पूरी चीज़ें बताएं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपके लिए है कि हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है, उस वर्तमान परिदृश्य में शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अलावा हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो मानवीय व्यवस्था है, हमारे जो मानवीय संबंध हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो साहित्य है, उस साहित्य को हमें अपने जीवन में किस तरह लेकर आना चाहिए, ताकि हम एक वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा आपने सुना है ना, कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नारा भी आपने सुना होगा, तो हमारा जो देश है उसकी जो महान परंपराएं हैं, महान संस्कृति है, महान जो साहित्य है, और उस साहित्य को, उन परंपराओं को, उन सभ्यताओं को, उस पूरी एक व्यवस्था, पूरे महाभारत में आप जाके देखेंगे कि राजा के सारे धर्म बताए गए हैं, हमारा साहित्य क्या कहता है, हमारा प्राचीन साहित्य क्या बात करता है, पुरानी राज जो व्यवस्था थी वो किस तरह से आज होकर आई है, और उसका आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिकता होना चाहिए। धर्मपाल केवल परंपरा की बात नहीं करते हैं, पर्यावरण की बात वो करते हैं, घुमंतु जो जनजातियां हैं, आपने आदिवासी जनजातियों के बारे में सुना होगा, घुमंतु जनजातियों के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ी बात वो बात करते हैं भारतीय जो शिल्पकार हैं उसके बारे में वो बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं, सबसे बड़ी बात करते हैं कि जो जीव है, समानता की बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति को क्यों ज़्यादा मानते हैं कि वो महापुरुष है, महात्मा गांधी को क्यों मानते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के उपासक थे, तो उनको इसीलिए मानते हैं, विवेकानंद युवाओं में जोश भरने का काम करते थे, भारत की गौरव की बात करते थे, इसी तरह से धर्मपाल हर व्यक्ति को, हर जीव को, जीव में ईश्वर का तत्व मानते थे, है ना, कि हर व्यक्ति में, आज क्या चल रहा है पर्यावरण में, हम किस किस को बचाने की बात कर रहे हैं, पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को, है ना, जानवरों को, सबको बचाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो उस समय वो कहते थे कि चाहे बिल्ली हो, चाहे बंदर हो, चींटी हो, हमारे यहाँ ये परंपरा है, कौए होंग, धर्मपाल जी ने एक जगह लिखा है कि इन सबको खाना खिलाने की, इन सबको पालने की, इन सबको संरक्षित करने की हमारे यहाँ पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उन सब में बताया गया है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं, आज हम अपने पृथ्वी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं और स्वदेशी के बारे में बहुत जरूरी है आज के संदर्भ। वर्तमान परिदृश्य में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक ही सबसे ज्यादा एक ही बात पर जोर है कि हम अपने स्थानीय शिल्पकारों को, कलाकारों को और जो काम कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा महत्व दें। वो सबसे ज्यादा अपने हाथ से बनाई हुई चीजों का प्रयोग करें। तो वो कहते हैं कि भारतीयता हमारे निजी जीवन व्यवहार और हमारी धार्मिक व्यवस्था में अभी भी, चाहे वह कुछ प्राणी स्वरूप हो, जीवंत है। वही धर्मपाल जी संस्कारों की बात करते हैं, हम रोज संस्कारों की बात करते हैं, उसके लिए पूछते हैं। और स्वदेशी की जो बात मैं कर रही थी कि स्वदेशी अत्यंत प्राचीन अवधारणा है, शायद जब से धरती पर जीवन है तभी से स्वदेशी का भाव और व्यापार है। हर चीज स्वदेशी है, मिट्टी से बनी हुई चीजें क्या है, है ना, हर चीज मतलब मैं स्वदेशीपन था। और आज हम स्वदेशी के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो धर्मपाल भी इस चीज को महत्व देते थे कि महात्मा गांधी ने 1916 में एक भाषण दिया था, तब उन्होंने स्वदेशी का नारा लगाया था कि स्वदेशी को अपनाना कितना जरूरी है। और उसी चीज को धर्मपाल जी भी बहुत महत्व देते हैं। और दूसरी चीजें जो ये आज के संदर्भ में जिस रूप में सारी दुनिया में हमारा देश आज खड़ा हुआ है और जिस शक्ति के रूप में उसकी पहचान है, और हम लौटते कब हैं, आज का जो विश्लेषण करना है तो हम लौटते क्यों हैं। इसलिए लौटते हैं कि हमें अपनी चीजों का पुनर्सर्जन भी करना है ना। हमेशा हर चीज को हम हर रोज आप एक ही ड्रेस नहीं पहनती हैं, दूसरी ड्रेस पहनती है ना, हर बार आप नई किताब पढ़ती हैं, नए विचार वो करती हैं, नई चीजें देखती हैं। क्यों देखती हैं? क्योंकि आपको उसमें कुछ ना कुछ नयापन चाहिए, कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ वैविध्य चाहिए, कुछ सुंदरता चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो बड़े बड़े जो विचारक और चिंतक होते हैं अपनी छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा और अपने जो महापुरुष हैं उनके जीवन के दृष्टांतों के द्वारा आपके सामने रखते हैं। उनका साहित्य पढ़ेंगे, उन्होंने इतने सारे नारद की कथाएं उसमें देकर अपनी बात को कहा है। बहुत सारे के पुरुष सूक्त में ये कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है, राम की कथा कहकर और महाभारत की कथाएं लिखकर। तो आप कैसे एक नीरस चीज को सरस कैसे बनाया जाए कि आप अपने संस्कारों को जाने, आप अपनी भारतीयता को जाने, आप अपने स्वदेशीपन को जाने, आप संस्कारों को जाने, परंपराओं को जाने, तमाम तरह की चीजों को आप जाने। तो उन चीजों को जानने का एक जरिया भी ये होता है कि जो जैसे आप कोई भी एक कहानी ले लेते हैं उसके माध्यम से, कहते ना पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे और बाद में कहते थे कि इससे क्या सार निकला, क्या उपदेश निकला, है ना, जो मॉरल ऑफ स्टोरी होता था कि क्या इसका वो निकला है, निष्कर्ष क्या निकला। तो ये इस तरह की चीजें, तो धर्मपाल के बारे में जब बहुत बड़ा साहित्य है उनका, तो जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं कि महात्मा गांधी क्यों प्रासंगिक है, प्रेमचंद क्यों प्रासंगिक है, धर्मपाल क्यों प्रासंगिक है, प्रासंगिक वही व्यक्ति होता है जो हमारी तमाम तरह की जो अवधारणाएं हैं और जो हमारी चीजें चल रही हैं उन चीजों को जब एक दूसरे के साथ उसका मेल करता है, उसमें साम्यता दिखाता है और उनके गुणों को जब आज के संदर्भ में आपके सामने रखता है तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा प्रासंगिक व्यक्ति माना जाता है। तो इससे पहले जब मैं काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि भाई राजव्यवस्था क्या थी, आज तो हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रह रहे हैं, लोकतंत्र है हमारा देश, पहले तो राजतंत्र की व्यवस्था थी। तो आप देखिए वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, महाभारत में, तमाम हमारे वेदों में, तमाम तरह के जो ग्रंथ हैं उसमें इतने तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतने नियम बताए गए हैं राजा के लिए कि आज के संदर्भ में तो कोई उनका पालन कर ले बहुत बड़ी बात है। तो वो चीजें आज हमारे लिए जरूरी है ना कि हम कैसे सीखें। तो अतीत हमारी बहुत बड़ी धरोहर होता है, ये हमारी चीजें बहुत बड़ी धरोहर होती। तो मुझे लगता है कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे धर्मपाल को पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जब हम राज की बात करेंगे और व्यवस्था की बात करेंगे और वर्तमान की बात करेंगे और जब सीधा सीधा समाज हमारे साथ जुड़ा है, तो बिना इन ग्रंथों को पढ़े, इनकी विशेषताओं का पालन किए, बिना अपनी परंपरा की बात किए, बिना अपनी संस्कृति की बात किए, बिना अपनी सभ्यता की बात किए, बिना अपने धर्म और वैविध्यपूर्ण जो चीजें रही हैं उनकी बात किए बिना हम अपनी किसी भी व्यवस्था को, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, उसको हम समझ ही नहीं सकते। तो चीज़ों को समझने के लिए, उसको जानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम बार बार अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ, प्राचीन साहित्य की तरफ, अपनी परंपराओं की तरफ, अपनी सभ्यता की तरफ लौटें और हमारे जो महापुरुष

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: एक शाही दहेज, सात द्वीपों।
2: क्या इसका वो निकला है, निष्कर्ष क्या निकला? तो ये इस तरह की चीजें, तो धर्मवारी के बारे में जब बहुत बड़ा साहित्य है उनका, तो जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं कि महात्मा गांधी क्यों प्रासंगिक है, प्रेमचंद क्यों प्रासंगिक है, धर्मपाल क्यों प्रासंगिक है, प्रासंगिक वही व्यक्ति होता है जो हमारी तमाम तरह की जो अवधारणाएं हैं और जो हमारी इनकी विशेषताओं का पालन किए, बिना अपनी परंपरा की बात किए, बिना अपनी धरोहरों के, तो मुझे लगता है कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे धर्मपाल को पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई। क्योंकि जब हम राज की बात करेंगे और व्यवस्था की बात करेंगे और वर्तमान की बात करेंगे और जब सीधा सीधा समाज हमारे साथ जुड़ा है, तो बिना इन ग्रंथों को पढ़े, इनकी विशेषताओं का पालन किए, बिना अपनी परंपरा की बात किए, बिना अपनी संस्कृति की बात किए, बिना अपनी सभ्यता की बात किए, बिना अपने धर्म और वैविध्यपूर्ण जो चीज़ें रही हैं उनकी बात किए बिना हम अपनी किसी भी व्यवस्था को, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, उससे हम समझ ही नहीं सकते। तो चीज़ों को समझने के लिए, उसको जानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम बार बार अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ, प्राचीन साहित्य की तरफ, अपनी परंपराओं की तरफ, अपनी सभ्यता की तरफ लौटें और हमारे जो महापुरुष हैं, जो चिंतक हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ धर्मपाल जी ने जो काम किया है, पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे ग्रामीण समाज हो, नगरीय समाज हो, ब्रिटिश समाज हो, उसके पहले का समाज हो, या जो हमारा साहित्य है, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जो शोध कार्य किया है, जो चिंतन किया है, जो मनन किया है और जो उसका सार लिखा है, जो किताबें धर्मपाल शोधपीठ द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं या जो साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा, मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि आप जीवन में बहुत आगे जाने वाले हैं, इन किताबों की दुनिया में ऐसे महापुरुषों के, ऐसे चिंतकों के साहित्य की दुनिया में जब आप प्रवेश करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको भारत का एक जो महान स्वरूप, जिसकी कहानियां हम सुनते हैं, जिनके बारे में आज कहा जाता है, जिनकी बात की जाती है, उस भारत की सच्ची तस्वीर को आप इनके साहित्य के माध्यम से भी जान सकते हैं, उस समाज को जान सकते हैं। तो आज हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अतीत में एक बार जरूर झांकें और अतीत को लिखने वाले जो महान लोग हैं उनके साहित्य को जरूर पढ़ें। और जब मैंने धर्मपाल जी को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई, मैं अभिभूत हो गई, चकित हो गई कि हमारे बीच ऐसे ऐसे चिंतक हैं, ऐसे ऐसे लेखक हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च करने वाले लोग हैं जिन्होंने भारत की एक नई तस्वीर को आपके सामने रखा है। आप देखेंगे भारतीय समाज के जो विविध रूप हैं उसको जानकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

कार्यक्रम वागर्थ में आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शरीश का वक्तव्य। विषय था वर्तमान परिदृश्य और धर्मपाल। आज कार्यक्रम वागर्थ में इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज जो विषय हम आपके बीच लेकर आए हैं वो है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आईं। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: तो निहारिका जी, हम बात कर रहे हैं नशे का जो दुरुपयोग है देश में और इसकी रोकथाम है, तस्करी, इस फील्ड पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं, तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई, आप इससे कैसे जुड़ी?
2: लगभग 12 वर्षों से मैं समाज सेवी के रूप में भोपाल शहर में काम कर रही हूँ और भोपाल शहर के ऐसे समुदाय में काम कर रही हूँ जिन्हें हम आमतौर पर बस्ती क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आम भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। तो खास तौर पर वहाँ के समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं और परिवार है, उनके साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कई बार बहुत सारे जो बच्चे और महिलाएं स्कूल से बाहर होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो है नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है। और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है, तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आता है।
1: आप इसमें काम कर रही हैं, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है बाजार
2: में? जी हाँ, बिल्कुल।
1: इसके पीछे आप क्या मानती हैं, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है, जबकि सरकार इस पे रोक लगाती खासी?
2: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है। हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके जमीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है।
1: बिल्कुल, ये बात जी, एक बात आती है कि एक तो जब आप इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो लोग ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो कोई टारगेट लेके चलते हैं कि वो किन लोगों को नशे में लिप्त करेंगे, बच्चों को ही या युवा वर्ग को या लड़कियों को, ऐसा कुछ आपने स्पेसिफिक देखा, या सभी लोग इसमें लिप्त होते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं क्या उनका कोई टारगेटेड ग्रुप है?
2: अधिकांश यदि मैं जिन एरिया में काम करती हूँ वहाँ की बात करूँ, क्योंकि अधिकतर जो जुड़ाव होता है वो बच्चों और युवाओं के साथ में होता है, यदि मैं उनके अनुभवों की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आया है कि बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं इन तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल हैं और वो नशे के आदि भी हैं, तो शायद उन्हें लालच दे के अपने सर में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है। क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है, या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा, तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प किया क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी। जब आपके हाथ में नशा आता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई कर लूँ, कोशिश कर लूँ, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया और धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प किया। तो युवा जो है जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो इस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
1: दो तीन चीजें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं, एक कारण उनका लालच। हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
2: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है। तो शायद इसलिए वो बच्चे उनका इजी टारगेट रहता होगा कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाए खुलकर। अच्छा। तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण है, एक तो स्ट्रेस होने के कारण आप वहाँ जा रहे हैं, और दूसरा आपको नशा नहीं मिलने का जो स्ट्रेस है, क्योंकि आप जब एडिक्टेड हो जाते हो तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ही है। तो इन दो तरीकों से लोग उसमें जुड़ते हैं।
1: एक चीज और हम अब निकल के आती है कि जब आप, चूंकि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आप जब निकलते हैं तो ये खुद ब खुद वो इलाकों में आपको बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे या लड़कियां या बड़ी उम्र के लोग या पुरुष बड़े या महिला, उम्र को अगर दरकिनार करके बात करें तो हम बात करना चाह रहे हैं उस पर कि जो भी लोग नशे में लिप्त हैं तो किस तरह से वो, आप पहले प्रथम दृष्टि आप कैसे उन्हें पहचानते हैं या आप क्या तरीके अपनाते हैं जिससे ये लोग आपकी पहचान में या आप उन तक पहुंच पाए?
2: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है। तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है, फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत कर पाए। तो कई बार जनसंवाद तरीका होता है जहाँ पे लोग इन मुद्दों को बताते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वो हमें बताते हैं उनकी बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तब वहाँ से ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं। जैसे कई बार महिलाएं जब आती, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि लाइव कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया, कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
1: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा करते, जो सबसे ज्यादा नशा आप जो आप देखते हैं किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
2: ज्यादातर जो है शराब का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो यूज करते हैं, गांजा जो है वो यूज करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीजें समझ, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि ये है, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे उपलब्ध, सुलोचन है खासतौर पे। कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं।
1: तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो या जो भी व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
2: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया। तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा। तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया। फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ में जुड़ा तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज्यादा नशे का उपयोग किया और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा। तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है, तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। घर का माहौल है, यदि आपकी उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चों को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल देखता है वो अडॉप्ट करता है। तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरह की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे। तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीजें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छेड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुंचाना हुआ, लड़ाइयां करना। तो उन्होंने दोनों चीजें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीजें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा। तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीजें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर है या जो नशा मुक्ति केंद्र है तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था, या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी, या उनके साथ में दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए। तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ, हमने और ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी वो जो बच्चा है वो बिल्कुल नशा नहीं करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा
1: मतलब इससे बात कह सकते हैं कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं और अभी तक मान लीजिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके आदी हैं, तो अगर वो काउंसलिंग तक पहुंचते हैं या आपसे या आप जैसी अन्य संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब एक कारण बन सकता है कि वो नशे से दूर हो जाए। जितनी बात आपकी हुई अपनी, जब आप इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या युवा हों, तो परिवार का क्या आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, या कई बार आपको लगता है कि परिवार भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाए, वो भरोसा कर पाते हैं आप पे जल्दी कि ये हमारे बच्चे को या इंसान का नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे, या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
2: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है। तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा। तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया, क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा, तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं, क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई ये चुनौती थी, लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं।
1: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है, या अभी काफी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफी बड़ी हुई है?
2: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है, तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं है कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे की उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा, जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं अलग अलग, उन पे भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएं, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए कैसे केंद्र हो,
1: कैसे काम, मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के लिए।
2: बिल्कुल, ऐसे कुछ कुछ अभियान चल रहे हैं लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की ज़रूरत है। और खास कर ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नज़र आता है। दूसरा, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, जानकारियों का, वो एक मुझे कम नज़र में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मिलते तो उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
1: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है, तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता हो कि उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
2: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जो मैं देखती हूँ कि नशे कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरह की गतिविधियाँ करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है, यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है, जो खासतौर पर जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है। और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है, कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमें वहां पर नजर में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो है वो नज़र में, कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पे जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
1: सॉल्यूशन जो समस्याएं आपको लगती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हों और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई, तो इन ये समस्याएं ना आए आप, इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
2: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और खासतौर पर जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएं चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की ज़रूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
1: शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है, 12 साल की, एक स्कूल की किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं, तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने?
2: काफी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं, तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है, तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं, ताकि ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहां पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज से, तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पे हम बात करते हैं, और खासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं, और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहां सहज महसूस करे, और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है, वो सामने।
1: एक चीज तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है, और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
2: बिल्कुल है।
1: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे?

0: सुविधाएं इनके पास टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
1: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है, माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहाँ पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है वो उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इंजॉय करने का, तो वो इंजॉयमेंट के जो साधन के रूप में वो इसको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते कि आपको सुविधाएं, आपको हाँ। जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सब ओके हैं।
0: मतलब
1: तो,
0: इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशे करने के अपने अलग कारण है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और एक बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे। हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से प्रयास बहुत जरूरी है कि इस नशे को खत्म करा जाए, ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका ये जो आप साधुवाद हम आपका देंगे जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम था, ये था नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ हमने ये कार्यक्रम करा इस विषय पर, और ये जो कार्यक्रम था इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरमई परंपरा से सराबोर 3 दिवसीय गायन समारोह का आगाज शुक्रवार से भारत भवन में होगा। अनहत भारत भवन द्वारा आयोजित संगीत समारोह में देश के ख्यातनाम शास्त्रीय गायक अपनी प्रस्तुतियों से संगीत प्रेमियों को रू राग लय और भाव की अनूठी दुनिया से रूबरू कराएंगे। भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि समारोह की शुरुआत शाम 7:45 में जयपुर अतरौली घराने की प्रख्यात शास्त्रीय गायिका अश्विनी भिड़े देशपांडे की प्रस्तुति से होगी। इससे पहले शाम 7 बजे स्वाति तिवारी मंच संभालेंगी। कार्यक्रम में एंट्री पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी।

दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय सभागार में आदित्य संस्कृति मासिक पत्रिका के साहित्यकार डॉक्टर विकास दवे विशेषांक का लोकार्पण हुआ। पत्रिका एवं संदर्भ प्रकाशन भोपाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने डॉक्टर दवे को बहुमुखी प्रतिभा का धनी और एक कुशल संगठक व साहित्यकार बताया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय MCU और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद MPCST के संयुक्त तत्वावधान में 8 से 17 जुलाई तक 2 सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स है। MCU जुलाई 2026 सत्र से स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में AI आधारित 2 नए प्रश्न पत्र शामिल कर रहा है। साहित्य के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छतनारा समूह द्वारा आयोजित अभय शुक्ला युवा शायर स्कॉलरशिप अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। इस स्कॉलरशिप के लिए देश भर से लगभग 350 युवा शायरों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी थी। कड़े मूल्यांकन के बाद दूसरे राउंड के लिए देश के शीर्ष 20 होनहार शायरों का चुनाव किया गया है। इसी सूची में भोपाल शहर के उभरते हुए रचनाकारों ने भी अपनी मजबूत जगह बनाई है।

देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत बीटेक प्रथम वर्ष की कक्षाएं आगामी 20 जुलाई से विधिवत रूप से प्रारंभ होने जा रही हैं। काउंसलिंग के बाद देश के सभी 23 IIT संस्थानों में जुलाई के 3 सप्ताह तक प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

गायिका शिता विश्वकर्मा को किशोर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। केकेएफसी इंडिया म्यूजिक अकादमी एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 अगस्त को रविंद्र भवन में समारोह आयोजित होगा। इसमें इशिता को ये सम्मान दिया जाएगा। कार्यक्रम में देशभर के कलाकार किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुतियां भी देंगे। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अरकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अरकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।

यूनियन नामक जुड़वा जहाज एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था। दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध वॉर ऑफ द स्पैनिश सक्सेशन करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था उस समय के प्रमाण है जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: झलकारी देवी का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर 1830 को हुआ था। ये वो इलाका था जहां आए दिन डाकुओं का आतंक रहता था, इसलिए आत्मरक्षा के लिए झलकारी के पिता ने उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र संचालन में निपुण किया था, ताकि समय पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। बचपन की यही शिक्षा आगे चलकर राष्ट्र के काम आई और रणभूमि में फिरंगियों से जूझने में सार्थक साबित हुई। झलकारी का विवाह महारानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के तोपची पूरन सिंह के साथ हुआ था। झलकारी भी महारानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज में शामिल हो गईं। झलकारी बाई ने रानी को फौज में सामग्री की अल्पता और तोपचियों की गद्दारी के राज से अवगत कराया, साथ ही शत्रु के किसी भी क्षण भीतर आने की संभावना और भविष्य के संकट बचाव के उपाय भी सुझाए। दुश्मन के आक्रमण के वक्त झलकारी ने स्वयं रानी का वेश धारण कर मोर्चा संभालने का प्रस्ताव रखा, ताकि छद्मवेश में रानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। झलकारी बाई जानती थी कि रानी के वेश में युद्ध करने का मतलब है मृत्यु को वरण करना, किंतु उनकी अद्वितीय स्वामी भक्ति और अटूट राष्ट्र प्रेम ने उन्हें आत्म बलिदान के लिए प्रेरित किया। योजना के अनुसार अदम्य साहसी और बलिदानी झलकारी प्राणों की परवाह किए बगैर टुकड़ी लेकर आगे बढ़ी, लेकिन दुर्भाग्य से पहचान ली गईं। झलकारी को देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा था कि यदि भारत की 1% नारियां भी उनकी तरह हो जाएं, तो अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। झलकारी देवी अंग्रेजी सेना से जूझती हुई उस जगह जा पहुंची जहां उनके पति पूरन सिंह अंग्रेजी सेना से मोर्चा ले रहे थे। लड़ाई के दौरान पूरन सिंह को तोप का गोला लगा और वे जीवित भस्म हो गए। झलकारी देवी पति की मृत्यु पर जरा भी विचलित नहीं हुई और बिना विलंब किए तोप का संचालन करने लगी। झलकारी देवी ने अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं की सेना से लोहा लिया था।
2: राम राम काका।
3: अरे आओ आओ राम रतन, कैसे हो? अरे वाह, आज तो विजया रानी भी आई है साथ में।
4: अरे अरे अरे, तू कहाँ भाग रही है? इतना
3: अरे खेलने दो, बच्ची है, खुली जगह है, जरा दौड़ भाग करेगी और थक के बैठ जाएगी।
5: अरे बहुत शैतान हो गई है काका।
4: अरे का हुआ? अरे अरे देखा ना, हम मना कर रहे थे। अरे अरे फिर भागी? अरे रुक जा बेटा, रुक जा, सुनती नहीं है।
3: अरे ये तो सच्ची पूरी झलकारी हो रही है।
4: झलकारी जे नाम तो सुनो लग रहा हो कितने। अरे अरे हाँ, वे गांव के हरबोलों की कहानी में सुनो ये जे नाम।
3: ठीक पहचाना राम रतन, बुंदेलखंड की तो थी झलकारी, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में।
4: अच्छा।
3: हाँ बेटा, झलकारी उसी देवी का नाम है जिसने 1857 के संग्राम में स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया अपना।
4: वो कैसे? पूरी ही बात बताओ काका आप तो।
3: ठीक है। अरे बेटा दो चाय लगा यहाँ, और बिटिया के लिए एक ग्लास में दूध ले आ, और बिस्कुट भी।
6: काका हो, मैं देखता हूँ।
7: अरे काय को तकलीफ कर रहे काका।
3: तकलीफ? अरे दूध तो तुम्हारे यहाँ का ही है, और झलकारी की कहानी सुनना है तो छोटी झलकारी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक थी झलकारी। झलकारी का जन्म लक्ष्मीबाई से 5 साल पहले झांसी के पास हुआ था, भोजला गांव में। सन 1830 22 नवंबर को भोजला के सदोव सिंह के घर में बधाए गाए जा रहे थे।
8: लक्ष्मी आई है नाना साहब, लक्ष्मी, हम तो बस नई पायल पहने
9: और हमारे नानी चुनरी
8: हीरे की बुंदा नहीं जाने।

0: अरे झलकारी अपने पिता की बहुत लाडली थी, पर उन दिनों डाकुओं के आक्रमण से लड़कियों वाले सारे पिता डरे रहते थे। इसलिए सदोक सिंह ने निर्णय लिया
1: हमारी झल्लो किसी के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि औरों की मदद करने में भी आगे रहेगी।
2: ये झल्ली बिटिया तनक आराम से, आज तुम आओ दूसरों दिन आए। अरे देख देख देख देख संभल के, अरे अरे अरे अरे अरे हाँ, अरे गिर गए हो तो हाथ पैर टूट गए हैं।
3: बाऊजी बाऊजी बाऊजी, पता है हम ना जंगल में बहुत अच्छी जगह देख के आए हैं निशाना साधने की, चलिए ना अभी सिखाइए, चलिए।
1: पर बेटा
3: चलिए ना
1: बेटी, कल
3: नहीं नहीं नहीं कल वाल नहीं, आज ही शुरू करना है बाऊजी।
1: अरे सदो भैया ये नहीं रुकने वाली, चलो हम भी चलते हैं साथ में, देखें तो हमारी झल्लो बंदूक कैसे चलाती है।
3: कक्का देखना हमारा निशाना, बताओ कौन सा आम गिरा है, बताओ बताओ। मारा ये लो, अब वो वाला गिराती हूँ। अच्छा अब मैं ऊंचा वाला गिराऊं, बटोर लो बटोर लो।
1: चल झल्लो दिया बत्ती का समय होगा, चल घर चले,
0: चलो हम भी चलते हैं साथ में।
3: अच्छा बाऊजी हम कढ़ी रोटी बना रहे हैं।
0: चिक चिक चिक संभाल, अरे अरे अरे अरे, अरे।
1: वाह सदो भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।
0: इधर झलकारी बड़ी हो रही थी, शस्त्र विद्या में पारंगत हो रही थी, और झांसी में बुंदेलखंड की वीरांगनाएं भी बड़ी हो रही थी।
1: झल्लो तू कहाँ चलती बिटिया?
3: बाऊजी आप आराम कर लो थोड़ी देर, मैं गैया हाँक लाती हूँ। चल चल कमली गौरी श्यामा चल।
4: खाना

0: साधु भैया, झल्लो को चीते ने घेर लिया है।
1: हे राम, तुम का कह रहे हो? तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमारी बिटिया के लाने, तो कोई बचा लो। हे राम, कोई बचा लो हमारी बिटिया के। हे झल्लो बिटिया, झल्लो बिटिया, झल्लो बिटिया।
2: हाँ बाबूजी।
1: हे राम, तूने का कर दो, एक चीते को मार दो। हे राम, तूने तो कमाल ही कर दो।
2: हाँ बाबूजी, बस चार बार में ही काबू कर लिया था हमने और पांचवे में तो चित।
3: वाह बेटी वाह, हमारे गांव को नाम कर दो तूने राम दही। अरे इसमें तो माँ की शक्ति है। वाह साधु भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।

0: सदोवा, ओ सदोवा।
1: अरे मम्मा, आओ आओ इते आओ।
0: अपनी जल्लों को लोग आसपास के गांव तक जाने लगे हैं, कछु पतो है? भोजला गांव झल्लों के नाम से जानो जात है, झांसी तक खबर पहुंच गई है।
1: सच्ची मम्मा?
2: देख बेटा, बिन माँ की बच्ची है सो हमारी लोगन को फिकर करने पड़े। अब ब्याह के लायक हो गई है अपनी झलकारी।
1: हाँ अम्मा, मैं भी ना जाने का भूल ही गया था, अब ढूंढाई लगानी पड़ेगी दूल्हे।
0: अरे हम का ऐसे ही आए, एक भलो मोड़ा देखो है अम्मा ने झांसी में।
1: झांसी में?
0: हाँ, पूरन सिंह नाम है, और तो और रानी की सेना में तोपची है, तोपची।
2: तुम कहो तो बात बढ़ाएं बेटा।
1: हाँ अम्मा, अब आप लोगन से अच्छा वो सोचा था, हमारी झल्लों के तो भाग खुल जाएंगे। हाँ, आप लड़का दिखा के बात पक्की कर लो। बस अम्मा, मोड़ी को ब्याह हो जाए

0: अपना ध्यान रखना, हम अकेला छोड़े जा रहे हैं आपको। अम्मा बाऊजी को ध्यान रखियो।
1: नहीं बेटा, तू तो हमाउमान है। बेटा पूरन, झलकारी के बाबूजी ने बहुत अच्छे से अच्छी विद्या देने की कोशिश करी है अपनी झल्लों को, बिन माँ के पाला है। जे ध्यान रखियो, हमारी झल्लो पूरे गांव की लाडली है। अरे गांव को बेटा है जे बेटा, बहुत बहादुर।
2: आप चिंता नहीं करें अम्मा, आखिर झांसी जा रही है आपकी झल्लो, उसको पूरा सम्मान मिलेगा। बाबूजी आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी।

0: प्रणाम माँ। प्रणाम बाऊजी।
1: अरे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। देख बेटा, मैंने और पूरन के बाऊजी ने उपहार में तुझे सोना चांदी नहीं दिया। हम चाहते हैं जो मान तुमने भोजला को दिलाया वो बेकार नहीं जाए। बेटा तू अब झांसी में है, जिसकी बहु बेटियों के असली आभूषण यही है।
0: धन्यवाद माँ। माँ मैं इतनी खुश हूँ ये तलवार का उपहार पाकर कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। मैं अभी इन्हें दिखाकर आती हूँ माँ।
1: जरूर जा बेटा, बाहर पूरन घोड़े पर तुम्हारी राह देख रहा है। वो अपने बलदेव कक्का है ना, उनसे घोड़ा मांग के लाया है। कह रहा था झलकारी सवारी करके देख ले तो अपन ही रख लेंगे।
0: अब हम चलते हैं।
1: जा बेटा जा।
0: जोहार माँ। जोहार बाऊजी।
2: जोहार बेटा।

0: अरे बस भाई, नदी आ गई, यहाँ रुकते हैं।
1: तुम तो बड़ी अच्छी घुड़सवारी जानती हो झलकारी।
2: जी, बाऊजी ने पूरी शिक्षा दी है हमें। हम तो तीर तलवार और बंदूक चलाना भी जानते हैं। एक बात कहें आपसे।
1: कहो।
2: हम रानी जी को देखना चाहते थे बचपन से ही।
1: इसमें क्या बड़ी बात है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बाऊजी की शिक्षा बेकार मत जाने दो। तुम आज ही चलो किले, रानी जी से मिलवा भी देंगे और तुम्हारे सेना में भर्ती होने की बात भी कर लेंगे।
2: जी सच में? क्या हम सच्ची में भर्ती हो सकते हैं?
1: क्यों नहीं, तुम तो सभी कलाओं में निपुण हो और तुम्हारे जैसी वीरांगना की तो झांसी को जरूरत है झलकारी।
2: पर भाई साहब, रखेंगे हमें?
1: भाई साहब वीरों का बहुत मान रखती है और उन्हें जरूरत भी है।
3: ये वो समय था जब झांसी की गलियों में आजादी की लहरें उठना शुरू हो रही थी। 7 मार्च 1854 को डलहौजी ने झांसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एक तरफ मेजर डगलस ने झांसी का अंग्रेजी बंदोबस्त शुरू किया, दूसरी तरफ रानी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी।
1: जोहार भाई साहब।
4: आओ आओ पूरन, तो ये है झलकारी।
1: जी भाई साहब, झलकारी आपके दर्शन की बड़ी इच्छा रखती थी, सो लेता आया।
4: झलकारी, तुम्हारी बहादुरी की बहुत बातें सुनी है हमने। तुम्हें अपना समय यूं ही नहीं गवाना चाहिए। अपने गुणों का उपयोग झांसी की सेवा में नहीं करना चाहोगी?
2: हमारे सौभाग्य भाई साहब।
4: ये कुछ उपहार है तुम्हारे लिए झलकारी। पहली बार देखा है तुम्हें, रख लो।
2: भाई साहब, सेना में भर्ती करके आपने हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार तो दे ही दिया। बस अब आशीर्वाद दें कि अपने कर्तव्य को निभा सके। झांसी की आन बान के लिए हमारा सब कुछ न्योछावर है भाई साहब।
4: झलकारी, तुम जैसे वीरों की निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर ही तो मैंने स्वराज्य की घोषणा की है। जाओ और कल से ही सैन्य परीक्षण के लिए बड़ा बाग आ जाना।
3: झांसी में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। लोगों ने युद्ध की तैयारी को उत्सव में बदल दिया था। बच्चा बच्चा झांसी के लिए मरने को तैयार था। औरतों ने मेहंदी वाले हाथों में बंदूक उठा ली थी। इधर झलकारी की रात काटे नहीं कट रही थी। भोर होते ही तैयारी करके उतावली झलकारी बड़ा बाग जा पहुंची।
4: सुंदर मुंदर, यहाँ आओ। काशी, चुन्नी और कमला तुम, झलकारी तुम भी यहाँ आओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ आज से अपने अपने अस्त्र संभालो और उसी का अभ्यास करो। युद्ध में किस शस्त्र का कैसा उपयोग करना है ये नीति हम अभी तय करेंगे। तो शुरू हो जाओ। काशी, तुम तो लाठी में पारंगत हो, सुंदर तू कटार रख। कमला, तू तीर कमान रखना। मुंदर बल्लम का कमाल करेगी। और झलकारी, तू तो बंदूक रख जिसमें तेरा निशाना अचूक है। जरूरत पड़ने पर तुझे तोप भी चलानी पड़ेगी।
5: जी भाई।
4: तुम सब मेरी ही नहीं पूरी झांसी की हिम्मत हो। हमें जल्दी ही युद्ध भूमि में उतरना है।
5: झांसी का मान सर आंखों

0: 57 को मेरठ छावनी से शुरू ही क्रांति की चिंगारी झांसी तक आ पहुंची। 6 जून को झांसी में क्रांति का बिगुल बज उठा। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया। घमासान युद्ध से हालात बिगड़ते जा रहे थे। अंत में आपात बैठक बुलाई गई।
1: शत्रु का दबाव हम पर बढ़ता ही जा रहा है, स्थिति नाजुक लगती है।
2: जी भाई साहब, हमारे सैनिकों की संख्या कम होती जा रही है।
3: भाई साहब की जय। एक महिला सैनिक आपसे मिलना चाहती है।
1: अंदर भेजो।
4: जोहार भाई साहब, एक विनती थी आपसे।
1: कहो झलकारी।
4: भाई साहब, एक तो हमारे सैनिक बहुत कम हो गए हैं, दूसरी ओर हमारे तोपचियों में कुछ गद्दार हैं, जो अंग्रेज सैनिकों पर निशाना ही नहीं साधते, जिससे वो अंग्रेज बचकर निकल जाते हैं।
1: हम जानते हैं, पर तुम क्या कहना चाहती हो झलकारी?
4: भाई साहब, इस आक्रमण की घड़ी में किले की दीवार कभी भी टूट सकती है, फिर तो आमने सामने युद्ध होगा।
1: हमें तो हर हाल में तैयार रहना है।
4: पर ऐसे में तो आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है भाई साहब।
1: वो कैसे?
4: छलावे से।
1: छल से?
4: जी भाई साहब, हमारी और आपकी कदकाठी एक सी जो है, सो हम आपके भेस में अंग्रेजों को दूर ले जाएंगे अपने पीछे, और इधर आप पीछे के रास्ते सुरक्षित निकल जाइएगा।
1: पर इसमें तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है झलकारी।
4: हमसे कहीं ज्यादा आपकी जान जरूरी है झांसी के लिए। आप फिर से सेना को संगठित करके लड़ तो पाएंगे अंग्रेजों से। बस अब आज्ञा दे भाई साहब।
1: तुम्हारी ये हिम्मत और बहादुरी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे झलकारी।

0: योजना के अनुसार रानी घुड़साल वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। इधर झलकारी ने रानी की तरह श्रृंगार किया और लड़ते लड़ते छावनी जा पहुंचा।
1: कौन हो तुम?
2: रानी।
1: कौन रानी?
2: रानी लक्ष्मीबाई।
1: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई?
2: हमें तुम्हारे जनरल से मिलना है।
3: जनरल? जनरल ह्यूरोज और स्टुअर्ट यहीं आ रहे हैं।
4: Who are you? कौन है तुम?
2: रानी लक्ष्मीबाई।
4: ओह, तो तुम रानी है? Oh, I must say, very beautiful.
1: लक्ष्मी बाई पकड़ी गई, झांसी की रानी पकड़ी गई, झांसी की रानी पकड़ी गई।
3: राम राम सरकार, मैं दुल्हाजू।
4: देखो दुल्हाजू, तुम्हारा रानी।
3: अरे अरे नहीं नहीं सरकार, ये तो झलकारी है, झलकारी कोरिन।
4: What?
3: जी, अरे सरकार, ये तो महिला सैनिक है, तोपची पूरन की पत्नी। उनवाओ फाटक पर आपके कई सारे सिपाहियों को इसी ने मौत के घाट उतारा था।
2: अरे पापी, तुझे लाज नहीं आई दुल्हाजू? पहले तो ओरछा फाटक से गोरों को घुसा दिया, तब मन नहीं भरा तेरा गद्दार, फिर भी दोगलापन कर रहा है नमक हराम। तू मरेगा, तू मरेगा, और पूरी झांसी थूकेगी तुझ पर।
4: तुमने हमको धोखा दिया झलकारे।
2: धोखा? अरे तूने तो हमारे पूरे देश को धोखा दिया है।
4: तुमको हम गोली से उड़ाएगा।
2: हम मरने से नहीं डरते, दाग गोली, दाग।
5: सर, प्लीज मैम।
4: नो नो नो स्टुअर्ट, दिस इज सीरियस। 1% लेडीज भारत का ऐसा हो गया तो हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। सिपाही बंद कर दो इसे जंबो में।
3: राम राम राम, कैद कर लिया झलकारी को दुष्टों ने।
0: अरे जिसके सर पर खून सवार, दिल में स्वाधीनता की चीतकार, ऐसी देवी झलकारी को कोई पहरा रोक सकता था भला?
3: फिर क्या हुआ?
0: अरे फिर क्या, रात को ही भाग निकली वो तंबू से और दूसरे ही दिन पति पूरन के साथ मोर्चा संभाल लिया।
4: देखो झलकारी, that lady is dead.
2: ये ले जनरल।
1: झलकारी, पूरन भैया गिर गए।
2: हे राम,
6: अब झांसी के नाम का सवाल है झलकारी, झांसी की रक्षा करना मेरी चिंता। जय भवानी।
2: मैं आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, आपकी तरह ही झांसी की रक्षा करूंगी। जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: अपने बगल में गिरकर दम तोड़ चुके पति के पास ही लड़ती रही झलकारी, दागती रही गोले, झांसी की शान के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ती रही और शत्रुओं के नाक में दम कर दिया।
3: फिर झलकारी का क्या हुआ काका?
0: अब ठीक ठीक तो पता नहीं भैया, कोई कहता है अंतिम सांस तक गांव में रही और कोई कहता है कि उसने अंतिम सांस वहीं मोर्चे पर लड़ते लड़ते ली।
3: वाह वाह वाह वाह, जय हो ऐसी देवी की।
0: अरे ऐसी न जाने कितनी झलकारी हुई जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया।
3: ठीक कहा काका, आपको बड़ा धन्यवाद जो इतनी अच्छी बातें बताई। अब जब फिर आए तो किसी और के बारे में सुनेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं हम काका।
0: हाँ जरूर जरूर, अब मैं भी लगता हूँ काम में।
3: अरे चल रही झलकारी, जो तेरी भाग दौड़ खत्म हो गई हो तो चल चल चल चल। राम राम काका।
0: हाँ राम राम बेटा, राम राम।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: रंगमंच यानी वो जगह जहां अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं। लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बंबई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर, एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी माता एक बेहद सरल और ममतामयी महिला थीं। इस तरह हबीब के भीतर पेशावर की पठानी छवि और छत्तीसगढ़ की तरलता का एक अनूठा संगम बचपन से ही आकार ले रहा था।
1: बचपन में हबीब का नाम हबीब अहमद खान था। रायपुर की सेंट पॉल्स स्कूल के आसपास की गलियों में जब वो घूमते तो उनका ध्यान किताबों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले तमाशों, रामलीला, नाचा की मंडलियों और सूफी संतों की कव्वालियों पर रहता। वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा के कार्यक्रमों को देखा करते थे।
0: जी हाँ, और यही वो समय था जब उनके कान लोक धुनों को पकड़ रहे थे। उनके बड़े भाई को शायरी का शौक था जिससे प्रभावित होकर हबीब ने भी बहुत कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वे अपनी लिखी गजलें और नज्में दोस्तों को सुनाते तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया तनवीर। तनवीर यानी रोशनी या आभा। किसे पता था कि रायपुर की गलियों में अपनी कविताओं से रोशनी बिखेरने वाला ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया के रंग मंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
1: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनके मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया, लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
0: और वो बड़ा कैनवास था। बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
0: 22 साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
1: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
0: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
1: बलराज साहनी, जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें ये सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
0: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
1: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे, लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला जिसका कोई पारंपरिक नायक या नायिका नहीं थी। इस नाटक का नायक था खुद आगरा का बाजार।
0: और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? हबीब साहब ने इस नाटक के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंजे हुए कलाकारों को नहीं लिया। वे सीधे दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में गए। वहां से उन्होंने ककड़ी बेचने वाले, पतंगबाज, कबाड़ का कारोबार करने वाले और यहां तक कि असली भीख मांगने वाले फकीरों को पकड़ा और उन्हें मंच पर ला खड़ा किया।
1: समीक्षकों ने कहा कि ये पागलपन है, ये अनपढ़ लोग मंच पर क्या अभिनय करेंगे। लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था, मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी। पतंगे उड़ रही थी और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा, तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
0: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातों रात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए, लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
1: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
0: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहां बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल ब्रेख्त के काम को बहुत करीब से देखा। ब्रेख्त का एपिक थिएटर और उनका एलिमिनेशन इफेक्ट यानी दर्शकों को नाटक में पूरी तरह डुबोने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने हबीब साहब को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: लेकिन दिलचस्प बात देखिए श्रोताओं, यूरोप की इन विश्व प्रसिद्ध एकेडमियों में 3 साल बिताने के बाद भी हबीब साहब जब भारत लौटे तो शेक्सपियर या ब्रेख्त के नाटकों की अंधी नकल लेकर वापस नहीं आए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, लंदन और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा, जहां असली कला अब भी जिंदा है।
0: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
1: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
0: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
0: इन हीरो में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब वे मंच पर आती थीं तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
1: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे, वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे, अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
0: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था, उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
1: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
0: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वे अपने गुरु को चार अजीबोगरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
1: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल पहुंचे। वहां यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
0: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरण दास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
1: श्रोताओ, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे, वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
0: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा, बल्कि वह विभाजन के दर्द से कराहते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की, जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं, माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलिशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
1: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
0: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ, दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
1: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
0: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
1: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसके कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
0: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
1: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
0: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहां रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
1: और आप जानते हैं श्रोताओं, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 24 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहां की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहां की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
0: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए
1: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालीदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
0: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
1: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था, अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
0: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है, कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
1: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों की तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
0: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
1: मैं थी आपके साथ स्वाति।
0: अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद कहते थे, नया भारत गढ़ो, पर कैसे? अनगिनत जनता की भूख मिटाकर उन्हें शिक्षित कर नया भारत गढ़ना आसान काम नहीं। हमारा राष्ट्र गरीब है, सबकी भूख मिटाने के लिए हमें धन चाहिए, पर क्या रोटी के टुकड़ों से हमारी समस्या हल हो सकेगी? इतने वैभवशाली अमेरिका और दूसरे उन्नत राष्ट्रों के लोगों को क्या मन की शांति और सुख मिला है? उन लोगों में कितने ही लोग आज धन होने के बावजूद घोर निराशा के शिकार बने हुए हैं। जीवन में कुछ भी अर्जन करने योग्य दिखाई न देने पर वे उद्देश्यहीन भटक रहे हैं।
1: स्वामी जी ने ये सब देखा था, महसूस किया था। वे कहते थे, हमें फौजी सामर्थ्य चाहिए, पर अपनी सुरक्षा के लिए, न कि पड़ोसियों को लूटने के लिए। उसी प्रकार हमें धन चाहिए, हमारे गरीबों का पेट भरने के लिए। सिर्फ अपने लिए धन कमाना हमारा राष्ट्रीय आदर्श नहीं है।
0: और सर्वोपरि हमें चाहिए शांति। भला वो कौन सी वस्तु है जो हमें शक्ति और समृद्धि के साथ शांति भी दे सकेगी? शायद विवेकानंद साहित्य में हमें उस रास्ते की चाबी मिले। समाज के बारे में स्वामी जी का विचार था।
2: पहले लोग ये भी कहते थे कि अगर साधारण जनता में शिक्षा का प्रसार होगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा, विशेषकर भारत में। हमें समस्त देश में ऐसे पुराने सठियाए बूढ़े मिलते हैं जो सब कुछ साधारण जनता से गुप्त रखना चाहते हैं। इसी कल्पना में वे अपना बड़ा समाधान कर लेते हैं कि वे सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं, अथवा स्वार्थ से अंधे होकर मुट्ठी भर अमीरों के विलास के लिए लाखों स्त्री पुरुष अज्ञानता के अंधकार और अभाव के नरक में पड़े रहे, क्योंकि उन्हें धन मिलने पर या उनकी विद्या सीखने पर समाज डावाडोल हो जाएगा? समाज है कौन, वे लोग जिनकी संख्या लाखों है, या आप और मुझ जैसे 10-5 उच्च श्रेणी वाले, जिस जाति की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है वो जाति उतनी ही उन्नत है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हमारे समाज सुधारकों को तो घाव के स्थान का भी ज्ञान नहीं है।
1: स्वामी जी ने बार बार एक ही चीज की जरूरत को महसूस किया था, और वो है शिक्षा।
2: केवल शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहां के गरीबों के भी अमन चैन और शिक्षा को देखकर अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। ये अंतर क्यों हुआ? उत्तर में पाया, शिक्षा से। अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग ये भाव खो बैठे हैं, उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी। बस फिर वे अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है, शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही हो जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करके बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। भारत में बस यही करना है।
0: जनता को शिक्षित करना आसान काम नहीं, पाठशाला भर खोल देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा को रुचिकर बनाना होगा, जरूरत पड़ने पर हमें उनके पास पहुंचना होगा।
2: मेरी योजना है भारत के इस जनता समूह तक पहुंचने की। हमें अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित की हुई योजना के अनुसार चलना होगा, अर्थात सब आदर्शों को धीरे धीरे जनता में पहुंचाना होगा। उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाइए, अपने बराबर उठाइए, उन्हें लौकिक ज्ञान भी धर्म के द्वारा दीजिए। मान लो इन तमाम गरीबों के लिए तुमने पाठशालाएं खोल भी दी, तो भी उनको शिक्षित करना संभव ना होगा। कैसे होगा? 4 बरस का बालक तुम्हारी पाठशाला में जाने के अपेक्षा अपने हल बखर की ओर जाना अधिक पसंद करेगा। वो तुम्हारी पाठशाला ना जा सकेगा, पर यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद पहाड़ के पास पहुंच सकता है। मैं कहता हूं कि शिक्षा स्वयं दरवाजे दरवाजे क्यों ना जाए। यदि खेतीहर का लड़का शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो उसके हल के पास या कारखाने में अथवा जहां भी हो वहीं क्यों ना भेंट की जाए। जाओ उसी के साथ, उसकी परछाई के समान। गरीबों को शिक्षा प्रायः मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का भी समय नहीं आया है। तुम लोग कुछ धन इकट्ठा कर एक कोष बनाने का प्रयत्न करो। शहर में जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं वहां एक मिट्टी का घर और एक हॉल बनाओ। कुछ मैजिक लैंटर्न, थोड़े से नक्शे, ग्लोब और रासायनिक पदार्थ इकट्ठा करो। हर रोज शाम को वहां गरीबों को, यहां तक के निम्न समुदाय को भी एकत्र करो। पहले उनको धर्म के उपदेश दो, फिर मैजिक लैंटर्न और दूसरे पदार्थों के सहारे ज्योतिष, भूगोल आदि बोलचाल की भाषा में सिखाओ।
1: स्वामी जी किताबी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, वे चाहते थे बुनियादी शिक्षा। इसी शिक्षा पर बाद में गांधी जी ने भी जोर दिया था।
2: तुम लोगों का अब काम है प्रांत प्रांत में, गांव गांव में जाकर देश के लोगों को समझा देना क्या आलस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा विहीन, धर्म विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो, भाई सब उठो जागो, और कितने दिन सोगे। और शास्त्र के महान सत्यों को सरल करके उन्हें जाकर समझा दो। सभी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। निम्न समुदाय तक को इस अग्नि मंत्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ जीवन के अत्यावश्यक विषयों का उपदेश दो। ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वो भी कोई शिक्षा है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।

0: हमारी 50% नारियों के शिक्षित हुए बिना वो कैसे संभव हो पाएगा?
1: इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित्त सत्ता सर्वभूत में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया बोलो तो? स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियां बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वो देश, वो जाति न कभी बड़ी बन सकी और ना कभी बड़ी बन ही सकेगी। महामाया की साक्षात मूर्ति, इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है? उनकी समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, पर उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुमसे बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। त्रिजाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? क्या तुम भगवान हो? दूर हो।
2: स्त्रियों को शिक्षित करना होगा, चरित्र गठन और नीति शिक्षा देनी होगी, तभी उनकी संतानें भी शिक्षित और चरित्रवान होंगी, स्वामी जी ने कहा है।
1: अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं होंगी, धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी, यही एकमात्र पथ है। हमारी नारियों को आधुनिक भावों में रंगने जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो वे सब असफल होंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। हिंदू स्त्री के लिए सतीत्व का अर्थ समझना सरल ही है, क्योंकि ये उसकी विरासत है, परंपरागत संपत्ति है। इसलिए सर्वप्रथम ये ज्वलंत आदर्श भारतीय नारी के हृदय में सर्वोपरि रहे, जिससे वे इतनी दृढ़ चरित्र बन जाएं कि वे चाहे विवाहित हों या कुमारी, जीवन की हर अवस्था में अपने सतीत्व से तिल भर भी डिगने की अपेक्षा जीवन की निडर होकर आहुति दे दें। साथ साथ महिलाओं को विज्ञान एवं अन्य विषय, जिससे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाएं। देश की स्त्रियों का जीवन इस प्रकार गठित हो जाने पर ही तो तुम्हारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा।

0: अशिक्षितों को मौका देना होगा। सदियों से उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, तभी स्वामी जी लिखते हैं,
1: स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी संतानों द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। कुछ विनाश न करो, मूर्ति भंजनकारी सुधारक लोग संसार का उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन उसका गठन करो, यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और देखो मामला कहां तक जाता है। यदि सहायता ना कर सको तो अनिष्ट मत करो, जो जहां पर है उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। तुम क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं, नहीं तुम नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा लाभ करता है, तुम्हारा कर्तव्य है सुयोग देना और बाधा दूर करना।
2: सभी को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र विचार विकसित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
1: जीवन में मेरी सर्वोच्च अभिलाषा यही है कि एक ऐसा चक्र प्रवर्तन कर दूं जो उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को सबके द्वार द्वार पहुंचा दे और फिर स्त्री पुरुष अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर ले। विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन उन्नति और कुशल क्षेम का एकमेव साधन है। जहां यह स्वतंत्रता नहीं है वहां मनुष्य उस जाति या राष्ट्र की अवनति निश्चय होगी। जैसे मनुष्य को सोचने, विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान पान, पोशाक पहनावा, विवाह शादी, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, जब तक कि वो दूसरों को हानि न पहुंचाए।
0: भारतीयों को सबल बनना होगा, बल केवल दैहिक नहीं मानसिक दृढ़ता भी चाहिए।
1: मैं तुमसे कहता हूं इसी समय हमको बल और वीर्य की आवश्यकता है। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ ना हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि ये कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना, और ये विश्वास करना कि मैं आत्मा हूं। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से लोगों को मनुष्य की हीन अवस्था का ही ज्ञान कराया गया है, अब उनको आत्म तत्व सुनने दो, ये जान लेने दो कि उनमें से नीचे के नीचे भी आत्मा विद्यमान है, वो आत्मा जो न कभी मरती है न जन्म लेती है।
0: स्वामी जी ने वेदांत को अच्छी तरह समझा था, वे उसे जन जन में व्याप्त कर देना चाहते थे, वेदांत किसी एक वर्ग में सीमित ना रहे।
1: जहां भी बुराई दिखाई देती है वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में

0: मसीहा थे। दलितों की जरूरतों को वे सबसे ज्यादा महत्व देते थे।
1: यदि स्वभाव में समता ना भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात दलितों के लिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो एक दलित के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण है कि जिसकी बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता प्रकृति के द्वारा नहीं हुई है उसके लिए अधिक सहायता करनी होगी। इन लोगों को उठाना होगा, इन्हें अभयवाणी सुनानी होगी, बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे समान सब में अधिकार है।
2: दलितों को सुविधा देने का मतलब उच्च वर्ण को दबाना नहीं। स्वामी जी ने इससे वर्ण संघर्ष की आशंका जताई थी।
1: उच्च वर्णों को नीचे उतार कर इस समस्या की मीमांसा ना होगी, किंतु नीची जातियों को ऊंची जातियों के बराबर उठाना होगा। उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दूसरा छोर निम्न समुदाय, और संपूर्ण कार्य निम्न समुदाय को उठाकर ब्राह्मण बनाना है। जातियों में समता लाने के लिए एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्णों का बल और गौरव है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि गरीब किसान मजदूर और धनवानों के बीच परस्पर कहीं जाति विरोध का बीज ना पड़ जाए।
0: किसी को भी अधिक सुविधा ना मिले, यही सही मायने में साम्यवाद होगा जिसमें स्वामी जी का विश्वास था।
1: विशेष अधिकार का भाव मानव जीवन का विष है। जब कभी विशेष अधिकार तोड़ दिया जाता है तब जाति को अधिकाधिक प्रकाश तथा प्रगति उपलब्ध होती है। किसी को रंच मात्र विशेषाधिकार नहीं है। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग स्वभावता सक्षम होने के कारण दूसरों की अपेक्षा अधिक धन संग्रह कर लें, किंतु धन प्राप्त करने के सामर्थ्य के कारण वे उन लोगों पर अत्याचार और अंधाधुंध व्यवहार करें जो उतना अधिक धन संग्रह करने में समर्थ न हो, तो यह कानून का अंग नहीं है और संघर्ष इसके विरुद्ध हुआ है। अन्य के ऊपर सुविधा के उपभोग को विशेषाधिकार कहते हैं और इसका विनाश करना युग युग से नैतिकता का उद्देश्य रहा है। ये कार्य ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति साम्य और एकत्व की ओर है तथा जिससे विविधता का विनाश नहीं होता। इस प्रकार अपने विशेषाधिकारों तथा अपने भीतर की उस प्रत्येक वस्तु को जो विशेषाधिकार के लाभ में सहायक है रौंदते हुए हम उस ज्ञान के लिए प्रयास करें। इससे समस्त मनुष्य जाति के प्रति अनन्यता की भावना पैदा हो।
2: उच्च वर्ग के लोग अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते, ये पतन की राह है। ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है।
1: भारत के पतन और दारिद्र्य दुख का प्रधान कारण यह है कि घोंघे की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्यतर दूसरी मानव जातियों के लिए जिन्हें सत्य की तृष्णा थी अपने रत्नों का भंडार नहीं खोला था। लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परम आवश्यक है कि वो अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे और इसके बदले में वे जो कुछ दे सकें उसे सहर्ष ग्रहण करें। विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु।
0: संसार की समस्त जातियां लेन देन के सिद्धांत मानकर आगे बढ़ी है। एकांत और अकेले जीने की प्रवृत्ति खतरनाक है। स्वामी जी मेल मिलाप लेन देन की बात करते हैं।
1: आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। क्या समता स्वतंत्रता कार्य कौशल पौरुष में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या उसी के साथ धर्म विश्वास संस्कृति और स्वाभाविक वृत्ति में हिंदुओं की परम मर्यादा पर जमे रह सकते हो? आपके लिए यह नितांत आवश्यक है कि अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करने और अक्सर निरर्थक बातें बनाने के स्थान पर आप अंग्रेजों से नेताओं की आज्ञा का तुरंत पालन

0: बताया है,
1: प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। पहला, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरा, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। और तीसरा, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हों या कर रहे हों उनकी सहायता करना। सर्वप्रथम तो हमें उस चिन्ह ईर्ष्या रूपी कलंक को धो डालना चाहिए। किसी से ईर्ष्या मत करो। भलाई के काम करने वाले प्रत्येक को अपने हाथ का सहारा दो। तीनों लोकों को जीवन मात्र के लिए शुभ कामना करो। विशाल बनना, उदार बनना, क्रमशः सार्वभौम में उपनीत होना, यही हमारा लक्ष्य है। अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल प्रेम, निश्चलता और धैर्य की। इस समय चाहिए प्रबल कर्म योग, हृदय में अमित साहस, अपरिमित शक्ति।
2: अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी होंगी। घर को हवा और रोशनी चाहिए। आंखें खोलकर अपने आसपास के जरूरतमंदों को निहारना होगा।
1: यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें अब पहले अपनी कोठरी का दरवाजा खुला रखना होगा। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास अभावग्रस्त लोग रहते हैं। तुम्हें उनकी यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित है उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो और शरीर के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तुमने तो इतना पढ़ा है, अतः जो ज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के संदेश, सेवा के संदेश, सामाजिक उत्थान के संदेश और समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर नीचे डूबते जा रहे हैं।
0: अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर हमें देखना चाहिए कि अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क आदि राजाओं के काल में शक्ति, सामर्थ्य, समृद्धि तथा सुख सभी बातों में भारत कितना उन्नत था। यह स्पष्ट है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में हमारे सम्मुख जो महान आदर्श थे वही हमारे अतीत के गौरव के कारण थे।
2: आज हमारी अवनति कैसे हुई है? हमारा पतन क्यों हुआ? इसका कारण हमें ढूंढ निकालना चाहिए। इसलिए भावी भारत का गठन करते समय जिन आदर्शों ने हमें उन्नत एवं महान बनाया उनको स्वीकार करना चाहिए और जिन बातों के कारण हमारी अवनति हुई उनका त्याग करना चाहिए। विवेकानंद ने अपने साहित्य में हमें इन्हीं बातों की सीख दी है और ये भी कहा है कि हमें कुछ ऐसे नए विषयों को भी ग्रहण करना चाहिए जो उस युग में उपलब्ध नहीं थे, मसलन विज्ञान और टेक्नोलॉजी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ग्रीन हाउस का ब्राह्मण राजदूत हनुमंत राव और बर्क की अनोखी मित्रता। 1781 की गर्मियों में लंदन के सबसे असामान्य कूटनीतिक आवासों में से एक कोई महल नहीं बल्कि बीकन्स फील्ड का एक ग्रीन हाउस यानी पौधा घर था। यहाँ के अतिथि थे हनुमंत राव, जो एक उच्च जातीय ब्राह्मण राजदूत थे। उन्हें पदच्युत मराठा पेशवा द्वारा भ्रष्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ न्याय मांगने के लिए भेजा गया था। उनके मेजबान दिग्गज और मशहूर विचारक एडमंड बर्क थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दुर्लभ सांस्कृतिक सम्मान का परिचय देते हुए अपने ग्रीन हाउस को ब्राह्मणों के कठोर अनुष्ठान के लिए एक अभयारण्य में बदल दिया। हनुमंत राव का दैनिक जीवन एक विदेशी भूमि पर अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे फर्श पर अपना भोजन स्वयं बनाने पर जोर देते थे और कमर से ऊपर लगभग निर्वस्त्र रहते थे, भले ही अंग्रेजी ठंडी हवाएं कांच के शीशों को झकझोर रही हों। उनके प्रवास का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका अटूट अनुशासन था। यदि भोजन करते समय कोई गैर ब्राह्मण उन पर केवल एक नजर भी डाल देता तो वे आध्यात्मिक अपवित्रता से बचने के लिए तुरंत पूरे भोजन का त्याग कर देते थे। इन बाधाओं के बावजूद राजदूत और अंग्रेजी कुलीन वर्ग के बीच आत्मीय बंधन बन गया। हनुमंत राव बर्क और चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के काफी करीब आ गए थे। उन्होंने एक दुभाषी के माध्यम से उन्हें बताया कि उनकी उपस्थिति उन्हें वैसे ही सहारा देती है जैसे एक गेंडा अपने बच्चों को केवल निहार कर उनका पोषण करता है। हालांकि वे देखने में एक विदेशी एकांतवासी लगते थे, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंट थे। उनके द्वारा दी गई जानकारियों ने ब्रिटिश संसद को हिंदू कानूनों पर सबसे प्रामाणिक विवरण प्रदान किया, जिसने अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स के ऐतिहासिक महाभियोग की नींव रखी। हनुमंत राव के प्रवास ने यह सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय काला पानी पार करने के बाद भी अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति एक अडिग चट्टान की तरह बना रह सकता है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम। दोपहर की सभा में भी आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ, कार्यक्रम का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सरोद वादन, जिसे प्रस्तुत करेंगी रुचा बेड़ेकर, और उसके बाद गायन की प्रस्तुति होगी जिसे पेश करेंगे सारंग फगरे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं रुचा बेड़ेकर का सरोद वादन।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सारंग फगरे का गायन। अब दीजिए कार्यक्रम भारत भारती से इजाजत, अपने दोस्त दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए?
3: ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे।
2: अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
4: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं?
2: ओफ, क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
4: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
5: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
4: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
4: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
4: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
4: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, और कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांधकर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
4: नहीं, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
4: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
6: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
4: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
6: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
4: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
6: भाई साहब, नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो है ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
4: अच्छा बनाती हूँ अभी।
6: हाँ हाँ तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
4: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता। देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी। तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे तूने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
6: मालूम है भाई साहब। रो मत रो नको। मालूम है मेरे को सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना आता है ना तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
4: मैं क्या करूँ सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना मैं ही जाती हूँ।
6: रो
4: हो गई ना तेरी चाय। अब जा बाकी काम कर।
6: हाँ,
4: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
6: करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अटपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल, तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी। तो
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: सच लाओ,
2: जल्दी जाओ। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्य कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये, देखो अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा,
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़े मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भवा। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है।
1: हाँ।
0: चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले ही लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।

0: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर
1: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
0: संभाल के,
1: अब जलाओ।
0: जल गया, जल जल जल गया। आ, आ, आ, आ, आ, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
1: अरे क्या पागल हो यो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
0: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम, एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी 2-4 दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है, पर सुबह क्या होगा यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की 2 फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
1: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
0: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
1: ओ, यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
0: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
1: तो
0: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से 1-2 क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
1: 1 क्विंटल रद्दी कागज?
0: हाँ,
1: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
0: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
1: क्या?
0: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए, तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
1: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते, उसे पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
0: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
1: कैसे बैलेंस करना है?
0: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
1: जी?
0: साल भर
1: है?
0: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है, आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
1: पर काम कैसे चलेगा? 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
0: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
1: जी।
0: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
1: वाह वाह,
0: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
1: बहुत खूब,
0: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
1: क्या बात है।
2: अब घर में सातवां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए, पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
0: ये क्या है जी आपके हाथ में?
1: बूझो तो जानू।
0: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है।
1: हा?
0: अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
1: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
0: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
1: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
0: क्या
1: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
0: और इस नए चूल्हे में
1: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
0: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
1: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
0: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
1: नहीं आ रहा ना?
0: नहीं
1: आएगा भी नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
0: अरे
1: मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
0: यही है ना बुकलेट?
1: यही है। क्या लिखा है बोलो?
0: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
1: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
0: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
1: जी।
0: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
1: जी।
0: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
1: जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
1: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
0: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
1: जी जी
0: सिंपल। ओके एक और
1: हाँ, पड़ो, पड़ो।
0: दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
1: मुझे दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
0: अच्छा अच्छा चलो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
1: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
0: अच्छा।
1: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
0: अच्छा।
1: समझी?
0: हाँ। है?
1: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
0: हाँ,
1: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
0: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
1: हाँ।
0: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
1: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
0: हाँ, जरूर, जरूर।
1: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
0: हाँ।
1: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
0: नहीं नहीं
1: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए।
0: नहीं नहीं,
1: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे, पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
0: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन और संगीत दोनों ही फन के महारथी हैं। उन्हें संगीत की दुनिया का लिविंग लेजेंड कहा जाता है। तबले पर अपनी उंगलियों और हाथ की थाप से जादू पैदा करने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन अब आपसे खुद मुखातिब हैं।

आप सबको हम सबका नमस्कार, और थोड़ी सी तालियां बाद के लिए भी बजा के रखिए ना, कुछ गलत उलट बजा दिया तो ताली बजा देना। आप सब यहाँ हैं, मन को ज़रा अच्छा लगा के, लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर आपके सामने ताल और सुर की चर्चा होगी, और मेरे साथ मंच पर बैठे हुए हैं, पहले तो ये कह दूं, तो भोपाल में एक सारंगी मेला होता है, तो सारंगी यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध साज है, और यहाँ बड़े गुणीजन सारंगी के रहे हैं, जैसे उस्ताद लतीफ़ खान साहब इत्यादि। तो लेकिन भोपाल के अलावा हिंदुस्तान में कुछ जगह को छोड़ के सारंगी कम बजती है, और ये एक बड़े मतलब ढारस बनाने वाली बात है कि युवक कलाकार सारंगी लेकर उसका रियाज करके आपके सामने इस सास को जीवित रखने की चेष्टा में लगे हुए हैं। इनके चचा, जिनके साथ मुझे 30 साल तक संगत करने का आशीर्वाद मिला है, जिनका नाम उस्ताद सुल्तान खान साहब रहा है, तो उनके ये भतीजे हैं, और मेरे ख़्याल से आज हिंदुस्तान में जो चंद बहुत ही जैसे फिल्मों में कहते हैं ना धुरंधर बजाने वाले हैं, उनमें से एक हमारे दिलशाद भाई हैं। इन्होंने मुझे कुछ दिया था कि मेरी भी तारीफ करते ना, तो कर डाली। सॉरी, हाँ, मेरी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानिए। तो थोड़ी देर बजाएंगे, लय ये सेट करेंगे, उसके बाद जो भी शुरू होगा। खान साहब ने राग सरस्वती चुना है, तो तीन ताल, मैं कंफर्म कर रहा था राग का नहीं ताल का, कि मुझे क्या ताल बजाना है, तो तीन ताल 16 मात्रे का बजेगा। तो उसमें शुरुआत जो होती है पेशकार की, तीन ताल के शब्दों को लेके उस पर बढ़ंत करना है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कुछ देर चलेगी, ये बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या करना है। वैसे

नृत्य किया और शिव जी को शांत किया। ये एक इतिहास है। तो कहते हैं कि शिव जी के तांडव का जो शब्द है ता, और गौरी के नृत्य लास्य नृत्य का जो शब्द है ला, उससे उनको मिल के बनता है शब्द ताल। तो गुणीजनों का जो आशीर्वाद है, तो हम जब पेशकार शुरू करते हैं तो उनको अपनी निगाहों में रख के उनको प्रणाम करते हैं। ये एक तरीके से एक पूजा का समय होता है हमारे लिए। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि अपने अपने गुरुजन को याद करिए, जब ये चल रहा है उनको नमन करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि विद्या देने वाले की बिना ये सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो शुरू पेशकार से होगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो लेकिन राग और ताल दोनों की साथ में चर्चा होगी, तो थोड़ी बहुत दिलशाद भाई भी राग की चर्चा करेंगे। तो राग सरस्वती और ताल तीन ताल 16 मात्रे का, और साथ साथ में ये जो बज रहा है ये कौन से ताल में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोगों का तालमेल साथ ही रहे।

इसी कायदे को मेरठ में उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब ने उल्टा किया, तेरे किट को किट तक कर दिया। सो तेरे किट, किट यहाँ लगता है, तेरे किट, सो तेरे की जगह किट से शुरू।

शिवजी के डमरू से, उनके डमरू से जो शब्द निकले उसको गणेश जी ने लेके पखावज की जबान पैदा की। तो मेरे दिल में एक एक बात आई कि ऐसे कैलाश पर्वत कर शिवजी मस्त मगन डमरू बजा रहे हैं और शिष्यगण शंख बजा रहे हैं, तो वो क्या वातावरण, क्या वाणी होगी। तो उसका एक मतलब हम लोग तो इस लायक नहीं है कि उसके बारे में सोच भी सकें, लेकिन एक जरा सा पूजा के रूप में

तो तकते रिकेटे जब बजती है तो हाथ से बजती है, इसमें जो तक है ये बीच की उंगली से लगती है सिर्फ, लेकिन उसका वजन उतना ही होना चाहिए जैसे पूरे हाथ का होता है।

फरमाइशी चक्करदार बेदम। धिन धिन धड़े धड़े गये धड़े गये धन कर्दत धन अगदन त्रिकट कदा ने कत्था नगदत्ते कत्था कत्था धड़े कत्था कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन धिन धड़े गये धन कर्दत धन अगदन त्रिकट कदा ने कत्था था ते कत्था कत्था धड़े कत्था कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था धन अगदन कत्था

सरदार हैं, इनको लाहौरी गद भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि दिल्ली के एक गुरुजन के की लड़की की शादी नहीं के लड़के की शादी पंजाब के एक गुरुजन की लड़की से हुई। तो जब शादी हुई तो संगीत जो की सेवा जो करते हैं उनके पास पैसा वैसा तो कुछ होता नहीं है उस ज़माने में, राशन वगैरह सब नवाबों महाराजों के यहाँ से आता था, तो बाकी जो भी है। तो शादी में दूल्हा मियाँ को क्या दें, लेकिन क्योंकि दोनों घर संगीत के थे होते थे तो गुरुजन ने अपने सन इन लॉ को दामाद को 500 बंदिशें या गतें दी। तो वो लाहौर से वो दामाद अपनी नई बीवी को लेके घर आए, तो तब से जब उसकी चर्चा हिंदुस्तान में हुई, अभी भी बनारस में बजती हैं, लखनऊ में बजती हैं, जगह फर्रुखाबाद में बजती हैं, तो उनको लाहौरी गत कह के बजाया जाता है। तो ये उस लाहौरी गतों में से, ये 350 साल पुरानी बात है।

तो मैंने पढ़ दी, आपने सुन ली, बोल हैं अच्छे हैं, खुशनुमा हैं उनके कॉम्पोजिशन, लेकिन मैं अगर इसको एक आपको चित्र खींच के दूं तो फिर उसका अलग मायने पैदा हो जाता है। आप लोग सब आए, आप सबको निमंत्रण गया होगा या नहीं भी गया होगा, जिनको नहीं गया होगा वो लेट आके सामने बैठ गए। तो अगर मेरी तरफ से आपको निमंत्रण पहुंचा होता तो वो तबले की जबान में क्या होता? तो आइए बैठिए, थोड़ा रेस्ट करिए, कुछ समोसा खाइए, चाय पीजिए, मतलब रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद प्रोग्राम सुनिए और घर जाइए, इतनी सी बात है। तो छोटी सी बंदिश में ये सब बात आ रही है। धगित तकिट धा धिड़ेन नगिट तक नगित टिकिड़ान त्रिगिट दिखदा त्रिगिट दिखदा नगदेद दा। प्रोग्राम सुनिए, गिते का था गदी के ना, और फिर घर जाइए, धिड़गिट दिखदा धिड़गिट दिखदा

जंगल में हिरण घूम रहा है या घूम रही है, आजकल दोनों का वो देना पड़ता है, मेल फीमेल। तो खाना ढूंढ रही है, नहीं मिला, शिकारी को देखा, घबरा के दौड़ गए। तो जब हिरण दौड़ता है या दौड़ती है तो उनकी एक बड़ी खूबसूरत चाल होती है, गति होती है, जैसे आधा उड़ रहे हैं और आधा दौड़ रहे हैं ऐसे। तो उसको बोलों में भी दिखाना है और जब उसके मतलब निकास में भी हाथ से निकल रहा है उसमें भी वो अंदाज आना चाहिए। तो छोटी सी चीज़ है, बंदिश, इसको हिरण परण कहते हैं। तो हिरण घूम रहा है जंगल में या भोपाल में कहीं, न्यू मार्केट में वगैरह में कहीं, ढाबे भी सब बंद, तो कहाँ जाए। शिकारी तड़न करता।

जब बारिश है तो घने बादल भी होते हैं। अब वो तो मैं आपको साउंड में नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका फीलिंग क्या है वो देखिए।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन। सारंगी पर संगत कर रहे थे जनाब दिलशाद खान और तानपुरे पर धानी गुंदेचा। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन अपने तबले की गूंज से लोगों के दिलों को रोशन करते रहें, इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है, न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।
2: बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है।
3: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
4: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
3: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बन समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए।
4: और
3: क्या?
4: नहीं नहीं, कुछ और का हो ना मेरी तारीफ में।
3: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
4: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
3: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग में सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपनो लहू डाल दे।
4: सच, मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा। पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
3: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
4: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
3: हाँ?
4: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
3: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए। पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं, ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
4: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
3: क्या?
4: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीऊ पीऊ करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
3: अरे अरे, ऐसा जुल्म न करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
4: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है, कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
3: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रियाहट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
1: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रियाहट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उलाहने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
4: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
3: क्या?
4: उनका बीपी है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
3: अरे,
4: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
3: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था और अब यकायक ये।
4: अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
3: नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। और आप कहती हैं कि
4: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
3: कैसे?
4: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
3: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
4: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस वर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
3: SMS?
4: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
3: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
4: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
3: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी बनाया था यार, बादशाह सलामत थे वो, हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
4: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा, काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
3: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
4: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
3: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
4: जा तो मैं रही हूँ जी। हाँ। पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
3: अरे तो उतर पड़ो। इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
4: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
3: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो? मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
4: हाँ और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
3: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
5: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
4: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
3: अरे बेटा रिंकू, मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
4: बाय
5: बाय।
1: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ,

0: हेलो। अच्छा, अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्य भाग मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या, क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार न कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है। कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा ओके, बाय बाय बाय बाय।
1: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
0: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
1: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
2: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। यह आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपके रितु।
1: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे वह, इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
3: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
4: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
3: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
4: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
3: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
4: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है पर ये प्रेम पत्र।
3: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
4: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
3: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
4: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
3: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
4: नहीं नहीं,
3: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
5: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
3: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
4: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
3: अच्छा?
4: वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूं।
3: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
4: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
3: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
4: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
3: ठीक है एक काम कर।
4: हाँ
3: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
4: बता यार।
3: कुछ फिल्में देख डाल
4: है?
3: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
4: हाँ
3: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
4: हाँ
3: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
4: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूं तुझसे।
3: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
4: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
3: बाय बाय।
1: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
4: ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेडिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार, एक बार पढ़ तो लूं कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो, जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना ना नींद आती है ना चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है, जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है फीलिंग आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं।
3: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने, ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं है? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
4: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता। मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
3: अच्छा यार एक काम कर तू,
4: बोल।
3: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
4: हाँ।
3: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
4: आता हूं भाई आता हूं। कौन टपक पड़ा यार?
0: अरे तुम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी
2: क्या? ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
4: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
2: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
4: थैंक गॉड।
1: नीरज मन ही मन खुश था, नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी, खुशी खुशी दफ्तर गया। पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था, प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी, आंखों से प्रेम की धारा नहीं आंसुओं का सैलाब बह रहा था, मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
2: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने, तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
0: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
2: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
0: क्या?
2: अरे क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
0: क्या कह रही हो?
2: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
0: क्या कह रही हो?
2: सींग कटाकर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
0: पाप? ओहो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
2: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
0: अरे तुम
2: उसकी इबारत पढ़ो ना तुम, खाने में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है?
0: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तो।
2: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गैरत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
0: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार।

0: जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
1: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना, तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तुम ही बताओ, मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है?
0: अरे यार,
1: और आगे ये देखो, ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
0: अरे क्या
1: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
0: अरे यार,
1: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है, जिसे आंखें सेकने के लिए
0: तुमने। अरे यार, इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
1: ओहो, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे? पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
0: अरे जाने मन क्या।
1: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
0: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो तुम अशोक को बुला लो, अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। ऐसा
2: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
1: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं पर हरकत, जी जी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई, और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो।
2: ओहो, तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
1: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
2: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
1: नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है बेचारे, इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय

पार्षदों को उनकी अचानक बढ़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे, वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे, तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज की इस सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं।

श्रोताओं, आज शाम क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं, इसकी जानकारी से पहले एक आवश्यक चर्चा आपसे। अगर धरती की धड़कनों को सुनना हो तो किसी जंगल के एकांत में कुछ पल बिताइए, किसी पेड़ की छाया में बैठकर देखिए। वहां हवा केवल बहती नहीं, कितनी ही स्मृतियां साझा करती है। कि ऐसे ही किसी अरण्य में ऋषियों के मुख से ऋचाएं फूटी होंगी, वन के एकांत गीत में ही वेदों ने जन्म लिया होगा। कभी ऐसे ही अरण्य में श्री राम भटके थे अपनी सीता के लिए, कभी ऐसे ही वनों की नीरवता में ईश्वर को ढूंढते हुए बुद्ध ने स्वयं को पा लिया था। वृक्षों की पत्तियां झूमती हुई समय के गीत गुनगुनाती हैं और जंगल का सन्नाटा इन वृक्षों के प्रति कृतज्ञ होता हुआ कहता है कि तपस्वियों की तरह धरती पर घोर साधना में लिप्त जान पड़ते हैं ये वृक्ष, जिनका सब कुछ दूसरों के लिए है। निश्चित ही ये वृक्ष वाल्मीकि, दुर्वासा या बुद्ध के वंशज होंगे, तभी तो ये ऋषिपुत्र जब भी लिखते हैं वसंत ही लिखते हैं। श्रोताओं, दरअसल पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वो ऋतुओं के इतिहासकार हैं, पीढ़ियों के साक्षी हैं और आने वाले कल के सबसे विश्वसनीय प्रहरी भी हैं। पेड़ों से ही हमारा कल, आज और कल है। हमारे देश में इन्हीं पेड़ों के उत्सव का सप्ताह होता है वन महोत्सव, जो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती के लिए, हमारे आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार है एक पौधा, क्योंकि एक पौधा केवल आज को नहीं, आने वाले कल को भी हरा भरा करता है। तो श्रोताओं, वन महोत्सव मनाते हुए आप भी संकल्प लीजिए कि आप इस सप्ताह में वृक्षारोपण अवश्य करेंगे, क्योंकि वन महोत्सव भारत का एक राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान है, जिसे हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसे पेड़ों का त्यौहार भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु के आरंभ में पौधे लगाने के लिए चूंकि ये समय बहुत उपयुक्त होता है, इसलिए इसी अवधि में वन महोत्सव आयोजित किया जाता है। 1950 में इसका शुभारंभ हुआ था और हम सभी अब वन महोत्सव में शामिल होते हैं। वन महोत्सव का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना है। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, वनों की कटाई को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में योगदान देना, मिट्टी और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता और वन्य जीवों की रक्षा करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और स्वच्छ वातावरण तैयार करना, क्योंकि वन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वन हमारे जीवन का आधार हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को शुद्ध बनाते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखने में सहायता करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन अनेक वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। हमें वनों से कितना कुछ मिलता है, फल, लकड़ी, औषधियाँ, बहुत से प्राकृतिक संसाधन वन हमें उपलब्ध कराते हैं। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हमारी यही आपसे गुजारिश है कि वन महोत्सव मनाते हुए आप भी इस बरस वृक्षारोपण कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिन वृक्षों की आयु बहुत लंबी होती है, जो 100 साल, 200, 300, 400 साल जो वृक्ष जीते हैं, इस तरह के पौधे अगर आप लगाते हैं, जैसे नीम हो गया या पीपल, वटवृक्ष, इस तरह के आप वृक्ष अगर लगाते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा आपको भी और आने वाली पीढ़ी को भी। तो वृक्षारोपण करें। बहुत सुंदर खूबसूरत बारिश हो रही है, बारिश का ये सुंदर सा मौसम है, तो मौसम का ये आह्वान है कि आप पेड़ पौधे लगाएं और स्वयं ही न लगाएं, बल्कि अपने साथ अपने आसपास के कुछ लोगों को भी आप प्रेरित करें। और एक महत्वपूर्ण बात और कि आप सिर्फ वृक्षारोपण करके ही इस दायित्व से निवृत्त ना हो जाएं, बल्कि कोशिश कीजिए कि जैसे एक छोटे से बच्चे को परवरिश की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधे को भी परवरिश की आवश्यकता होती है। तो वृक्षारोपण के बाद उस पौधे की परवरिश भी कीजिए ताकि वो पौधा एक बड़ा वृक्ष बन सके। तो ये था आज का संदेश और अब एक संक्षिप्त सा परिचय।
आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, उसके बाद भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। वतन का राग कार्यक्रम शाम 6 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे यूसुफ मेहर अली की। आमने सामने कार्यक्रम में बघेलखंड लोक गायकी पर चर्चा सुनिएगा शाम 6:30 बजे। 7 बजे वागर्थ कार्यक्रम में सुनिएगा वर्तमान परिदृश्य और धर्मपाल, इस विषय पर डॉक्टर उर्मिला शिरीश के विचार। शाम 7:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे सुनिएगा कुछ देशभक्ति गीत। हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 8:30 बजे। इसमें आज हम बात करेंगे झलकारी बाई की कला कल्लोलिनी। ये कार्यक्रम रात 9 बजे आप सुनेंगे। इसमें आज चर्चा होगी हबीब तनवीर की। और रात 9:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: मात्वग्निर् ध्वनियुद्ध मदंधिर मोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जघ्रिहि इष्टम वीतमभिगूर्तम वशटकृतम तम देवासः प्रति गृभणन्त्यश्वम्। हे यज्ञ रूप अश्व, आपका निकलना, आंदोलित होना, पलटना, पीना, खाना आदि सारी क्रियाएं देवताओं में हों। यदश्वाय वास उपस्त्रणन्त्य धीवासम या हिरण्यान्यस्मै संदान मर्वन्तम् पड्बीषम प्रिया देवेश्वा यामयन्ति। यज्ञ को समर्पित पूजन योग्य अश्व को सजाने वाला ऊपर का वस्त्र, आभूषण, सिर तथा पैर बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हों। यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पार्ष्णया वा कषया वा तुतोद सृचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि। अति शीघ्रता में तुम्हें सताने वालों, निचले भाग को पीड़ित करने वालों द्वारा की गई सभी त्रुटियों को श्रुवा की आहुतियों से ठीक करते हैं। चतुस्री षद्वाजिनो देव बंधोर वंक्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत पुरुषपरून नुघुष्या विशस्त। हे ऋत्विजो, धारण करने की सामर्थ्य से युक्त गतिमान देवताओं के बंधु इस अश्व के 34 अंगों को अच्छी प्रकार प्राप्त करें। हर अंग को अपने प्रयासों द्वारा स्वस्थ बनाएं और उसकी कमियों को दूर करें। एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वायंतारा भवतस्थ ऋतुः याते गात्राणां मृतुथा कृणोमि ताता पिंडानां प्र जुहोम्यग्नौ। काल विभाजन के क्रम में त्वष्टा सूर्य रूपी अश्व का विभाजन संवत्सर करता है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन नाम से दो विभाग उसके नियंता होते हैं। यज्ञ में शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियां देते हैं। मात्वा तपत्प्रिय आत्मा पियंतम मा स्वधि तिस्तन्व आ तिष्ठिपत्ते माते ग्रिद्नु रविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्य सिना मिथु कह। हे अश्व, राष्ट्र अथवा यज्ञ, आपका परम प्रिय आत्मतत्व अर्थात अपना गौरव कभी भी पीड़ादायक स्थिति में छोड़कर न जाएं। राष्ट्र का गौरव अक्षुण्य रहे। शस्त्र विखंडित करने वाली शक्तियां आपके अंग अवयवों पर अपना अधिकार न जमा सकें। राष्ट्र कभी खंडित न हो। अकुशल व्यक्ति आपके दोषों के अतिरिक्त किसी उपयोगी अंग पर असी का प्रयोग न करे। न वा उ एतन म्रियसे न ऋष्यसि देवाम इदेशी पृथिभिः सुगेभिः हरि ते युञ्जा पृशति अभूता मुपास्थाद्वाजी धुरि रासभस्य। हे अश्व, यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा न तो आपका नाश होता है और न आप किसी को नष्ट करते हैं, वरन आप सुगम सहज मार्ग से देवताओं तक पहुंचते हैं। शब्द करने वाले मंत्रों के आधार पर ऐश्वर्यवान और अंतरिक्षीय गतिशील प्रवाह उपस्थित होकर आपके साथ संयुक्त होकर पुष्ट होते हैं। सुगव्यम नो वाजी स्वश्वव्यम पुंसः पुत्राम उत विश्वापुषम रईम अनागास्त्वम नो अदितिहि कृणोतु क्षत्रम नो अश्वो वनताम हविष्मान। देवत्व को प्राप्त करने वाला यह बलशाली यज्ञीय प्रयोग हमें पुत्र पौत्र धन धान्य तथा उत्तम अश्वों के रूप में अपार वैभव प्रदान करे। हम दीनता पाप कृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहें। अश्व के समान शक्तिशाली हमारे नागरिक पराक्रमी हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 162 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वालों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, समय अनवरत निर्बाध चलता रहता है। धरती सांस सांस गाती है नव सृजन का संकल्प, रचती है नया दिन, नई सुबह, नया जीवन। सुबह जैसे खुशी की सरगम है और शाम एक मध्यम सी मुस्कुराहट है जिंदगी की। सुबह एक शक्ति है जो सिखाती है जीने का मंत्र, दिखाती है कुछ नए रास्ते, और शाम जैसे पुनर्जीवन है, नए सिरे से नई राह पर जिंदगी की एक नई शुरुआत का चिंतन। शायद इसीलिए सुबह और शाम आराधना का विधान है। तो आइए हम और आप साथ साथ चलें आज की भजन यात्रा पर।

जिसने भी सत्य को जाना वो ठहर गया, मौन हो गया, क्योंकि फिर बोलना मुश्किल था। और अगर किसी ने बोलने की कोशिश भी की तो वो इशारा मात्र था, इंगित करना था। वो मील का पत्थर था जिस पर तीर बना होता है, बस एक इशारा। उसे ही हम मंदिर समझकर बैठ गए तो फिर हमारा कहीं भी पहुंचना संभव नहीं है। उन इशारों को समझते हुए ये यात्रा स्वयं करनी होती है, उस अनुभव से बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं गुजरना होता है। इस तरह भक्ति में हर यात्रा व्यक्तिगत होती है, हर अनुभव व्यक्तिगत होता है।

श्रोताओं, सुख दुख जीवन के अनिवार्य अंग हैं। या तो हमारे जीवन में सुख है या दुख है। जीवन में या तो कुछ है जो हम चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ है जिसका हम पीछा करना चाहते हैं, कुछ है जिससे हम बचना चाहते हैं। ये चाहना, ये मन का होना ही संसार है और ईश्वर संसार के पार है। जहां न सुख है न दुख है, उसी को हमने आनंद कहा। और इस ज्ञान की प्राप्ति भी उस परम शक्ति की कृपा से ही संभव है।

श्रोताओं, मन की सफलता जहां समाप्त हो जाती है, वहीं भक्ति आरंभ होती है, वहीं वंदना घटित होती है। जब तक मन सफल होता रहता है, माया जारी रहती है। मन का न होना ही मौन है, मन का न होना ही परमात्मा में खोना है, और इस खोने में ही उसे पाने की व्यवस्था है।

जो है जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना वंदना है। प्रयास और प्रयत्न से जो हो वो मन के पार नहीं ले जाएगी, क्योंकि सभी प्रयास मन का है। जिसे मन से कोशिश करके पाया वो मन के ऊपर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि परमात्मा को प्रयत्न से पाने का कोई उपाय ही नहीं, उसे तो अप्रयास से ही पाया जा सकता है।

और श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। और अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

जब झूठ की ताकत सच के नामो निशा मिटाकर आत्मा पर घटा टोप की तरह छा जाए, जब शोषक सत्ता का आतंक जहर की तरह शिराओं में बहने लगे, जब जुबान फिजाओं में बहती दहशत से गूंगी हो जाए, तब प्रतिरोध अनिवार्य है। अनिवार्य है वो आग जिसे इनकार कहते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम ऐसे ही बड़े इनकार की अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। ये प्रतिरोध कभी सशस्त्र था तो कभी निःशस्त्र, लेकिन प्रतिरोध प्रबल था। हमारे स्वाधीनता इतिहास में प्रतिरोध की अविस्मरणीय कहानियां लिखने वाले अनगिनत महानायक हुए हैं। एक ऐसे ही प्रखर स्वाधीनता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभक्त थे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर सन 1903 को मुंबई के एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर उनके व्यापार को संभालें और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें, लेकिन यूसुफ मेहर अली जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, देश दुनिया और समाज के हालात को समझने लगे थे। स्वाधीनता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने अनेक बड़े नेताओं के भाषण सुने, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा और भारत की आजादी का सपना उनकी आंखों में पलने लगा। इस तरह उनकी जिंदगी ने एक नई राह पकड़ ली और आगे चलकर उन्होंने बॉम्बे यूथ लीग की स्थापना की। किसानों और श्रमिकों की दशा उन्हें विह्वल कर देती थी, इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। इन तमाम गतिविधियों के बीच उनकी पढ़ाई जारी रही। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युवाओं को एकजुट किया। उनके प्रयासों से शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए युवा प्रशिक्षित हुए और वो बढ़ चले अंधकार के एक युग को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ।

यूसुफ मेहर अली अपने छात्र जीवन से ही अन्याय और अत्याचार का विरोध करते रहे। कानून की पढ़ाई के दौरान ही जब कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई, तब उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। पुलिस की बर्बरता हो या मिल मजदूरों का शोषण, उन्होंने पूरी निडरता के साथ इन बातों का विरोध किया। अपने समय में छात्र आंदोलन को उन्होंने नई ऊर्जा और गति प्रदान की। यूसुफ मेहर अली ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक लेख भी लिखा था, जिसमें अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार पर तीखा हमला किया गया था। उनके कड़े शब्दों से अंग्रेज तिलमिला गए और अपनी नाराजगी भी प्रकट की। 1927 का साल था जब बेंगलोर में गांधी जी को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन का तार मिला, जिसमें गांधी जी को दिल्ली आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथों में एक पर्चा थमाया गया, जिस पर लिखा था कि भारत के वैधानिक सुधारों के प्रश्न पर रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके प्रधान सर जॉन साइमन होंगे। इस कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं रखा गया था, सारे अंग्रेज ही थे। भारतीय पहले भी अंग्रेजों के ऐसे कमीशन का परिणाम देख चुके थे। साइमन कमीशन की घोषणा से पूरे भारत में रोष और असंतोष व्याप्त हो गया। साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय हुआ और देश भर से युवा भी इसमें आगे आए। ऐसे समय में यूसुफ मेहर अली भला कैसे चुप बैठते। उनकी संस्था बॉम्बे यूथ लीग ने शहर भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचने वाला था। यूसुफ मेहर अली ने बंदरगाह में ही कमीशन के सदस्यों के समक्ष विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। इस योजना की जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को हो चुकी थी। बंदरगाह में पुलिस तैनात थी। यूसुफ मेहर अली ने अपने साथियों को तैयार किया। सभी ने कुली का वेश बनाया और बंदरगाह में घुस गए। यूसुफ मेहर अली ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए साइमन गो बैक का नारा गढ़ा। युवाओं का ये दल जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वहां पहुंचकर ये सभी साइमन कमीशन के सदस्यों को काले झंडे दिखाते हुए साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। सभी लहूलुहान हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूसुफ मेहर अली के साथ पुलिस ने बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। लेकिन यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया नारा पूरे भारत में गूंज उठा था। शहर भर में उनके संघर्ष के समर्थन में हड़तालें हुईं। गांधी जी ने भी इस साहसिक विरोध प्रदर्शन की प्रशंसा की। ब्रिटिश सरकार ने यूसुफ मेहर अली की वकालत पर रोक लगा दी, लेकिन उनके हौसले अब और अधिक बुलंद थे। यूसुफ मेहर अली साइमन गो बैक के नारे के साथ ही पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनका संगठन तेजी से बढ़ता रहा और कई युवा स्वाधीनता संग्राम सेनानी उनसे जुड़ते चले गए।

यूसुफ मेहर अली गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। गांधी जी भी उनके युवा जोश और ऊर्जा की सराहना किया करते थे। दोनों के बीच एक ऐसा संबंध था जो उन्हें एक पिता और पुत्र, एक गुरु और शिष्य जैसे आत्मीय रिश्ते में बांधता था। यूसुफ मेहर अली ने सविनय अवज्ञा और दांडी सत्याग्रह आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सन 1930 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 4 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता जैसे राष्ट्र नायकों के साथ मिलकर कार्य किया। किसानों और श्रमिकों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सघन प्रयास किए। यूसुफ मेहर अली ने अपने लेखन के जरिए भी इस लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने लीडर ऑफ इंडिया नाम से एक किताब भी लिखी, साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की ताकि भारत की आजादी के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से अंग्रेज परेशान रहा करते थे। यूसुफ मेहर अली 8 बार जेल गए, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनका हौसला हमेशा बुलंद रहा। किसानों और श्रमिकों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी बहुत अधिक थी। 1942 में वो बॉम्बे के मेयर चुने गए। यही वो समय था जब ब्रिटिश राज के विरुद्ध अंतिम निर्णायक लड़ाई की भूमिका बन रही थी। बॉम्बे में गांधी जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। अंग्रेजों को चेतावनी देने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका भाव यही था कि अंग्रेज अपनी इच्छा से भारत का शासन भारतवासियों को सौंप कर चले जाएं, अन्यथा संपूर्ण राष्ट्र की उमड़ती हुई शक्ति का सामना करने को तैयार हो जाएं। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए नारे का सुझाव मांगा, अंग्रेजों पीछे हटो, वापस जाओ, गेट आउट। ऐसे कई नारों का सुझाव आया, लेकिन गांधी जी संतुष्ट नहीं थे। तभी यूसुफ मेहर अली ने गांधी जी को एक धनुष भेंट की, जिस पर लिखा हुआ था क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान कर दिया और ब्रिटिश राज अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से थर्रा उठा। यूसुफ मेहर अली ने केवल क्विट इंडिया नारा ही नहीं गढ़ा, बल्कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आंदोलन से पहले भारत छोड़ो नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसे हफ्ते भर के भीतर ही लोगों ने खरीद लिया। उन्होंने भारत छोड़ो के बैज भी मुद्रित किए ताकि जन जन इस आंदोलन के बारे में जाने और इससे जुड़े। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही आरंभ हुआ, तमाम शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे समय में यूसुफ मेहर अली ने राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के साथ भूमिगत होकर इस आंदोलन को हवा दी। हालांकि बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। उन्हें जेल में ही दिल का दौरा पड़ा। जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल ले जाने की बात की, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके 2 अन्य साथी भी पीड़ित हैं, उन्हें भी अस्पताल जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। जब जेल अधिकारियों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए अपने सहयोगियों के साथ जेल में ही रहने का फैसला किया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, लेकिन वो अपने इरादों पर अटल रहे जब तक कि उन्हें रिहा नहीं कर दिया गया। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई जारी रखी। 1946 में वो बॉम्बे विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनका हर पल देश और समाज को समर्पित रहा। वो उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी और भारत में आजादी का सवेरा भी देखा। 2 जुलाई सन 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, कुछ खास शख्सियतें जिनसे मुलाकात को जी चाहे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बातें सुनने को जी चाहे, आपकी ऐसी ही चाहतों को पूरा करता है हमारा अगला कार्यक्रम। जी हाँ, आमने सामने। इंतजार कीजिए बस जरा सा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने लोक गायक शशि कुमार पांडे जी। आप मूलतः बघेली लोकगीतों की सौंधी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार हैं। भारत सरकार के संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित बहुत से कार्यक्रमों में आपसे मंच शोभायमान हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
1: आज हमारे स्टूडियो का भी सौभाग्य है कि आज हमें बहुत सारे बघेलखंडी लोकगीत सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप लोकगीतों को, जैसे कि सभी कहते हैं कि वो अपने समय की सबसे पुरानी और सशक्त कविताएं हैं, आप लोकगीतों का वर्गीकरण कैसे करेंगे?
3: बिल्कुल सही बात है। संगीत की शुरुआत ही मेरे समझ से लोक से ही हुई है। उसको व्यवस्थित रूप तो बाद में दिया गया, जब स्वरों के विषय में लोगों ने सीखना शुरू किया तो फिर व्यवस्थित संगीत शुरू हुआ। बाकी यह प्रकृति से सीधे लोक में आया है। पानी के बहने की आवाज़, पत्तों के डोलने से उत्पन्न आवाज़, प्रकृति से जो ध्वनियाँ निकली वो संगीत के रूप में लोक में आईं
1: जी,
3: और लोगों ने उनको गुनगुनाना शुरू किया और उन गुनगुनाने के साथ में उनको शब्दों के साथ मिलाने का प्रयास किया। तो पहले लोक संगीत था, इसके बाद लोक गीतों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा मेरा मानना है। लिखा भी कई जगह मैंने इसी तरह से लगभग पाया। अब जब लोक गीत आ गए तो विभिन्न अवसरों पर उनका उपयोग होने लगा
1: जी,
3: और जब विभिन्न अवसरों पर उपयोग होने लगा तो धीरे धीरे लगभग हर अवसर पर, हर अच्छे मौके पर इनका उपयोग शुरू हुआ, लोग गाने लगे और कालांतर में बहुत संख्या हो गई। और आते आते आते आते हमारी पीढ़ी तक ये लोक संगीत आया, जब तब तक इतना इसका क्षेत्र विस्तृत हो चुका था कि अब हमको समझने के लिए या आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि उसको व्यवस्थित रूप से हम समझ सकें और समझा भी सकें
1: जी।
3: तो फिर हम लोगों ने उसको तीन मुख्य भागों में उसको विभक्त किया। एक तो संस्कार गीत
1: जी।
3: हमारे यहाँ 16 संस्कार, बड़े महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं और लगभग हर संस्कार में लोक गीतों का गायन होता है
1: जी।
3: दूसरा एक पक्ष होता है ऋतुपरक गीत। लोक संगीत मतलब जो सामने दृश्य है हमारे, उससे संबंधित गीत जो हमारे अंदर से फूटे वही है लोक संगीत। विवाह का दृश्य हो, या झूला पड़ा है झूला का दृश्य हो, या कि एक शिशु पैदा हुआ है उस समय खुशी का गीत, मतलब जो दृश्य हमारे सामने है उसी से संबंधित गीत अगर हमारे मन से निकले वही है लोक गीत।
1: लोक का गीत।
3: इसी तरह से जो संस्कार गीत हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, ऋतुओं के आधार पर त्यौहार होते हैं, त्योहारों के गीत हैं। और तीसरा श्रमिक गीत कह सकते हैं, काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, खदानों में, सड़कों में, कहीं भी दिन भर पसीना बहाते हैं और शाम को जब आते हैं तो फिर मस्ती के साथ वो अपने गीतों को गाते हैं और सभी महिला पुरुष मिल करके उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, तो वो हो गया श्रमिक गीत। तो तीन तरह से इसको विभक्त कर सकते हैं।
1: लोकगीतों में हमेशा से राम के जीवन को स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से उतरते देखा गया है। प्रभु श्री राम को बघेलखंड ने बहुत आत्मीयता से रिश्तों में बांधा है। और आप अगर आज के इस मुलाकात की, बातचीत की शुरुआत हम प्रभु श्री राम के सोहर से करें तो मुझे लगता है कि हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा।
3: बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपने बघेलखंड को इतना मान दिया, इसके लिए हम अभिभूत हैं और इस रेडियो के प्रति आभार भी ज्ञापित करते हैं कि इतना मान दिया और हमारी परंपराओं का हमारे यहाँ प्रचलित जो लोकगीत हैं उनको आप जानना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो बघेलखंड है, बघेलखंड में भगवान राम व्याप्त हैं
1: जी,
3: लोकगीतों में तो व्याप्त हैं ही, लोगों की दिनचर्या में
1: व्याप्त हैं।
3: और हमारे यहाँ हर जन्म लेने वाला शिशु
1: जी
3: राम होता है, और हर जन्म लेने वाली कन्या माँ जानकी स्वरूपा होती है
1: जी।
3: इसीलिए जैसे ही खबर आती है कि बेटे का जन्म हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ की महिलाएं अनायास ही बोल पड़ती हैं। कोई भी महिला शुरू कर देगी, धन

0: हर गीत में राम है। प्रायः जितने शोहर हैं हमारे यहाँ उनमें अधिकांश गीतों में राम ही हैं, और जन्म में ही नहीं, विवाह भी जब होता है तो उस समय का वर चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस हैसियत का हो, माली हालत उसकी क्या है ये मायने नहीं रखती है। यदि हमारे यहाँ महाराज साहब के किले में अगर शादी हो रही है तब भी वो वर राम होगा। मतलब हमारे यहाँ के लोक संगीत में भेदभाव नहीं है, वो सबको समान मानता है, चाहे राजा के घर का वर हो
1: जी
0: और चाहे सड़क के किनारे रह रहे एक मजदूर के बेटे का।
1: कितनी अच्छी बात है, समरसता का ये भाव आपको कितनी समृद्धता देता है, कितना मन में सौहार्द दिलाता है। लेकिन सोहर के बाद अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि एक अगर आप हमें विवाह गीत, द्वारचार गीत या बन्ना अगर कोई अच्छा सा हमें आज हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं।
0: हम सुनाते हैं, पर इसके क्रम में आपको बता दूं
1: जी,
0: थोड़ा सा मैं धृष्टता करना चाह रहा हूं कि विवाह के पहले हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता
1: जी,
0: है
1: जी
0: और बघेलखंड में उसको बरुआ या व्रतबंध कहते हैं, तो उसमें भी भगवान राम की ही छवि देखते हैं हमारे यहाँ।
1: जी
0: हमारे यहाँ एक रस्म होती है व्रतबंध के बाद जो बटुक होता है वो काशी पढ़ने जाता है, लेकिन लोक में मान्यता ये है कि भांजा नाराज होके जा रहा है
1: जी,
0: वो रिसाता है, उसको रिस लगती है, गुस्सा लगती है किसी कारण से मामा के ऊपर, तो फिर मामा उसको मनाने जाता है।
1: जी जी जी
0: जब मामा मनाने जाता है तो मामा के साथ में मामी और जो गोतीने पड़ोसीने होती हैं और जो परिवार की महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी साथ में जाते हैं
1: जी।
0: उस बटुक के।
1: हाँ।
0: तब वो रास्ते में गाते हैं, हमारे यहाँ एक गीत बड़ा महत्वपूर्ण होता है गैलहाई।
1: हाँ।
0: गैल माने रास्ता।
1: हाँ।
0: और गैलहाई माने रास्ता में गाया जाने वाला गीत। तो जब भी किसी रस्म को पूरा करने के लिए हमारे घर की महिलाएं जाएंगी तो रास्ते में गीत निर्धारित है, वो गाएंगी ही। तो जैसे वो बटुक निकलता है घर से और मामा पीछे पीछे मनाने के लिए चलो, वो घर के बाहर का दृश्य होता है
1: जी,
0: तो मामा पीछे से मनाने चलेगा तो कोई न कोई महिला के मुख से अनायास ही ये गीत फूट पड़ेगा

0: ये गीत हमारे यहाँ होता है।
1: और राई नॉन भी उसाड़ते हैं कई जगह।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: फिर वो मामा उसको
1: कि
0: मना करके
1: भांजे को
0: लेता है,
1: नजर ना
0: वो
1: लग जाए।
0: कुछ नेग देता है,
1: जी
0: टिक्का लगाते हैं,
1: हाँ
0: राई नॉन उतारते हैं,
1: हाँ
0: ये सारी चीज़ें होती हैं। मामी ये सब करती है और मामा उनको कुछ पैसे या कि अपनी हैसियत के अनुसार कुछ गहना, घड़ी, कुछ भी दे करके, और फिर भांजे को वापस छोटे होने पर, व्रतबंध होने की परंपरा रही है, तो फिर उसको गोदी में लेकर के
1: लेकर
0: वापस।
1: आते हैं। सर, मुझे यहाँ ये लगता है कि हम लोग कितने धन्य हैं
0: जी
1: कि हमारे यहाँ पल पल के लिए गीत
0: हाँ,
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हमको
0: बिल्कुल,
1: डीजे वाले बाबू से कहने की जरूरत नहीं
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: कि
0: कोई
1: कोई
0: जरूरत,
1: गाना बजा
0: कोई
1: दो।
0: जरूरत नहीं।
1: हमारे यहाँ तो हर पल पर एक गीत
0: हाँ
1: है।
0: हाँ बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल।
1: देखिए, रूठने पे गीत है, मनाने पे गीत है, और सबसे बड़ी बात कि कोई रूठा राठी होती भी नहीं,
0: नहीं
1: क्योंकि
0: कुछ
1: हमारे
0: नहीं
1: यहाँ तो
0: होता।
1: गारी भी गीत है।
0: अच्छा, कुछ भी होता है तो वो विनोद के लिए होता है,
1: हाँ
0: और उठना होता है तो विनोद के लिए, मनाना होता है तो भी विनोद के लिए। अगर कहीं सही सही हुआ है तो
1: हाँ
0: हमारे यहाँ के गीत इस तरह के हैं कि उसको विनोदपूर्ण बना देते हैं।
1: बिल्कुल। तो द्वार चार का कोई गीत आपको अगर याद आ रहा हो, राम बन्ना जब बनकर आते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बन्ना का भी गीत है जिसमें राम है, और जैसा मैंने बताया कि हर वर राम होता है और हर कन्या माँ जानकी स्वरूपा
1: जी
0: होती है, तो उस समय जब बन्ना गाया जाता है तो बन्ना में भी लोग गाते हैं कि अब ये देख, ये सारे गीत जो हैं हमारे यहाँ महिला स्वरों में गाए जाते हैं, पर सुनते सुनते मुझे कुछ मुखड़े और कुछ अंतरे याद हैं,
1: जी
0: तो पूरा पूरा गीत मैं नहीं सुना पा रहा हूँ आपको, पर वानगी बतौर हम आपको कुछ गीत
1: बिल्कुल।
0: बताए दे रहा हूँ। तो जैसे ही वर आएगा वैसे कोई न कोई महिला शुरू हो जाएगी।

वर को राम ही मानेंगे। यहाँ तक कि अन्य गीत तो जो होते हैं हमारे यहाँ एक विशेष गीत होता है गारी। तो गारी मजाक वाली जो गारी गाई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक स्वस्थ गारी गाई जाती है उसमें राम के किसी न किसी जीवन के प्रसंग का उल्लेख होता है। एक गारी गाई जाती है हमारे यहाँ, दो लाइन याद आ रही है मुझे,

0: इस तरह से गारी की शुरुआत होती
1: क्या
0: है।
1: बात है, मन चाहता है कि सुनते ही जाएं, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम, तो क्यों ना आपसे लगे हाथ हम ये भी जान लें कि बघेलखंड में कहते हैं कि राम कण कण में व्याप्त हैं, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, और जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। और रेडियो के लगभग हर श्रोता को ये मालूम होगा कि भगवान राम की तरुणाई के 11.5 वर्ष बघेलखंड में ही बीते हैं। वनवास का अधिकांश समय उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया, और चित्रकूट परिसर में ही हमारा बघेलखंड निवास करता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोकगीतों में तो राम व्याप्त हैं ही, वहाँ के संस्कारों में राम हैं, और वहाँ की संस्कृति में राम हैं, और यहाँ तक कहें कि वहाँ की दिनचर्या में राम व्याप्त हैं। वहाँ के खेतों में, वहाँ के खलिहानों में, वहाँ के फसलों में, जहाँ भी आप देखें राम हैं, वहाँ व्याप्त हैं राम। जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों में राम है वहाँ
1: जी
0: निश्चित रूप से। इतना हमारे यहाँ के लोकगीतों में और अन्य प्रसंगों में जो राम हैं, इतना मैं समझता हूँ उसका मुख्य कारण यही है कि 11.5 वर्ष, और वो भगवान राम के 11.5 वर्ष जितना हम लोग पढ़ सके, सुन सके एक मानवीय दृष्टिकोण से, तो उनके जीवन के वो सर्वोत्कृष्ट 11.5 वर्ष थे। फिर उसके बाद से फिर उनके ऊपर विडंबनाएं आना शुरू होती हैं, तो फिर अंत तक वो धर्म संकट का ही जीवन जो हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि अब उनके लिए क्या धर्म संकट, क्या खुशी, क्या गम, जो कुछ भी किया उन्होंने, या कि उनके चरित्र में से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ हमें दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए ही है। वो हमारे आदर्श हैं, तो उनके हर परिस्थिति में कुछ न कुछ हमारे लिए संदेश है। पर वो 11.5 वर्ष जो हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो उनके जीवन का मूल उद्देश्य था,
1: जी
0: ऋषियों का सानिध्य, चर्चा, और जो प्रकृति से तादात्म्य, ये सारी चीज़ें उन 11.5 वर्ष में उन्होंने बहुत कुछ दिया। इसलिए हमारा बघेलखंड पूरे भारतवर्ष से कहीं अधिक उनको याद करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं।
1: जी
0: अब इसको गारंटी के साथ या चैलेंज के साथ नहीं कहते, लेकिन हमारा मानना है, तो मानने में किसका क्या वश है, वो तो माना
1: बिल्कुल
0: जा सकता है।
1: जी, इस देश का मुझे लगता है कि हर शख्स प्रभु श्री राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा
0: जी जी
1: बनना चाहता है, उनके सत्कर्मों को देखकर आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित रूप से आपसे जो बात कर करके बीच में जो आपने लोकगीतों की छोटी छोटी सी फुलझड़ियां हमारे लिए उजास बिखेरी है, वो बहुत ही मज़ेदार रही हैं। एक गारी मुझे भी याद आती है, मेरी दादी कहती थी
0: जी
1: कि राम जब ब्याहने गए तो वहाँ की महिलाएं चाहती नहीं थी कि ये वापस जाएं अपने ससुराल, तो कहती थी कि तुम्हारा भैया इतना करुआ है, उसे हम गोरा कर देंगे, यहीं रुक जाओ।
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: मतलब आप देखिए
0: जी
1: कि लोकगीतों में कहीं ना कहीं साहस भी होता है। आप सोच सकते हैं कि भगवान से कोई ऐसा ऐसा निवेदन कर सकता है कि तुम्हारे भाई करुआ हैं, यहाँ रुक जा, लेकिन फिर भी लोक की यही खासियत
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: बड़ी मजेदार सी ये बातें होती हैं आपसे।
0: मैं ऐसा समझता हूं
1: हाँ
0: कि राम इतने नजदीक हो गए हैं व्यक्ति के,
1: हाँ
0: जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बहुत नजदीक हो जाता है, तब औपचारिकताएं बहुत मायने नहीं रखती
1: नहीं
0: हैं,
1: रखती।
0: औपचारिकताएं रह ही नहीं जाती
1: हाँ
0: इतना अपनापन हो जाने के बाद। और राम से इतना नजदीक लोग अपने आप को मान लेते हैं बहुत जल्दी, उनका व्यक्तित्व तो इस तरह का है
1: हाँ
0: कि कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कुछ कहना तो है नहीं, मुस्कुराना है उनको,
1: हाँ
0: भगवान राम को।
1: जी
0: तो ये आपकी दादी जी का जो प्रसंग है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो लोग गाते थे
1: वो
0: उसमें?
1: यही कहती हैं कि वो निवेदन जो कर रही हैं वो इसी तरीके से कर रही हैं
0: जी
1: कि
0: जी
1: तुम्हारे भाई तो पल पल पे गुस्सा होते हैं तो हम उनका गुस्सा ठंडा कर देंगे।
0: गुस्सा
1: उसके
0: ठंडा
1: अर्थ आपको बता रही हूँ कि जो अंतरे में वो सुनाती थी, वो जैसे हम लोग कभी आपस में झगड़ते थे और ये कहते थे कि हमारे हिस्से का उसने खा लिया, तो हमेशा कहती थी राम जी की चिड़िया राम जी का
0: राम
1: खेत।
0: जी का खेत।
1: तो आप देखिए कि जीवन में ये कहावतें कितनी उतरी हुई हैं,
0: सही बात है।
1: मतलब आप अगर बुरा हो जाए तो भी प्रभु के ऊपर छोड़
0: हाँ
1: दीजिए,
0: हाँ हाँ
1: अच्छा हो तब तो प्रभु का है ही
0: है ही,
1: कृपा।
0: बिल्कुल सही
1: तो ये
0: बात।
1: लोक से ही ताकत मिलती है।
0: हाँ बिल्कुल
1: ऐसे
0: बिल्कुल।
1: में कोई और गीत अगर आपको याद आ रहा हो हमारे श्रोताओं के लिए।
0: अब देखिए, गीत हमारे यहाँ के, जैसे मैंने बताया कि लोक गीतों में जितने भी गीत हैं, हर गीत में भगवान राम है। ये तो अभी तक जो अपन चर्चा कर रहे थे, ये संस्कार गीत थे। हमारे यहाँ के जो ऋतुपरक गीत हैं
1: जी
0: और जो श्रम गीत हैं, उनमें भी राम है। जैसे ऋतुपरक गीतों में अगर चलें तो चैती हमारे यहाँ गाते हैं। चैती वैसे सेमी क्लासिकल है, बनारस का चैती, और हमारे पास ये मशहूर है, अवध में भी गाते हैं चैती, लगभग तमाम गाते हैं, तो वो सेमी क्लासिकल है। हमारे यहाँ का लोक गीत है चैती।

0: ये हमारे यहाँ गाते हैं।
1: हम्म,
0: ये तो हिंदी में है, लोक भाषा में भी, बघेली में भी, भगवान राम जैसे और भी गीत इसके बाद चले अगर श्रम गीतों में, श्रम गीतों में भी राम है। हमारे यहाँ एक सुआ गीत गाते हैं लोग, सुआ गीत में एक प्रसंग आता है जब रावण सीता का हरण करता है
1: जी,
0: तब गाते हैं, मस्ती के साथ उसमें डांस करते हैं। अब उनके लिए राम का नाम महत्वपूर्ण है, राम का चरित्र महत्वपूर्ण है, उनको उसी में इंजॉय करना है, उसी में आनंद लेना है। अब वो प्रसंग खुशी का है कि गम का, इससे उनसे बहुत लेना देना नहीं है। तो वो जब सीता का हरण करता है रावण, तब वो गाते हैं,

0: बैठे। अब उसको ये गाने के उतना वो भाव में तल्लीन हो जाएंगे कि इस गाने की गति जो है वो बढ़ती जाएगी
1: बढ़ती जाएगी।
0: और इतना बढ़ेगी कि सामान्य श्रोता अगर उनके बीच में है तो उसके पैर थिरके बिना नहीं रह जाएंगे। अगर थोड़ा भी संगीत उसके अंदर है तो फिर वो बड़े स्पीड में गाएंगे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे। इन्हीं राम के गीतों को गाते गाते वो शाम से सुबह कर देंगे बड़ी मस्ती, और सुबह फिर से वो इसी तरह से श्रमिक गीत। एक और मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे यहाँ का अभी विलुप्त प्राय गीत रहा है, उसको मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बचपन में कभी सुना था,
1: जी।
0: दृश्य देखा था। एक गीत होता है मलेला, उसको हमारे यहाँ बघेलखंड में ही कुछ हिस्से में उसको टप्पा बोलते हैं। तो जब कभी डंफर नहीं हुआ करते थे, बाड़ी वाले ट्रक हुआ करते थे, तो खदानों में गिट्टी लेबरर लोड करते थे और वही जा करके फिर उसको दूसरी जगह अनलोड करते थे। तो जब ट्रक चलता था उसके गिट्टी के ऊपर वो बैठ जाते थे और उसके ऊपर बैठे बैठे फिर रास्ते में वो मस्ती करते थे और गाते थे। तो उस समय वो मलेला गीत गाते थे,
1: जी
0: तो उसकी शुरुआत वो करते थे राम से।
1: हाँ
0: वैसे जो मलेला गीत है प्रायः देखने में आया है, श्रृंगार रस का गीत है, कभी संयोग श्रृंगार उसमें दिखता है, कभी वियोग श्रृंगार दिखता है, प्रायः दिखता उसमें श्रृंगार रस है।
1: श्रृंगारस।
0: लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो राम नाम से होती है। तो वो नायिका पूछती है

0: शुरुआत वहां से होती है।
1: क्या बात है, अभिवादन से लेकर संदेशा पहुंचाने तक हर बात में राम व्याप्त है,
0: राम व्याप्त है।
1: कितनी अद्भुत महिमा है। और आज की ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। एक और बात मुझे ऐसे में याद आ रही है, क्योंकि जब लोग की बातें छिड़ती हैं तो आपको भी अपनी पुरानी यादें आती हैं। हमारी दादी ये भी कहा करती थी कि सृजन से विसर्जन तक राम है।
0: हाँ बिल्कुल है।
1: आप देखिए कि किसी को कोई आपने जैसे बोला कि राम राम कहे हो,
0: हाँ, हाँ,
1: बस
0: हाँ,
1: ये है कि ब्रिज में वो शब्द अलग हो जाते हैं, तरीके अलग हो जाते हैं, लेकिन सब वही व्याप्त है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और लोकगीतों को जिस तरह से आपने समझाया है कि किस तरह से श्रृंगार गीत, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, ऋतु गीत, उपनयन संस्कार तक के गीतों पर बात हो गई, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप आए स्टूडियो।
0: मैं तो अभिभूत हूँ कि लोक गीतों को इतना मान दिया आपने। भगवान राम तो सर्वमान्य हैं
1: जी
0: और कुछ लोगों के मान देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी
0: उनकी प्रतिष्ठा में, लेकिन लोक गीतों को मान दिया है आपने, राम से जोड़ा उनको, तो हमारा पूरा बघेलखंड और बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो लोक जगत है, खासकर लोक गायन का जगत, उसकी तरफ से मैं आभार ज्ञापित कर रहा हूँ रेडियो का।
1: आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हम एक बार पुनः अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि लोकगीत हमारी विरासत है, हमारी मिट्टी है, और अपनी जड़ों से खुद को जोड़े रखना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ अनछुए गीत नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो उन्हें लिखिए और अपने अगली पीढ़ी में पहुँचाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को बताती हैं, भारतीय मनीषियों को बताती हैं, तो इन्हें बचा कर रखिए। सर पुनः एक बार आपका बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे गीतों के साथ कहानी की तरह सारी बातें बताई, बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने में, बघेलखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक शशि कुमार पांडे जी के साथ ये खास बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी सुझाव है तो हम सहर्ष उसका स्वागत करते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हम आपको अपना ईमेल आईडी बता दें, radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने।

आमने सामने कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात का, कुछ खास व्यक्तित्वों से आपकी बात का बहाना, ये कार्यक्रम उम्मीद है आपको पसंद

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर बाद हम लेकर उपस्थित होते हैं आज की अगली प्रस्तुति। जी हाँ, कार्यक्रम वागर्थ।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आज़ाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम वागर्थ का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कहानी पाठ, कविता पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ।

0: वर्तमान परिदृश्य और धर्मपाल, इस विषय पर वक्तव्य दे रही हैं डॉक्टर उर्मिला श्रीश।
1: एक चिंतक के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में, एक मनीषी के रूप में और एक रिसर्चर के रूप में उनका जो योगदान रहा है उसको जानकर चकित हो जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि किसी विषय के बारे में, अपने देश के बारे में, या देश की जो व्यवस्था थी, शासन तंत्र था, या हमारा जो भारतीय समाज था, उसके बारे में जब हम किसी विषय पर शोध करने के लिए जाते हैं तो शोध का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, कितनी गहराई के साथ हमें शोध करना चाहिए उस विषय के बारे में कि वो एक उल्लेखनीय दस्तावेज आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बन जाए। तो मैंने जो विषय अपना भारतीय परंपरा में समाज और राज व्यवस्था मैंने लिया, क्योंकि मैं भारतीय इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, हिंदी साहित्य तो रही हूँ, और दूसरा मेरा धर्म समाज अपना जो प्राचीन साहित्य है उसमें शुरू से बहुत ज़्यादा रुचि रही थी। तो मुझे लगा कि जब हम वर्तमान परिदृश्य की बात यदि हम करते हैं, वर्तमान की प्रगति के बारे में जानने के लिए हमें पीछे लौट के जाना चाहिए, क्योंकि अतीत से वर्तमान का जो तारतम्य होता है वो जुड़ा रहता, और अतीत को छोड़कर हम वर्तमान के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं अपने विषय पर काम कर रही थी तो मुझे धर्मपाल जी की किताबें पढ़ने का जो, और उन किताबों को पढ़कर आप पूरे भारतीय समाज के बारे में जान सकते हैं। और जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, भारत की पहचान, आज हम विदेशों में जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी लगता है कि हम किस देश के हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी भारतीयता क्या है, हम क्या हैं, मतलब सबसे पहले हम अपनी पहचान से शुरुआत करते हैं। और अंग्रेजों से पहले का भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी किताब है, भारत का स्वधर्म। स्वधर्म क्या है, क्या होता है स्वधर्म, क्या अपने देश का, हर देश का अपना कोई स्वधर्म होता है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसकी बनाई हुई कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम कहें कि ये तो केवल भारत का स्वधर्म है, ब्रिटिश इंग्लैंड का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, रूस का नहीं है, केवल हमारे देश का ये स्वधर्म है। तो वो है क्या असल में, उसकी नींव क्या है, उसकी आधारशिला क्या है, और भारतीय चित्त मानव स्वकाल, इतनी सुंदर ये किताब है कि जब हम बात करते हैं कि किस चित्त से हम बात करें, हमारे चित्त में क्या है, हम कहते हैं ना हमारे मन में क्या है, हमारे मनस में क्या है, कौन सा काल है, कौन सा समय है, ये कौन सी अवधारणा है। तो जब इस किताब के को लेकर मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें थी आज के संदर्भ में, कि धर्मपाल जी की लेकर आना हमें बहुत ज़रूरी थी। और स्वदेशी और भारतीयता, तो स्वदेशी की बात कौन करता था, क्या आप जानते हैं स्वदेशी की सबसे ज्यादा बात पर सबसे पहले किसने की थी, किसने, गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने की थी। लेकिन धर्मपाल जी भी गांधी जी को कोट करते हैं, उसकी परिभाषा में वो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों की जो आज बात चल रही है उसके बारे में धर्मपाल जी ने कि स्वदेशी होता क्या है असल में, और गांधी जी उसके बारे में क्या सोचते थे। तो ये औचित्य क्या है, मानस क्या है, काल क्या है, भारतीयता क्या है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जब हम अपने भारत को जानने की कोशिश करते हैं, भारतीयता को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पीछे लौटकर इसकी तरफ जाना चाहिए। और वर्तमान परिदृश्य क्या है हमारा, आज हम यदि हमसे पूछे कि भारत का वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो क्या काल है, क्या समय है परिदृश्य में, या हमारा जो भारत है, भारत भूमि है, या हमारा जो अध्यात्म है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी भारतीयता है, क्या ये सारी की सारी चीज़ें आज हमारे परिदृश्य में हैं, या हम जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, या जिस राष्ट्रीयता की बात हम करते हैं, या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो क्या ये वर्तमान परिदृश्य में ये तमाम तरह की चीज़ें आज आपको नज़र आ रही हैं। क्या हम अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, हमें अपनी परंपराओं के बारे में जानना चाहिए, हमें अपनी भारतीयता के बारे में जानना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद क्या होता है ये जानना चाहिए, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है क्या वो हमें जानना चाहिए, क्या इन सब के बिना हमारी कोई अपनी पहचान है। और आज हम अब दुनिया में यदि स्थानीय चीज़ों को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर, जो आज प्रधानमंत्री जी नाम दे रहे हैं कि स्थानीय चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना, स्वदेशी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देना, गांधी जी खादी की बात करते थे, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो धर्मपाल अपने साहित्य में, अपने व्याख्यानों में और अपने चिंतन था उनका उसमें वो किस तरह से लेकर आए हैं। तो मैं इसीलिए उनके उससे बहुत ज़्यादा कि भारत का स्वधर्म क्या है, परंपरा क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, ये तमाम तरह की चीज़ों पर वो बात करते हैं। यदि वो पंचायती राज पर 1961 में राजस्थान में जाकर वहाँ से रिसर्च शोध शुरू करते हैं, आज जिस पंचायती समाज के बारे में हम इतनी अच्छी बातें करते हैं, एक व्यवस्था देखते हैं, धर्मपाल जी 1961 में राजस्थान में जाकर वहाँ का पंचायती समाज क्या होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने समुदाय थे, कितने गांव थे, फिर वो तमिलनाडु साउथ में जाते, वहाँ बहुत बड़ा उन्होंने रिसर्च का काम किया। 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में क्या अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं थी, क्या नियम थे, एक एक संघ एक एक उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगी, उस पर जाएंगी धर्मपाल के साहित्य में तो उसको पाएंगी। मेरी आज सबसे ज़्यादा, चूँकि मैं लिखती हूँ और मेरी आस्था है कि मैं अपनी परंपराओं के बारे में बात करूं, मैं अपनी सभ्यता के बारे में बात करूं, मैं अपनी संस्कृति के बारे में बात करूं, मैं आज जो मानवीय मूल्य हैं उसके बारे में बात करूं, आज हमारे ग्रामीण समाज में जो परंपराएं हैं उनके बारे में बात करूं, तो मैं बार बार लौट के फिर अपने अतीत में जाती हूँ। अतीत में हमें एक ऐसा महापुरुष दिखाई देता है, एक ऐसा चिंतक दिखाई देता है जिसका नाम धर्मपाल है और जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो परंपरा और उनके बारे में यदि हम किसी के बारे में जानते तो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े उनके विचारों के बारे में हमें ज़रूर सुनना चाहिए। वो क्या है, मानव जाति की विविध सभ्यताएं रही हैं और हैं, इनके इतिहास और स्वरूप पर अनुसंधान का कार्य लगभग चलता रहता है। परंपराएं आप जानते हैं क्या होते हैं, घर में आपने सुना होगा नहीं, कई बार आपकी माँ कहती है हमारे घर की ये परंपरा रही है, पहनावे में कहती होंगी, खान पान में कहती होंगी, विचारों में कहती होंगी, रीति रिवाज में कहती होंगी, लाइफ आपकी जो जीवन शैली है उसमें कहती होंगी, आप जो धर्म धार्मिक अनुष्ठान या कार्य करती हैं उसमें कहती होंगी, तो बताती होंगी ना कि हमारी संस्कृति ये है, हमारी परंपराएं ये हैं, तो जो शुरू से चली आ रही हैं कहीं कहीं जाके परिवर्तित हो जाती हैं, तो उनका कैसा क्या सभ्यता है, कितनी लंबी सभ्यता की जो परंपरा इतिहास रहा है, हजारों साल लग जाते हैं कोई सभ्यता बनने में। आपने सुना होगा मिस्र की संस्कृति या सभ्यता है ना, या दूसरे देशों की, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति क्यों बची हुई है, क्यों बची, उसकी जमीन क्या है, उसके आधार क्या है, उसके अपने मूल्य क्या रहे हैं, उसको मानने वाले लोग कैसे रहे, उसकी जड़ क्या रही है, तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हमें आज जानना ज़रूरी है। और जब महात्मा गांधी की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं, धर्मपाल जैसे चिंतकों की बात करते हैं, तो हम उन तमाम चीज़ों को बहुत ही आसानी से बहुत सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुख्यतः तो हर समाज अपनी सभ्यता की स्वीकृति अपने ढंग से जीवंत रखता है। हमारे यहाँ क्या है, वैविध्य है संस्कृति में, कितनी तरह की विविधता है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं अनेकता में एकता, कितनी तरह के धर्म है हमारे यहाँ, कितनी तरह की संस्कृतियाँ हैं, कितनी तरह की परंपराएं हैं, कितनी तरह की तमाम तरह की जो वैविध्य हमें भारत देश में दिखाई देता है वो दुनिया के किसी देश में दिखाई नहीं देता है। तो वो कह रहे हैं प्रेम और श्रेय के रूपों में आकांक्षा और सृजन के विविध पुरुषार्थों का आधार बनाती है। इस स्मृति का बना रहना किसी विचार और व्यवहार को अभिप्रमाणित करता है। स्मृति हित कथन या चिंतन अभिप्रामाण्य कथन का चिंतन हो जाता है। तो मात्र देश काल जो धर्मपाल जी कहना चाहते हैं कि जो स्मृतियां हैं है ना, और स्मृतियों में जो चीज़ें हैं फिर वो आगे चलते हैं कि यदि हम अपने अतीत को जानना चाहते हैं तो उसका साहित्य हमारे लिए कितना जरूरी है। आप भारतीय साहित्य पढ़ती हैं, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ती हैं, या दूसरे राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ती हैं, या हर्षवर्धन या करिश के बारे में पढ़ती हैं, तो क्या करती हैं, अपने प्राचीन भारतीय साहित्य को जानती हैं ना, उससे शुरुआत करती हैं ना कि प्राचीन भारतीय साहित्य में ये चीज़ें थी, ये राजा महाराजा थे, उनकी शासन व्यवस्था इस तरह की थी और किस तरह के उनके सुधार हुए। इसी तरह से जो साहित्य है हमारा, जिसमें ऋग्वेद है, जिसमें उपनिषद है, नाम सुने हैं अपने वेदों का, है ना, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, महाभारत है, गीता है, विष्णु गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारी गीताओं के नाम है ना, और यहाँ तक कि संस्कृत का जो साहित्य है, यदि उसको आप पढ़ेंगे तो आप जानने की कोशिश करेंगे उस भारतीय साहित्य से कि हमारा समाज कैसा था, हमारी शासन व्यवस्था कैसी थी, मानवीय मूल्य क्या थे, राजा का धर्म क्या होता था, उसका अपनी प्रजा के साथ कैसा संबंध रहता था, ये तमाम तरह की चीजें धर्मपाल का जो साहित्य है उसमें उन्होंने बताया, सारी की सारी चीजें। यदि आप अपने वेदों में जाएंगे, यदि आप अपने पुराने साहित्य में जाएंगे, तो तमाम तरह के जो मूल्य हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं, और खासकर धर्मपाल जी ने सभ्यता पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि यदि सभ्यता बनने में हजारों साल लग जाते, एक दिन में कोई सभ्यता नहीं बनती है, भारतीय सभ्यता को कितने साल हो गए, तो और काल क्या है, काल क्या है, मान लीजिए कि काल वो है जब बुद्ध मान लीजिए एक साधना कर रहे थे और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो काल जैसे वो ठहर गया, उस काल में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो उन तमाम चीजों को धर्मपाल अपने साहित्य में लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि यदि हम अपने आज और कल के किस तरह की चीज़ें थी, काल और सब पूरी चीज़ें बताएं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपके लिए है कि हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है, उस वर्तमान परिदृश्य में शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अलावा हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो मानवीय व्यवस्था है, हमारे जो मानवीय संबंध हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो साहित्य है, उस साहित्य को हमें अपने जीवन में किस तरह लेकर आना चाहिए, ताकि हम एक वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा आपने सुना है ना, कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नारा भी आपने सुना होगा, तो हमारा जो देश है उसकी जो महान परंपराएं हैं, महान संस्कृति है, महान जो साहित्य है, और उस साहित्य को, उन परंपराओं को, उन सभ्यताओं को, उस पूरी एक व्यवस्था, पूरे महाभारत में आप जाके देखेंगे कि राजा के सारे धर्म बताए गए हैं, हमारा साहित्य क्या कहता है, हमारा प्राचीन साहित्य क्या बात करता है, पुरानी राज्य जो व्यवस्था थी वो किस तरह से आज होकर आई है, और उसका आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिकता होना चाहिए। धर्मपाल केवल परंपरा की बात नहीं करते हैं, पर्यावरण की बात वो करते हैं, घुमंतु जो जनजातियां हैं, आपने आदिवासी जनजातियों के बारे में सुना होगा, घुमंतु जनजातियों के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ी बात वो बात करते हैं, भारतीय जो शिल्पकार हैं उसके बारे में वो बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं, सबसे बड़ी बात करते हैं कि जो जीव है, समानता की बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति को क्यों ज़्यादा मानते हैं कि वो महापुरुष है, महात्मा गांधी को क्यों मानते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के उपासक थे, तो उनको इसीलिए मानते हैं, विवेकानंद युवाओं में जोश भरने का काम करते थे, भारत की गौरव की बात करते थे, इसी तरह से धर्मपाल हर व्यक्ति को, हर जीव को, जीव में ईश्वर का तत्व मानते थे, है ना, कि हर व्यक्ति में, आज क्या चल रहा है पर्यावरण में, हम किस किस को बचाने की बात कर रहे हैं, पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को, है ना, जानवरों को, सबको बचाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो उस समय वो कहते थे कि चाहे बिल्ली हो, चाहे बंदर हो, चींटी हो, हमारे यहाँ ये परंपरा है
2: कौए हों, धर्मपाल जी ने जगह लिखा है कि इन सबको खाना खिलाने की, इन सबको पालने की, इन सबको संरक्षित करने की हमारे यहाँ पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उन सब में बताया गया है। आज हम उसी की बात कर रहे हैं, आज हम अपने पृथ्वी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं और स्वदेशी के बारे में बहुत जरूरी है आज के संदर्भ। वर्तमान परिदृश्य में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक ही, सबसे ज्यादा एक ही बात पर जोर है कि हम अपने स्थानीय शिल्पकारों को, कलाकारों को और जो काम कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा महत्व दें। वो सबसे ज्यादा अपने हाथ से बनाई हुई चीजों का प्रयोग करें। तो वो कहते हैं कि भारतीयता हमारे निजी जीवन व्यवहार और हमारी धार्मिक व्यवस्था में अभी भी, चाहे वह कुछ प्राणी स्वरूप हो, जीवंत है। वही धर्मपाल जी संस्कारों की बात करते हैं, हम रोज संस्कारों की बात करते हैं, उसके लिए पूछते हैं। और स्वदेशी की जो बात मैं कर रही थी कि स्वदेशी अत्यंत प्राचीन अवधारणा है, शायद जब से धरती पर जीवन है तभी से स्वदेशी का भाव और व्यापार है। हर चीज स्वदेशी है, मिट्टी से बनी हुई चीजें क्या है, है ना, हर चीज मतलब मैं स्वदेशीपन था। और आज हम स्वदेशी के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो धर्मपाल भी इस चीज को महत्व देते थे कि महात्मा गांधी ने 1916 में एक भाषण दिया था, तब उन्होंने स्वदेशी का नारा लगाया था कि स्वदेशी को अपनाना कितना जरूरी है, और उसी चीज को धर्मपाल जी भी बहुत महत्व देते हैं। और दूसरी चीजें जो ये आज के संदर्भ में जिस रूप में सारी दुनिया में हमारा देश आज खड़ा हुआ है और जिस शक्ति के रूप में उसकी पहचान है, और हम लौटते कब हैं, आज का जो विश्लेषण करना है तो हम लौटते क्यों हैं। इसलिए लौटते हैं कि हमें अपनी चीजों का पुनर्सर्जन भी करना है ना। हमेशा हर चीज को हम हर रोज आप एक ही ड्रेस नहीं पहनती हैं, दूसरी ड्रेस पहनती हैं ना, हर बार आप नई किताब पढ़ती हैं, नए विचार वो करती हैं, नई चीजें देखती हैं। क्यों देखती हैं, क्योंकि आपको उसमें कुछ ना कुछ नयापन चाहिए, कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ वैविध्य चाहिए, कुछ सुंदरता चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो बड़े बड़े जो विचारक और चिंतक होते हैं अपनी छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा और अपने जो महापुरुष हैं उनके जीवन के दृष्टांतों के द्वारा आपके सामने रखते हैं। उनका साहित्य पढ़ेंगे, उन्होंने इतने सारी नारद की कथाएं उसमें देकर अपनी बात को कहा है, बहुत सारी के पुरुष सूक्त में ये कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है, राम की कथा कहकर और महाभारत की कथाएं लिखकर। तो आप कैसे एक नीरस चीज को सरस कैसे बनाया जाए कि आप अपने संस्कारों को जाने, आप अपनी भारतीयता को जाने, आप अपने स्वदेशीपन को जाने, आप संस्कारों को जाने, परंपराओं को जाने, तमाम तरह की चीजों को आप जाने। तो चीजों को जानने का एक जरिया भी ये होता है कि जो जैसे आप कोई भी एक कहानी ले लेते हैं उसके माध्यम से, कहते ना पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे और बाद में कहते थे कि इससे क्या सार निकला, क्या उपदेश निकला, है ना, जो मॉरल ऑफ स्टोरी होता था कि क्या इसका वो निकला है, निष्कर्ष क्या निकला। तो ये इस तरह की चीजें, तो धर्मपाल के बारे में जब बहुत बड़ा साहित्य है उनका, तो जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं कि महात्मा गांधी क्यों प्रासंगिक है, प्रेमचंद क्यों प्रासंगिक है, धर्मपाल क्यों प्रासंगिक है, प्रासंगिक वही व्यक्ति होता है जो हमारी तमाम तरह की जो अवधारणाएं हैं और जो हमारी चीजें चल रही हैं उन चीजों को जब एक दूसरे के साथ उसका मेल करता है, उसमें साम्यता दिखाता है और उनके गुणों को जब आज के संदर्भ में आपके सामने रखता है तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा प्रासंगिक व्यक्ति माना जाता है। तो इससे पहले जब मैं काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि भाई राज व्यवस्था क्या थी, आज तो हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रह रहे हैं, लोकतंत्र है हमारा देश, पहले तो राजतंत्र की व्यवस्था थी। तो आप देखिए वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, महाभारत में, तमाम हमारे वेदों में, तमाम तरह के जो ग्रंथ हैं उसमें इतने तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतने नियम बताए गए हैं राजा के लिए कि आज के संदर्भ में तो कोई उनका पालन कर ले बहुत बड़ी बात है। तो वो चीजें आज हमारे लिए जरूरी है ना कि हम कैसे सीखें। तो अतीत हमारी बहुत बड़ी धरोहर होता है, ये हमारी चीजें बहुत बड़ी धरोहर होती है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे धर्मपाल को पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जब हम राज की बात करेंगे और व्यवस्था की बात करेंगे और वर्तमान की बात करेंगे और जब सीधा सीधा समाज हमारे साथ जुड़ा है, तो बिना इन ग्रंथों को पढ़े, इनकी विशेषताओं का पालन किए, बिना अपनी परंपरा की बात किए, बिना अपनी संस्कृति की बात किए, बिना अपनी सभ्यता की बात किए, बिना अपने धर्म और वैविध्यपूर्ण जो चीजें रही हैं उनकी बात किए बिना हम अपनी किसी भी व्यवस्था को, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, उसको हम समझ ही नहीं सकते। तो चीज़ों को समझने के लिए, उसको जानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम बार बार अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ, प्राचीन साहित्य की तरफ, अपनी परंपराओं की तरफ, अपनी सभ्यता की तरफ लौटें। और हमारे जो महापुरुष हैं, जो चिंतक हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ धर्मपाल जी ने जो काम किया है पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे ग्रामीण समाज हो, नगरीय समाज हो, ब्रिटिश समाज हो, उसके पहले का समाज हो, या जो हमारा साहित्य है, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जो शोध कार्य किया है, जो चिंतन किया है, जो मनन किया है और जो उसका सार लिखा है, जो किताब है धर्मपाल शोधपीठ द्वारा प्रकाशित की जा रही है या जो साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा, मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि आप जीवन में बहुत आगे जाने वाले हैं। इन किताबों की दुनिया में ऐसे महापुरुषों के, ऐसे चिंतकों के साहित्य की दुनिया में जब आप प्रवेश करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको भारत का एक जो महान स्वरूप, जिसकी कहानियां हम सुनते हैं, जिनके बारे में आज कहा जाता है, जिनकी बात की जाती है, उस भारत की सच्ची तस्वीर को आप इनके साहित्य के माध्यम से भी जान सकते हैं, उस समाज को जान सकते हैं। तो आज हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अतीत में एक बार जरूर झांकें और अतीत को लिखने वाले जो महान लोग हैं उनके साहित्य को जरूर पढ़ें। और जब मैंने धर्मपाल जी को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई, मैं अभिभूत हो गई, चकित हो गई कि हमारे बीच ऐसे ऐसे चिंतक हैं, ऐसे ऐसे लेखक हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च करने वाले लोग हैं जिन्होंने भारत की एक नई तस्वीर को आपके सामने रखा है। आप देखेंगे भारतीय समाज के जो विविध रूप हैं उसको जानकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

कार्यक्रम वागर्थ में आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शरीश का वक्तव्य। विषय था वर्तमान परिदृश्य और धर्मपाल। आज कार्यक्रम वागर्थ में इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वागर्थ। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

इस वक्त आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में हम लेकर उपस्थित होंगे अपना आज का विशेष कार्यक्रम, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज जो विषय हम आपके बीच लेकर आए हैं वो है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: तो निहारिका जी, हम बात कर रहे हैं नशे का जो दुरुपयोग है देश में और इसकी रोकथाम है, तस्करी, इस फील्ड पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं। तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई, आप इससे कैसे जुड़ी?
2: लगभग 12 वर्षों से मैं समाज सेवी के रूप में भोपाल शहर में काम कर रही हूँ और भोपाल शहर के ऐसे समुदाय में काम कर रही हूँ जिन्हें हम आमतौर पर बस्ती क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आम भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। तो खास तौर पर वहाँ के समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं और परिवार है, उनके साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ। जहाँ पर मैंने देखा कई बार बहुत सारे जो बच्चे और महिलाएं स्कूल से बाहर होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है। और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आती है।
1: आप इसमें काम कर रही, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है बाजार
2: में? जी हाँ, बिल्कुल।
1: इसके पीछे आप क्या मानती, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है जबकि सरकार इस पे रोक लगाती खासी?
2: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है। हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है। तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है, हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके जमीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है।
1: बिल्कुल, ये बात जी। एक बात आती है कि एक तो जब आप इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो लोग ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो कोई टारगेट लेके चलते हैं कि वो किन लोगों को नशे में लिप्त करेंगे? बच्चों को ही या युवा वर्ग को या लड़कियों को, ऐसा कुछ आपने स्पेसिफिक देखा या सभी लोग इसमें लिप्त होते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं क्या उनका कोई टारगेटेड ग्रुप है?
2: अधिकांश यदि मैं जिन एरिया में काम करती हूँ वहाँ की बात करूँ, क्योंकि अधिकतर जो जुड़ाव होता है वो बच्चों और युवाओं के साथ में होता है, यदि मैं उनके अनुभवों की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आया है कि बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं इन तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल है और वो नशे के आदि भी हैं, तो शायद उन्हें लालच देके अपने सर में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है। क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा। तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प किया क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी। जब आपके हाथ में नशा आता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई कर लूँ, कोशिश कर लूँ, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया और धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। तो युवा जो है जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो इस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
1: दो तीन चीजें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं, एक कारण उनका लालच। तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली में हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
2: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है। तो शायद इसलिए वो बच्चे उनका इजी टारगेट रहता होगा कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाएं खुलकर। अच्छा। तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण है, एक तो स्ट्रेस होने के कारण आप वहाँ जा रहे हैं, और दूसरा आपको नशा नहीं मिलने का जो स्ट्रेस है, क्योंकि आप जब एडिक्टेड हो जाते हो तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ही है। तो इन दो तरीकों से लोग उसमें जुड़ते हैं।
1: एक चीज और हम पे निकल के आती है कि जब आप, चूंकि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आप जब निकलते हैं तो ये खुद ब खुद वो इलाकों में आपको बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे या लड़कियां या बड़ी उम्र के लोग या पुरुष बड़े या महिला, उम्र को अगर दरकिनार करके बात करें तो हम बात करना चाह रहे हैं उस पर कि जो भी लोग नशे में लिप्त हैं तो किस तरह से वो आप पहले प्रथम दृष्टि आप कैसे उन्हें पहचानते हैं, या आप क्या तरीके अपनाते हैं जिससे ये लोग आपकी पहचान में या आप उन तक पहुंच पाए।
2: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है। तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है, फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत कर पाए। तो कई बार जनसंवाद तरीका होता है जहाँ पे लोग इन मुद्दों को बताते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वो हमें बताते हैं उनकी बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तब वहाँ से ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं। जैसे कई बार महिलाएं जब आती, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया, कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
1: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा कर, जो सबसे ज्यादा नशा आप जो आप देखते हैं, किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
2: ज्यादातर जो है शराब का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो यूज करते हैं, गांजा जो है वो यूज करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीजें समझ, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि यही, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे उपलब्ध, सलोचन है खास तौर पे। कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं।
1: तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए, तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो, या जो भी व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
2: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया। तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा। तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया, फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ में जुड़ा तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज़्यादा नशे का उपयोग किया और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा। तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है, तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते पीयर्स होते हैं उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। घर का माहौल है, यदि आपकी उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चों को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल देखता है वो अडॉप्ट करता है। तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरह की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे। तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छेड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुँचाना हुआ, लड़ाइयाँ करना। तो उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज़्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा। तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र हैं तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था, या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी, या उनके साथ में दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए। तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ हमने, और ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी वो जो बच्चा है वो बिल्कुल नशा नहीं करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा
3: मतलब इससे एक बात कह सकते हैं कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं और अभी तक मान लीजिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके आदी हैं, तो अगर वो काउंसलिंग तक पहुंचते हैं या आपसे या आप जैसी अन्य संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब एक कारण बन सकता है कि वो नशे से दूर हो जाए। जितनी बात आपकी हुई अपनी, जब आप इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या युवा हों, तो परिवार का क्या आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, या कई बार आपको लगता है कि परिवार भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाए, वो भरोसा कर पाते हैं आप पे जल्दी कि ये हमारे बच्चे को या इंसान का नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे, या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
2: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है। तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा। तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया, क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा, तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं, क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई ये चुनौती थी, लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं।
3: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है, या अभी काफी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफी बड़ी हुई है?
2: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है, तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं है कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे के उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा, जो हमारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं अलग अलग, उन पर भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएँ इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए एक ऐसे केंद्र हो,
3: जैसे काम मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के लिए।
2: बिल्कुल, ऐसे कुछ कुछ अभियान चल रहे हैं लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की जरूरत है। और खासकर जमीनी स्तर पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नजर आता है। दूसरा, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, जानकारियों का, वो एक मुझे कम नजर में आता है। तो इस तरीके की चीजें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की जरूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मतलब उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
3: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है, तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता हो कि उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
2: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो मैं देखती हूँ कि नशे के कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरह की गतिविधियां करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है कि यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है, जो खासतौर पर जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है। और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है, कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमें वहां पर नजर में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो है वो नज़र में। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पे जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
3: सॉल्यूशन जो ये समस्याएं आपको लगती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हो और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई, तो इन ये समस्याएं ना आए आपको, इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
2: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और खासतौर पर जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएं चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत जरूरी है।
3: शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है 12 साल की, एक उनकी किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं, तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने?
2: काफी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं, तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है। तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं, ताकि ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहां पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज से, तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पे हम बात करते हैं, और खासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं, और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहां सहज महसूस करे, और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है, वो सामने।
3: एक चीज़ तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है, और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
2: बिल्कुल है।
3: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे, या मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बताइए।
2: बिल्कुल, कोविड के समय हम लोगों ने हमारा एक ब्रोशर तैयार किया था काउंसलिंग के लिए, तो वहां पर हमारे पास कई बार केसेस आए, और वो ऐसे हाई प्रोफाइली सोसाइटी के ही लोगों के आए थे। तो क्योंकि स्लम एरिया में हमारा एक्सेस है, वहां लोग दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं, जो रहते हैं, वहां पर भी समस्या है। कई बार जब मैं बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ जो बच्चे पीजीज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, या जो तमाम दुकानें हमें नजर आती है, वहां बहुत बड़ा स्टूडेंट का क्राउड हमें नजर आता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति इससे परेशान है और जुड़ा हुआ है।
3: इनका क्या प्रमुख कारण होता है? ये तो सब तरह से सुविधाएं इनके पास, टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
2: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है। माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहां पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहां पर, कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को, जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इंजॉय करने का, तो वो इंजॉयमेंट के जो धन के रूप में वो को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते कि आपको सुविधाएं, आपको जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सब ओके हैं।
3: मतलब इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशे करने के अपने अलग कारण है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और एक बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से। प्रयास बहुत जरूरी है कि इस नशे को खत्म करा जाए, ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
2: बिल्कुल,
3: तो आपका ये जो आप साधुवाद हम आपका देंगे, जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम था, ये था नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ हमने ये कार्यक्रम करा इस विषय पर, और ये जो कार्यक्रम था इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: जो आओ डी बैरोस, ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संकटों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में

0: इंडियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखले वादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवुटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, राष्ट्र मात्र भूखंड नहीं, ये हमारी अनुभूति है, हमारी चेतना, हमारा अभिमान है। तभी तो हर भारतवासी गर्व से कहता है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, यही है हमारा अगला कार्यक्रम। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: झलकारी देवी का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर 1830 को हुआ था। ये वो इलाका था जहां आए दिन डाकुओं का आतंक रहता था, इसलिए आत्मरक्षा के लिए झलकारी के पिता ने उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र संचालन में निपुण किया था, ताकि समय पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। बचपन की यही शिक्षा आगे चलकर राष्ट्र के काम आई और रणभूमि में फिरंगियों से जूझने में सार्थक साबित हुई। झलकारी का विवाह महारानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के तोपची पूरन सिंह के साथ हुआ था। झलकारी भी महारानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज में शामिल हो गईं। झलकारी बाई ने रानी को फौज में सामग्री की अल्पता और तोपचियों की गद्दारी के राज से अवगत कराया, साथ ही शत्रु के किसी भी क्षण भीतर आने की संभावना और भविष्य के संकट बचाव के उपाय भी सुझाए। दुश्मन के आक्रमण के वक्त झलकारी ने स्वयं रानी का वेश धारण कर मोर्चा संभालने का प्रस्ताव रखा, ताकि छद्मवेश में रानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। झलकारी बाई जानती थी कि रानी के वेश में युद्ध करने का मतलब है मृत्यु को वरण करना, किंतु उनकी अद्वितीय स्वामी भक्ति और अटूट राष्ट्र प्रेम ने उन्हें आत्म बलिदान के लिए प्रेरित किया। योजना के अनुसार अदम्य साहसी और बलिदानी झलकारी प्राणों की परवाह किए बगैर टुकड़ी लेकर आगे बढ़ी, लेकिन दुर्भाग्य से पहचान ली गईं। झलकारी को देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा था कि यदि भारत की 1% नारियां भी उनकी तरह हो जाएं, तो अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। झलकारी देवी अंग्रेजी सेना से जूझती हुई उस जगह जा पहुंची जहां उनके पति पूरन सिंह अंग्रेजी सेना से मोर्चा ले रहे थे। लड़ाई के दौरान पूरन सिंह को तोप का गोला लगा और वे जीवित भस्म हो गए। झलकारी देवी पति की मृत्यु पर जरा भी विचलित नहीं हुई और बिना विलंब किए तोप का संचालन करने लगी। झलकारी देवी ने अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं की सेना से लोहा लिया था।
2: राम राम काका।
3: अरे आओ आओ राम रतन, कैसे हो? अरे वाह, आज तो विजया रानी भी आई है साथ में।
2: अरे अरे अरे, तू कहाँ भाग रही है? इतने आप...
3: अरे खेलने दो, बच्ची है, खुली जगह है, जरा दौड़ भाग करेगी और थक के बैठ जाएगी।
4: अरे बहुत शैतान हो गई है काका।
2: अरे का हुआ? अरे अरे देखा ना, हम मना कर रहे थे। अरे अरे फिर भागी? अरे रुक जा बेटा, रुक जा, सुनती नहीं है।
3: अरे ये तो सच्ची पूरी झलकारी हो रही है।
2: झलकारी जे नाम तो सुनो लग रहा हो कितने सरे। अरे हाँ, वे गांव के हरबोलों की कहानी में सुनो ये जे नाम।
3: ठीक पहचाना राम रतन, बुंदेलखंड की तो थी झलकारी, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में।
2: अच्छा।
3: हाँ बेटा, झलकारी उसी देवी का नाम है जिसने 1857 के संग्राम में स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया अपना।
2: वो कैसे? पूरी ही बात बताओ काका आप तो।
3: ठीक है। अरे बेटा दो चाय लगा यहाँ, और बिटिया के लिए एक ग्लास में दूध ले आ, और बिस्कुट भी।
5: काका हो, मैं देखता हूँ।
6: अरे काहे को तकलीफ कर रहे काका?
3: तकलीफ? अरे दूध तो तुम्हारे यहाँ का ही है, और झलकारी की कहानी सुनना है तो छोटी झलकारी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक थी झलकारी। झलकारी का जन्म लक्ष्मीबाई से 5 साल पहले झांसी के पास हुआ था, भोजला गांव में। सन 1830 22 नवंबर को भोजला के सदोव सिंह के घर में बधाए गाए जा रहे थे।
7: लक्ष्मी आई है नाना साहब, लक्ष्मी, हम तो बस नई पायल पहने
8: और हमारे नानी चुनरी
7: हीरे की बुंदा नहीं जाने।

0: अरे झलकारी अपने पिता की बहुत लाडली थी, पर उन दिनों डाकुओं के आक्रमण से लड़कियों वाले सारे पिता डरे रहते थे। इसलिए सदोग सिंह ने निर्णय लिया
1: हमारी झल्लो किसी के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि औरों की मदद करने में भी आगे रहेगी।
2: ये झल्ली बिटिया तनक आराम से, आज तुम आओ दूसरों दिन आए। अरे देख देख देख देख संभल के, अरे अरे अरे अरे अरे हाँ, अरे गिरते हो तो हाथ पैर टूटते हैं।
3: बाऊजी, पता है हम ना जंगल में बहुत अच्छी जगह देख के आए हैं निशाना साधने की। चलिए ना अभी सिखाइए, चलिए।
1: पर बेटा
3: चलिए ना
1: बेटी, कल
3: नहीं नहीं नहीं कल वाल नहीं, आज ही शुरू करना है बाऊजी।
1: अरे सदो भैया, ये नहीं रुकने वाली, चलो हम भी चलते हैं साथ में, देखें तो हमारी झल्लो बंदूक कैसे चलाती है।
3: कक्का देख ना हमारा निशाना, बताओ कौन सा आम गिरा है, बताओ बताओ। बम मारा, ये लो अब वो वाला गिराती हूँ। अच्छा अब मैं ऊंचा वाला गिराऊं, बटोर लो।
1: चल जल्लो, दिया बत्ती का समय होगा, चल घर चले,
0: चलो हम भी चलते हैं साथ में।
3: अच्छा बाऊजी, हम कढ़ी रोटी बना रहे हैं।
0: देख देख संभाल के, अरे अरे अरे अरे।
1: वाह सदो भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।
0: इधर झलकारी बड़ी हो रही थी, शस्त्र विद्या में पारंगत हो रही थी, और झांसी में बुंदेलखंड की वीरांगनाएं भी बड़ी हो रही थी।
1: झल्लो तू कहाँ चलती बिटिया?
3: बाऊजी आप आराम कर लो थोड़ी देर, मैं गैया हाँक लाती हूँ। चल चल कमली, गौरी श्यामा चल।
4: है

0: मुझे डराएगा, मुझे डराएगा। ये ले, ये ले। मेरी गाय पकड़ेगा। ये ले, ये, ये ले।
1: सदो भैया, सदो भैया, झल्लो को चीते ने घेर लिया है।
2: हे राम, कहाँ कह रहे तुम, कहाँ कह रहे हो? तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमारी बिटिया के लाने। तो कोई बचा लो, हे राम, हे राम, कोई बचा लो हमारी बिटिया के। हे झल्लो बिटिया, झल्लो बिटिया, झल्लो बिटिया।
0: हाँ बाबूजी।
2: हे राम, तुमने क्या कर दो, एक चीते को मार दो। हे राम, तुमने तो कमाल ही कर दो।
0: हाँ बाबूजी, बस चार बार में ही काबू कर लिया था हमने, और पांचवे में तो चित।
3: बा बेटी बा, हमारे गांव को नाम कर दो तूने राम दही। अरे इसमें तो माँ की शक्ति है। वाह सदो भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।

0: सदुवा, ओ सदुवा।
1: अरे मम्मा, आवा इते आ।
0: अपनी जल्लों को लोग आसपास के गांव तक जाने लगे हैं, कछु पतो है? भोजला गांव झल्लों के नाम से जानो जात है, झांसी तक खबर पहुंच गई है।
1: सच्ची मम्मा?
2: देख बेटा, बिन माँ की बच्ची है सो हमारी लोगन को फिकर करने पड़े। अब ब्याह के लायक हो गई है अपनी झलकारी।
1: हाँ अम्मा, मैं भी न जाने का भूल ही गया था, अब ढूंढाई लगानी पड़ेगी दूल्हे।
0: अरे हम का ऐसे ही आए, एक भलो मोड़ा देखो है अम्मा ने झांसी में।
1: झांसी में?
0: हाँ, पूरन सिंह नाम है, और तो और रानी की सेना में तोपची है, तोपची।
2: तुम कहो तो बात बढ़ाएं बेटा।
1: हाँ अम्मा, अब आप लोगन से अच्छा वो सोचा था, हमारी झल्लों के तो भाग खुल जाएंगे। हाँ, आप लड़का दिखा के बात पक्की कर लो, बस अम्मा मोड़ी को ब्याह हो जाए।

0: अपना ध्यान रखना, हम अकेला छोड़े जा रहे हैं आपको। अम्मा पाऊजी को ध्यान रखियो।
1: नहीं बेटा, तू तो हमारा मान है। बेटा पूरन, झलकारी के बाबूजी ने बहुत अच्छे से अच्छी विद्या देने की कोशिश करी है अपनी झल्लों को, बिन माँ के पाला है। जे ध्यान रखियो, हमारी झल्लो पूरे गांव की लाडली है। अरे गांव को बेटा है जे बेटा, बहुत बहादुर।
2: आप चिंता नहीं करें अम्मा, आखिर झांसी जा रही है आपकी झल्लो। को पूरा सम्मान मिलेगा बाबूजी, आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी।

0: प्रणाम माँ। प्रणाम बाऊजी।
1: अरे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। देख बेटा, मैंने और पूरन के बाऊजी ने उपहार में तुझे सोना चांदी नहीं दिया। हम चाहते हैं जो मान तुमने भोजला को दिलाया वो बेकार नहीं जाए। बेटा तू अब झांसी में है, जिसकी बहु बेटियों के असली आभूषण यही है।
0: धन्यवाद माँ। माँ मैं इतनी खुश हूँ ये तलवार का उपहार पाकर कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। मैं अभी इन्हें दिखाकर आती हूँ माँ।
1: जरूर जा बेटा, बाहर पूरन घोड़े पर तुम्हारी राह देख रहा है। वो अपने बलदेव कक्का है ना, उनसे घोड़ा मांग के लाया है। कह रहा था झलकारी सवारी करके देख ले तो अपन ही रख लेंगे।
0: अब हम चलते हैं।
1: जा बेटा जा।
0: जोहार माँ। जोहार बाऊजी।
2: जोहार बेटा।

0: अरे बस भाई, नदी आ गई, यहाँ रुकते हैं।
1: तुम तो बड़ी अच्छी थे सवारी जानती हो झलकारी।
2: जी, बाऊजी ने पूरी शिक्षा दी है हमें। हम तो तीर तलवार और बंदूक चलाना भी जानते हैं। एक बात कहें आपसे।
1: कहो।
2: हम रानी जी को देखना चाहते थे बचपन से ही।
1: इसमें क्या बड़ी बात है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बाऊजी की शिक्षा बेकार मत जाने दो। तुम आज ही चलो किले, रानी जी से मिलवा भी देंगे और तुम्हारे सेना में भर्ती होने की बात भी कर लेंगे।
2: जी सच में? क्या हम सच्ची में भर्ती हो सकते हैं?
1: क्यों नहीं, तुम तो सभी कलाओं में निपुण हो और तुम्हारे जैसी वीरांगना की तो झांसी को जरूरत है झलकारी।
2: पर भाई साहब रखेंगे हमें?
1: भाई साहब वीरों का बहुत मान रखती है और उन्हें जरूरत भी है।
3: ये वो समय था जब झांसी की गलियों में आजादी की लहरें उठना शुरू हो रही थी। 7 मार्च 1854 को डलहौजी ने झांसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एक तरफ मेजर डगलस ने झांसी का अंग्रेजी बंदोबस्त शुरू किया, दूसरी तरफ रानी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी।
1: जोहार भाई साहब।
4: आओ आओ पूरन, तो ये है झलकारी।
1: जी भाई साहब, झलकारी आपके दर्शन की बड़ी इच्छा रखती थी, सो लेता आया।
4: झलकारी, तुम्हारी बहादुरी की बहुत बातें सुनी है हमने। तुम्हें अपना समय यूं ही नहीं गवाना चाहिए। अपने गुणों का उपयोग झांसी की सेवा में नहीं करना चाहोगी?
2: हमारे सौभाग्य भाई साहब।
4: ये कुछ उपहार है तुम्हारे लिए झलकारी। पहली बार देखा है तुम्हें, रख लो।
2: भाई साहब, सेना में भर्ती करके आपने हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार तो दे ही दिया। बस अब आशीर्वाद दें कि अपने कर्तव्य को निभा सके। झांसी की आन बान के लिए हमारा सब कुछ न्योछावर है भाई साहब।
4: झलकारी, तुम जैसे वीरों की निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर ही तो मैंने स्वराज्य की घोषणा की है। जाओ और कल से ही सैन्य परीक्षण के लिए बड़ा बाग आ जाना।
3: झांसी में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। लोगों ने युद्ध की तैयारी को उत्सव में बदल दिया था। बच्चा बच्चा झांसी के लिए मरने को तैयार था। औरतों ने मेहंदी वाले हाथों में बंदूक उठा ली थी। इधर झलकारी की रात काटे नहीं कट रही थी। भोर होते ही तैयारी करके उतावली झलकारी बड़ा बाग जा पहुंचे।
4: सुंदर मुंदर, यहाँ आओ। काशी, चुन्नी और कमला तुम, झलकारी तुम भी यहाँ आओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ आज से अपने अपने अस्त्र संभालो और उसी का अभ्यास करो। युद्ध में किस शस्त्र का कैसा उपयोग करना है ये नीति हम अभी तय करेंगे।
5: जी भाई साहब।
4: तो शुरू हो जाओ। काशी, तुम तो लाठी में पारंगत हो। सुंदर, तू कटार रख। कमला, तू तीर कमान रखना। मुंदर बल्लम का कमाल करेगी। और झलकारी, तू तो बंदूक रख जिसमें तेरा निशाना अचूक है। जरूरत पड़ने पर तुझे तोप भी चलानी पड़ेगी।
5: जी भाई साहब।
4: तुम सब मेरी ही नहीं पूरी झांसी की हिम्मत हो। हमें जल्दी ही युद्ध भूमि में उतरना है।
5: झांसी का मान सर आंखों पर, अपना खून बहा देंगी पर झांसी नहीं देंगी।

0: सेना में सैनिकों की भर्ती हुई और युद्ध का जोरदार अभ्यास चला। प्रधानमंत्री, दीवान, सेनापति, इन सब के साथ महिला सैनिकों की टोली और आम जनता की पूरी तैयारी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू ही क्रांति की चिंगारी झांसी तक आ पहुंची। 6 जून को झांसी में क्रांति का बिगुल बज उठा। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया। घमासान युद्ध से हालात बिगड़ते जा रहे थे। अंत में आपात बैठक बुलाई गई।
1: शत्रु का दबाव हम पर बढ़ता ही जा रहा है, स्थिति नाजुक लगती है।
2: जी भाई साहब, हमारे सैनिकों की संख्या कम होती जा रही है।
3: भाई साहब की जय। एक महिला सैनिक आपसे मिलना चाहती है।
1: अंदर भेजो।
4: जोहार भाई साहब, एक विनती थी आपसे।
1: कहो झलकारी।
4: भाई साहब, एक तो हमारे सैनिक बहुत कम हो गए हैं, दूसरी ओर हमारे तोपचियों में कुछ गद्दार हैं जो अंग्रेज सैनिकों पर निशाना ही नहीं साधते, जिससे वो अंग्रेज बचकर निकल जाते हैं।
1: हम जानते हैं, पर तुम क्या कहना चाहती हो झलकारी?
4: भाई साहब, इस आक्रमण की घड़ी में किले की दीवार कभी भी टूट सकती है, फिर तो आमने सामने युद्ध होगा।
1: हमें तो हर हाल में तैयार रहना है।
4: पर ऐसे में तो आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है भाई साहब।
1: वो कैसे?
4: छलावे से।
1: छल से?
4: जी भाई साहब, हमारी और आपकी कदकाठी एक सी जो है, सो हम आपके भेस में अंग्रेजों को दूर ले जाएंगे अपने पीछे, और इधर आप पीछे के रास्ते सुरक्षित निकल जाइएगा।
1: पर इसमें तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है झलकारी।
4: हमसे कहीं ज्यादा आपकी जान जरूरी है झांसी के लिए। आप फिर से सेना को संगठित करके लड़ तो पाएंगे अंग्रेजों से। बस अब आज्ञा दे भाई साहब।
1: तुम्हारी ये हिम्मत और बहादुरी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे झलकारी।

0: योजना के अनुसार रानी घुड़साल वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। इधर झलकारी ने रानी की तरह श्रृंगार किया और लड़ते लड़ते छावनी जा पहुंचा।
1: कौन हो तुम?
2: रानी।
1: कौन रानी?
2: रानी लक्ष्मीबाई।
1: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई?
2: हमें तुम्हारे जनरल से मिलना है।
3: जनरल? जनरल हीरोज और स्टुअर्ट यहीं आ रहे हैं।
4: Who are you? कौन है तुम?
2: रानी लक्ष्मीबाई।
4: ओह, तो तुम रानी है। I must say, very beautiful.
1: लक्ष्मी बाई पकड़ी गई, झांसी की रानी पकड़ी गई, झांसी की रानी पकड़ी गई।
3: राम राम सरकार, मैं दुल्हाजू।
4: देखो दुल्हाजू, तुम्हारा रानी।
3: अरे अरे नहीं नहीं सरकार, ये तो झलकारी है, झलकारी कोरिन।
4: What?
3: जी, अरे सरकार, ये तो महिला सैनिक है, तोपची पूरन की पत्नी। उनवाओ फाटक पर आपके कई सारे सिपाहियों को इसी ने मौत के घाट उतारा था।
2: अरे पापी, तुझे लाज नहीं आई दुल्हाजू? पहले तो ओरछा फाटक से गोरों को घुसा दिया, तब मन नहीं भरा तेरा गद्दार, फिर भी दोगलापन कर रहा है नमक हराम। तू मरेगा और पूरी झांसी थूकेगी तुझ पर।
4: तुमने हमको धोखा दिया झलकारे।
2: धोखा? अरे तूने तो हमारे पूरे देश को धोखा दिया है।
4: तुमको हम गोली से उड़ाएगा।
2: हम मरने से नहीं डरते। डाक गोली, डाक।
5: सर, she's mad.
4: No, no, no, Stuart. This is serious. One person ladies भारत का ऐसा हो गया तो हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। सिपाही, बंद कर दो इसे डंबो में।
3: राम राम राम। कैद कर लिया झलकारी को दुष्टों ने।
0: अरे जिसके सर पर खून सवार, दिल में स्वाधीनता की चीत्कार, ऐसी देवी झलकारी को कोई पहरा रोक सकता था भला?
3: फिर क्या हुआ?
0: अरे फिर क्या, रात को ही भाग निकली वो तंबू से और दूसरे ही दिन पति पूरन के साथ मोर्चा संभाल लिया।
4: देखो झलकारी, that lady is there.
2: ये ले जनरल।
1: झलकारी, पूरन भैया गिर गए।
2: हे राम,
6: अब झांसी के नाम का सवाल है झलकारी, झांसी की रक्षा करना मेरी जय भवानी।
2: मैं आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, आपकी तरह ही झांसी की रक्षा करूंगी। जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: अपने बगल में गिरकर दम तोड़ चुके पति के पास ही लड़ती रही झलकारी, दागती रही गोले झांसी की शान के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ती रही और शत्रुओं के नाक में दम कर दिया।
3: फिर झलकारी का क्या हुआ काका?
0: अब ठीक ठीक तो पता नहीं भैया, कोई कहता है अंतिम सांस तक गांव में रही और कोई कहता है कि उसने अंतिम सांस वहीं मोर्चे पर लड़ते लड़ते ली।
3: वाह वाह वाह वाह वा। जय हो ऐसी देवी की।
0: अरे ऐसी न जाने कितनी झलकारी हुई जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया।
3: ठीक कहा काका, आपको बड़ा धन्यवाद जो इतनी अच्छी बातें बताई। अब जब फिर आए तो किसी और के बारे में सुनेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं हम काका।
0: हाँ जरूर जरूर, अब मैं भी लगता हूँ काम में।
3: अरे चल रही झलकारी, जो तेरी भाग दौड़ खत्म हो गई हो तो चल चल चल चल। राम राम काका।
0: हाँ राम राम बेटा, राम राम।

0: ये थे राष्ट्र अभिमान के स्वर, देश की गौरव गाथा कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: मूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं, लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो मित्र स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बंबई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर, एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी माता एक बेहद सरल और ममतामयी महिला थीं। इस तरह हबीब के भीतर पेशावर की पठानी छवि और छत्तीसगढ़ की तरलता का एक अनूठा संगम बचपन से ही आकार ले रहा था।
1: बचपन में हबीब का नाम हबीब अहमद खान था। रायपुर की सेंट पॉल्स स्कूल के आसपास की गलियों में जब वो घूमते तो उनका ध्यान किताबों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले तमाशों, रामलीला, नाचा की मंडलियों और सूफी संतों की कव्वालियों पर रहता। वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा के कार्यक्रमों को देखा करते थे।
0: जी हाँ, और यही वो समय था जब उनके कान लोक धुनों को पकड़ रहे थे। उनके बड़े भाई को शायरी का शौक था, जिससे प्रभावित होकर हबीब ने भी बहुत कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वे अपनी लिखी गजलें और नज्में दोस्तों को सुनाते तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया तनवीर। तनवीर यानी रोशनी या आभा। किसे पता था कि रायपुर की गलियों में अपनी कविताओं से रोशनी बिखेरने वाला ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया के रंगमंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
1: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनके मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया, लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
0: और वो बड़ा कैनवास था बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: अंग्रेजों भारत छोड़ो,
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: अंग्रेजों।
0: 22 साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
1: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
0: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
1: बलराज साहनी जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें यह सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
0: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात्य नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
1: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे, लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला जिसका कोई पारंपरिक नायक या नायिका नहीं थी। इस नाटक का नायक था खुद आगरा का बाजार।
0: और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? हबीब साहब ने इस नाटक के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंजे हुए कलाकारों को नहीं लिया। वे सीधे दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में गए। वहां से उन्होंने ककड़ी बेचने वाले, पतंगबाज, कबाड़ का कारोबार करने वाले और यहां तक कि असली भीख मांगने वाले फकीरों को पकड़ा और उन्हें मंच पर ला खड़ा किया।
1: समीक्षकों ने कहा कि ये पागलपन है, ये अनपढ़ लोग मंच पर क्या अभिनय करेंगे। लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था, मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी। पतंगे उड़ रही थी और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा, तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
0: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातों रात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए, लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
1: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
0: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहाँ बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल ब्रेख्त के काम को बहुत करीब से देखा। ब्रेख्त का एपिक थिएटर और उनका एलिमिनेशन इफेक्ट यानी दर्शकों को नाटक में पूरी तरह डुबोने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने हबीब साहब को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: लेकिन दिलचस्प बात देखिए श्रोताओं, यूरोप की इन विश्व प्रसिद्ध एकेडमियों में 3 साल बिताने के बाद भी हबीब साहब जब भारत लौटे तो शेक्सपियर या ब्रेख्त के नाटकों की अंधी नकल लेकर वापस नहीं आए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, लंदन और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा, जहां असली कला अब भी जिंदा है।
0: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
1: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
0: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
0: इन हीरों में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब वे मंच पर आती थीं तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
1: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे, वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे, अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
0: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था, उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
1: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
0: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु को चार अजीबोगरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
1: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल पहुंच गए। वहाँ यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
0: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरण दास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
1: श्रोताओं, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे, वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
0: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा, बल्कि वह विभाजन के दर्द से कराहते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं, माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलीशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
1: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
0: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ, दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
1: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
0: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
1: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसके कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
0: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
1: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
0: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहां रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
1: और आप जानते हैं श्रोताओ, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 24 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहां की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहां की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
0: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए
1: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालीदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
0: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
1: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था, अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
0: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है, कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
1: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों की तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
0: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
1: मैं थी आपके साथ स्वाति।
0: अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। बने रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद कहते थे, नया भारत गढ़ो, पर कैसे? अनगिनत जनता की भूख मिटाकर, उन्हें शिक्षित कर नया भारत गढ़ना आसान काम नहीं। हमारा राष्ट्र गरीब है, सबकी भूख मिटाने के लिए हमें धन चाहिए, पर क्या रोटी के टुकड़ों से हमारी समस्या हल हो सकेगी? इतने वैभवशाली अमेरिका और दूसरे उन्नत राष्ट्रों के लोगों को क्या मन की शांति और सुख मिला है? उन लोगों में कितने ही लोग आज धन होने के बावजूद घोर निराशा के शिकार बने हुए हैं। जीवन में कुछ भी अर्जन करने योग्य दिखाई न देने पर वे उद्देश्यहीन भटक रहे हैं।
1: स्वामी जी ने ये सब देखा था, महसूस किया था। वे कहते थे, हमें फौजी सामर्थ्य चाहिए, पर अपनी सुरक्षा के लिए, न कि पड़ोसियों को लूटने के लिए। उसी प्रकार हमें धन चाहिए, हमारे गरीबों का पेट भरने के लिए। सिर्फ अपने लिए धन कमाना हमारा राष्ट्रीय आदर्श नहीं है।
0: और सर्वोपरि हमें चाहिए शांति। भला वो कौन सी वस्तु है जो हमें शक्ति और समृद्धि के साथ शांति भी दे सकेगी? शायद विवेकानंद साहित्य में हमें उस रास्ते की चाबी मिले। समाज के बारे में स्वामी जी का विचार था।
2: पहले लोग ये भी कहते थे कि अगर साधारण जनता में शिक्षा का प्रसार होगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा, विशेषकर भारत में। हमें समस्त देश में ऐसे पुराने सठियाए बूढ़े मिलते हैं जो सब कुछ साधारण जनता से गुप्त रखना चाहते हैं। इसी कल्पना में वे अपना बड़ा समाधान कर लेते हैं कि वे सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं, अथवा स्वार्थ से अंधे होकर मुट्ठी भर अमीरों के विलास के लिए लाखों स्त्री पुरुष अज्ञानता के अंधकार और अभाव के नरक में पड़े रहे, क्योंकि उन्हें धन मिलने पर या उनकी विद्या सीखने पर समाज डावाडोल हो जाएगा? समाज है कौन, वे लोग जिनकी संख्या लाखों है, या आप और मुझ जैसे 10-5 उच्च श्रेणी वाले, जिस जाति की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है वो जाति उतनी ही उन्नत है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हमारे समाज सुधारकों को तो घाव के स्थान का भी ज्ञान नहीं है।
1: स्वामी जी ने बार बार एक ही चीज की जरूरत को महसूस किया था, और वो है शिक्षा।
2: केवल शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहां के गरीबों के भी अमन चैन और शिक्षा को देखकर अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। ये अंतर क्यों हुआ? उत्तर में पाया, शिक्षा से। अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग ये भाव खो बैठे हैं, उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी। बस फिर वे अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है, शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही हो जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करके बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। भारत में बस यही करना है।
0: जनता को शिक्षित करना आसान काम नहीं, पाठशाला भर खोल देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा को रुचिकर बनाना होगा, जरूरत पड़ने पर हमें उनके पास पहुंचना होगा।
2: मेरी योजना है भारत के इस जनता समूह तक पहुंचने की। हमें अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित की हुई योजना के अनुसार चलना होगा, अर्थात सब आदर्शों को धीरे धीरे जनता में पहुंचाना होगा। उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाइए, अपने बराबर उठाइए, उन्हें लौकिक ज्ञान भी धर्म के द्वारा दीजिए। मान लो इन तमाम गरीबों के लिए तुमने पाठशालाएं खोल भी दी, तो भी उनको शिक्षित करना संभव ना होगा। कैसे होगा? 4 बरस का बालक तुम्हारी पाठशाला में जाने की अपेक्षा अपने हल बखर की ओर जाना अधिक पसंद करेगा, वो तुम्हारी पाठशाला ना जा सकेगा। पर यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद पहाड़ के पास पहुंच सकता है। मैं कहता हूं कि शिक्षा स्वयं दरवाजे दरवाजे क्यों ना जाए। यदि खेतीहर का लड़का शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो उसके हल के पास या कारखाने में अथवा जहां भी हो वहीं क्यों ना भेंट की जाए, जाओ उसी के साथ उसकी परछाई के समान। गरीबों को शिक्षा प्रायः मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का भी समय नहीं आया है, तुम लोग कुछ धन इकट्ठा कर एक कोष बनाने का प्रयत्न करो। शहर में जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं वहां एक मिट्टी का घर और एक हॉल बनाओ। कुछ मैजिक लैंटर्न, थोड़े से नक्शे, ग्लोब और रासायनिक पदार्थ इकट्ठा करो। हर रोज शाम को वहां गरीबों को, यहां तक कि निम्न समुदाय को भी एकत्र करो। पहले उनको धर्म के उपदेश दो, फिर मैजिक लैंटर्न और दूसरे पदार्थों के सहारे ज्योतिष, भूगोल आदि बोलचाल की भाषा में सिखाओ।
1: स्वामी जी किताबी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, वे चाहते थे बुनियादी शिक्षा। इसी शिक्षा पर बाद में गांधी जी ने भी जोर दिया था।
2: तुम लोगों का अब काम है प्रांत प्रांत में, गांव गांव में जाकर देश के लोगों को समझा देना क्या आलस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा विहीन, धर्म विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझा कर कहो, भाई सब उठो जागो, और कितने दिन सोगे। और शास्त्र के महान सत्यों को सरल करके उन्हें जाकर समझा दो। सभी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। निम्न समुदाय तक को इस अग्नि मंत्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ जीवन के अत्यावश्यक विषयों का उपदेश दो। ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वो भी कोई शिक्षा है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।

0: हमारी 50% नारियों के शिक्षित हुए बिना वो कैसे संभव हो पाएगा?
1: इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित्त सत्ता सर्वभूत में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया बोलो तो? स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियां बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वो देश, वो जाति न कभी बड़ी बन सकी और ना कभी बड़ी बन ही सकेगी। महामाया की साक्षात मूर्ति, इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है? उनकी समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, पर उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुमसे बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। त्रिजाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? क्या तुम भगवान हो? दूर हो।
2: स्त्रियों को शिक्षित करना होगा, चरित्र गठन और नीति शिक्षा देनी होगी, तभी उनकी संतानें भी शिक्षित और चरित्रवान होंगी, स्वामी जी ने कहा है।
1: अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं होंगी, धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी, यही एकमात्र पथ है। हमारी नारियों को आधुनिक भावों में रंगने जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो वे सब असफल होंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। हिंदू स्त्री के लिए सतीत्व का अर्थ समझना सरल ही है, क्योंकि ये उसकी विरासत है, परंपरागत संपत्ति है। इसलिए सर्वप्रथम ये ज्वलंत आदर्श भारतीय नारी के हृदय में सर्वोपरि रहे, जिससे वे इतनी दृढ़ चरित्र बन जाएं कि वे चाहे विवाहित हों या कुमारी, जीवन की हर अवस्था में अपने सतीत्व से तिल भर भी डिगने की अपेक्षा जीवन की निडर होकर आहुति दे दें। साथ साथ महिलाओं को विज्ञान एवं अन्य विषय, जिससे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाएं। देश की स्त्रियों का जीवन इस प्रकार गठित हो जाने पर ही तो तुम्हारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा।

0: अशिक्षितों को मौका देना होगा। सदियों से उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तभी स्वामी जी लिखते हैं,
1: स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी संतानों द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। कुछ विनाश न करो। मूर्ति भंजनकारी सुधारक लोग संसार का उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और देखो मामला कहां तक जाता है। यदि सहायता ना कर सको तो अनिष्ट मत करो। जो जहां पर है उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। तुम क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं, नहीं तुम नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा लाभ करता है। तुम्हारा कर्तव्य है सुयोग देना और बाधा दूर करना।
2: सभी को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र विचार विकसित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
1: जीवन में मेरी सर्वोच्च अभिलाषा यही है कि एक ऐसा चक्र प्रवर्तन कर दूं जो उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को सबके द्वार द्वार पहुंचा दे और फिर स्त्री पुरुष अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर ले। विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन उन्नति और कुशल क्षेम का एकमेव साधन है। जहां ये स्वतंत्रता नहीं है वहां मनुष्य उस जाति या राष्ट्र की अवनति निश्चय होगी। जैसे मनुष्य को सोचने, विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान पान, पोशाक पहनावा, विवाह शादी, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, जब तक कि वो दूसरों को हानि न पहुंचाए।
0: भारतीयों को सबल बनना होगा। बल केवल दैहिक नहीं, मानसिक दृढ़ता भी चाहिए।
1: मैं तुमसे कहता हूं, इसी समय हमको बल और वीर्य की आवश्यकता है। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ ना हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि ये कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना और यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूं। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से लोगों को मनुष्य की हीन अवस्था का ही ज्ञान कराया गया है। अब उनको आत्म तत्व सुनने दो, ये जान लेने दो कि उनमें से नीचे के नीचे भी आत्मा विद्यमान है। वो आत्मा जो न कभी मरती है न जन्म लेती है।
0: स्वामी जी ने वेदांत को अच्छी तरह समझा था। वे उसे जन जन में व्याप्त कर देना चाहते थे। वेदांत किसी एक वर्ग में सीमित ना रहे।
1: जहां भी बुराई दिखाई देती है वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एक तत्व पर विश्वास किया जाए तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है। वेदांत के इन महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है। ये केवल अरण्य में अथवा गिरी गुफाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे। वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना मंदिरों में, दरिद्रों की कुटियों में, मछुओं के घरों में, छात्रों के अध्ययन स्थानों में, सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा होगी और ये काम में लाए जाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक संतान चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो, उनकी पुकार सबके लिए है। इनका अवलंबन करो, इनकी उपलब्धि कर इन्हें कार्य में परिणित करो। बस देखोगे भारत का उद्धार निश्चित है।
2: वे दलितों के मसीहा थे। दलितों की जरूरतों को वे सबसे ज्यादा महत्व देते थे।
1: यदि स्वभाव में समता ना भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात दलितों के लिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो एक दलित के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण है कि जिसकी बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता प्रकृति के द्वारा नहीं हुई है उसके लिए अधिक सहायता करनी होगी। इन लोगों को उठाना होगा, इन्हें अभयवाणी सुनानी होगी, बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे समान सब में अधिकार है।
0: दलितों को सुविधा देने का मतलब उच्च वर्ण को दबाना नहीं। स्वामी जी ने इससे वर्ण संघर्ष की आशंका जताई थी।
1: उच्च वर्णों को नीचे उतार कर इस समस्या की मीमांसा न होगी, किंतु नीची जातियों को ऊंची जातियों के बराबर उठाना होगा। उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दूसरा छोर निम्न समुदाय, और संपूर्ण कार्य निम्न समुदाय को उठाकर ब्राह्मण बनाना है। जातियों में समता लाने के लिए एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्णों का बल और गौरव है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि गरीब किसान मजदूर और धनवानों के बीच परस्पर कहीं जाति विरोध का बीज ना पड़ जाए।
2: किसी को भी अधिक सुविधा ना मिले, यही सही मायने में साम्यवाद होगा जिसमें स्वामी जी का विश्वास था।
1: विशेष अधिकार का भाव मानव जीवन का विष है। जब कभी विशेष अधिकार तोड़ दिया जाता है तब जाति को अधिकाधिक प्रकाश तथा प्रगति उपलब्ध होती है। किसी को रंच मात्र विशेषाधिकार नहीं है। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग स्वभावता सक्षम होने के कारण दूसरों की अपेक्षा अधिक धन संग्रह कर ले, किंतु धन प्राप्त करने के सामर्थ्य के कारण वे उन लोगों पर अत्याचार और अंधाधुंध व्यवहार करें जो उतना अधिक धन संग्रह करने में समर्थ न हो, तो यह कानून का अंग नहीं है और संघर्ष इसके विरुद्ध हुआ है। अन्य के ऊपर सुविधा के उपभोग को विशेषाधिकार कहते हैं और इसका विनाश करना युग युग से नैतिकता का उद्देश्य रहा है। यह कार्य ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति साम्य और एकत्व की ओर है तथा जिससे विविधता का विनाश नहीं होता। इस प्रकार अपने विशेषाधिकारों तथा अपने भीतर की उस प्रत्येक वस्तु को जो विशेषाधिकार के लाभ में सहायक है रौंदते हुए हम उस ज्ञान के लिए प्रयास करें। इससे समस्त मनुष्य जाति के प्रति अनन्यता की भावना पैदा हो।
0: उच्च वर्ग के लोग अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते, ये पतन की राह है। ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है।
1: भारत के पतन और दारिद्र्य दुख का प्रधान कारण यह है कि घोंघे की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्यतर दूसरी मानव जातियों के लिए जिन्हें सत्य की तृष्णा थी अपने रत्नों का भंडार नहीं खोला था। लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परम आवश्यक है कि वो अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे और इसके बदले में वे जो कुछ दे सकें उसे सहर्ष ग्रहण करें। विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु।
2: संसार की समस्त जातियां लेन देन के सिद्धांत मानकर आगे बढ़ी है। एकांत और अकेले जीने की प्रवृत्ति खतरनाक है। स्वामी जी मेल मिलाप लेन देन की बात करते हैं।
1: आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। क्या समता स्वतंत्रता कार्य कौशल पौरुष में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या उसी के साथ धर्म विश्वास संस्कृति और स्वाभाविक वृत्ति में हिंदुओं की परम मर्यादा पर जमे रह सकते हो? आपके लिए यह नितांत आवश्यक है कि अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करने और अक्सर निरर्थक बातें बनाने के स्थान पर आप अंग्रेजों से नेताओं की आज्ञा का तुरंत पालन, ईर्ष्याहीनता, अथक लगन और अटूट आत्मविश्वास की दीक्षा प्राप्त करें। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा पालन करना सीखना चाहिए। जब तक हिंदू ईर्ष्या से बचना और नेताओं की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखता उसमें संगठन की क्षमता नहीं आएगी। भारत को यूरोप से बाह्य प्रकृति की विजय सीखनी होगी। हमने मानव जाति के एक पहलू का विकास किया है तो उन्होंने दूसरे का। चाहिए ये कि दोनों का मेल हो।
0: कुछ मूलभूत मानवीय गुण हैं जिनका विकास जरूरी है, स्वामी जी ने बताया है।
1: प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। पहला, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरा, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। और तीसरा, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हों या कर रहे हों उनकी सहायता करना। सर्वप्रथम तो हमें उस चिन्ह ईर्ष्या रूपी कलंक को धो डालना चाहिए। किसी से ईर्ष्या मत करो। भलाई के काम करने वाले प्रत्येक को अपने हाथ का सहारा दो। तीनों लोकों को जीवन मात्र के लिए शुभ कामना करो। विशाल बनना, उदार बनना, क्रमशः सार्वभौम में उपनीत होना, यही हमारा लक्ष्य है। अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल प्रेम, निश्चलता और धैर्य की। इस समय चाहिए प्रबल कर्म योग, हृदय में अमित साहस, अपरिमित शक्ति।
2: अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी होंगी। घर को हवा और रोशनी चाहिए। आंखें खोलकर अपने आसपास के जरूरतमंदों को निहारना होगा।
1: यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें अब पहले अपनी कोठरी का दरवाजा खुला रखना होगा। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास अभावग्रस्त लोग रहते हैं, तुम्हें उनकी यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित है उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो और शरीर के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तुमने तो इतना पढ़ा है, अतः जो ज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के संदेश, सेवा के संदेश, सामाजिक उत्थान के संदेश और समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर नीचे डूबते जा रहे हैं।
0: अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर हमें देखना चाहिए कि अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क आदि राजाओं के काल में शक्ति, सामर्थ, समृद्धि तथा सुख सभी बातों में भारत कितना उन्नत था। यह स्पष्ट है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में हमारे सम्मुख जो महान आदर्श थे वही हमारे अतीत के गौरव के कारण थे।
2: आज हमारी अवनति कैसे हुई है? हमारा पतन क्यों हुआ? इसका कारण हमें ढूंढ निकालना चाहिए। इसलिए भावी भारत का गठन करते समय जिन आदर्शों ने हमें उन्नत एवं महान बनाया उनको स्वीकार करना चाहिए और जिन बातों के कारण हमारी अवनति हुई उनका त्याग करना चाहिए। विवेकानंद ने अपने साहित्य में हमें इन्हीं बातों की सीख दी है और ये भी कहा है कि हमें कुछ ऐसे नए विषयों को भी ग्रहण करना चाहिए जो उस युग में उपलब्ध नहीं थे, मसलन विज्ञान और टेक्नोलॉजी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद की सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह के साथ। उम्मीद है आज के सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपसे विदा लें उसके पहले कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दें। हमारी सभा शुरू होती है 7 बजे। पहली प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि, और फिर आप आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम का।

वतन का राग ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। इसमें कल हम बात करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू की। 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इसमें कल की चर्चा का विषय खेरला का गोंड राज्य। योग संवाद कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रसारित होगा। इसमें आप सुनेंगे योग वासिष्ठ के अंतर्गत काल के प्रभाव और जीवन की अनिश्चितता का वर्णन। 9:30 बजे भारत विभूति कार्यक्रम में हम बात करेंगे वीवी गिरी की। नगर की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में हम बात करेंगे विजयलक्ष्मी पंडित की। सुरसागर कार्यक्रम में 11 बजे सुनिएगा प्रदक्षिणा भट्ट का शास्त्रीय गायन और 11:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की अगली कड़ी। तो ये था एक संक्षिप्त सा परिचय कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। रात के 10 बजने वाले हैं। हमारी ये प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 7 बजे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि। जय हिंद। सभा का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से।